मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 जून सन 2026। प्रातः के 5:56 और 45 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं समाचार। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन

0: की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इस भक्ति गीत के साथ ही आज की वंदना संपन्न होती है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज सुनिए तुलिका शर्मा के विचार। इफ्रात में मिला हुआ पानी हम बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं और ये भी नहीं सोचते कि ये पानी कल शायद हमें उपलब्ध भी ना हो पाए। निरंतर इस धरती पर पीने योग्य पानी की कमी होती जा रही है। अब हम सब जानते हैं कि धरती पर 2/3 पानी है, लेकिन इस पूरे पानी की मात्रा में पीने योग्य पानी कितना है, कभी इस पर रिसर्च करके देखिएगा। और जो हम पानी बर्बाद करते हैं उसका अधिकांश हिस्सा पीने योग्य पानी का होता है। धरती पर उपलब्ध जल को पीने योग्य बनाने के लिए बहुत प्रयास किए जाते हैं, तमाम संयंत्र लगाए जाते हैं और फिर उसे आप तक पहुँचाया जाता है। इस पानी का बेहद सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। वर्षा जल हमें उसे भी सहेज कर संभाल कर रखने की कोशिश करनी चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट यहीं से आया। केरल स्थित कोचीन में चेल्ला नाम में रहने वाले हैं KJ अंतोजी। ये कभी एक वायर टेक्नीशियन थे और TV मैकेनिक थे, लेकिन आज उन्हें पूरा देश एक आविष्कारक के तौर पर जानता है। उन्होंने वर्षा जल संचयन की एक अद्भुत

तकनीक ढूंढी है और वो है रेन वाटर सिरिंज तकनीक। इस तकनीक से बारिश के पानी को ज़मीन में समुद्र के स्तर से नीचे इकट्ठा किया जा सकता है। इससे भूजल स्तर बढ़ता है और फिर इस पानी को ज़रूरत के समय एक मोटर की मदद से आप इस्तेमाल के लिए निकाल सकते हैं। अंतोजी ने यह महसूस किया कि तटीय इलाकों में भूजल के गिरते स्तर की वजह से पानी बहुत ज़्यादा नमकीन हो रहा था। ऐसे में इन इलाकों के लोग पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें एक ही उपाय सूझा कि हम बारिश के पानी को भूजल स्तर तक पहुँचाएँ, जिससे कि वो इसमें बढ़ते नमकीन स्वाद को बैलेंस कर दे। और इसके लिए उन्हें लगा कि सबसे सही तरीका है रेन वाटर सिरिंज मेथड, क्योंकि इसकी मदद से आप बारिश के पानी को समुद्र के स्तर से नीचे इकट्ठा कर सकते हैं। अंतोजी ने इसके लिए कुछ पढ़ा नहीं था, बस एक घटना घटी थी और उन्हें ये जुगाड़ मिल गया था। वो एक पाइप की सहायता से पेड़ों में पानी दे रहे थे कि अचानक उनके घर में टेलीफोन की घंटी बजी। वो एकदम चौंके, हाथ से पाइप गिर गया और जब वो अंदर से बात खत्म करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि पाइप का सिरा जमीन में घुस गया था। उन्होंने इसे बाहर निकाल लिया, लेकिन फिर भी जो गड्ढा पाइप के पानी के प्रेशर की वजह से हुआ था उसमें से तब भी पानी निकल रहा था। इसके बाद जिज्ञासावश उन्होंने एक जगह और पानी के प्रेशर से गड्ढा किया और देखा कि लगभग 8 फीट तक गड्ढा होने के बाद उससे पानी का निकलना बंद हुआ। मतलब कि जमीन में जब हम पानी डालते हैं और जब वो 8 फीट से नीचे पहुंचता है तब ज़मीन उसे सोखना शुरू कर देती है। इससे ही हमारा भू जल स्तर बढ़ता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि बारिश का पानी भू जल स्तर बढ़ाए तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो 8 फीट की गहराई तक पहुंचे। जबकि हमारे यहाँ तो बारिश का पानी सतहों से होता हुआ सीधे समुद्र में चला जाता है और ये अच्छा नहीं है। अंतोजी कहते हैं कि यहीं से उनकी रेन वाटर सिरिंज तकनीक की शुरुआत हुई। उन्हें समझ में आ गया था कि इस तकनीक से भूजल को नमकीन होने से रोका जा सकता है। अगले 4 साल तक उन्होंने अपने घर में ही ये एक्सपेरिमेंट किए और इस तकनीक में महारत हासिल कर ली। अंतोजी रेन वाटर सिरिंज से बारिश के पानी को प्रेशर से ज़मीन के 6 फीट नीचे बने एक स्टोरेज टैंक में पहुंचाते हैं और इसके लिए अलग से कोई मशीन नहीं चाहिए, लेकिन बाद में इस पानी को अपने इस्तेमाल के लिए निकालने के लिए मोटर की ज़रूरत पड़ती है। ये गड्ढा लोगों की ज़रूरत के हिसाब से वो लोग बनाते हैं। जैसे परिवार में कम सदस्य हैं तो छोटा गड्ढा बनता है, अगर सामुदायिक स्तर पर कहीं लगाना है तो छोटे छोटे कई सारे गड्ढे बनाए जाते हैं। इससे भूजल स्तर को प्रभावी रूप से बढ़ाया जा सकता है। अंतोजी ने अब तक 400 से भी ज़्यादा यूनिट्स लगाई हैं, जिनमें लगभग 500 करोड़ लीटर पानी को संरक्षित किया गया है। उन्होंने इस सिस्टम की कीमत भी कम से कम रखी है। अंतोजी का मानना है कि उन्होंने अनुभव से पानी को समझा है। पानी बात करता है, बस ज़रूरत है आपके ध्यान से सुनने और समझने की। अंतोजी ने भले ही तटीय इलाकों को ध्यान में रखकर इस तकनीक का आविष्कार किया हो, लेकिन इसकी ज़रूरत देश के अन्य इलाकों को कब हो जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि तेज़ी से हमारे आसपास भूजल कम हो रहा है। यदि आप अपने घर में रहते हैं तो कोशिश कीजिए कि छत का पानी किसी भी तरह से आप ज़मीन में उतार पाएं। यदि आपने साल भर में अपनी छत पर वर्षा का पानी ही ज़मीन में उतार लिया तो आपका कर्तव्य इस धरती के प्रति पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम चिंतन में अभी आप जल संरक्षण विषय पर तुलिका शर्मा के विचार सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

सती ने महादेव से छल तो किया, किंतु उनके समाधि में चले जाने के बाद पश्चाताप की आग में स्वयं जलने लगी। शिव की समाधि का एक एक दिन सती के लिए एक एक युग के समान बीतने लगा।

मन में ये सोच कि इस दारुण दुख के अथाह और अनंत सागर को कब पार कर सकेंगी। शंकर के विमुख हो जाने के बाद भी विधाता उन्हें क्यों जिला रहा है। विडंबना यह है कि आत्मग्लानि के भेद को किसी पर प्रकट भी नहीं कर सकती। 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद शिव की समाधि टूटी। सती ने आकर उनके चरणों में सिर नवाया तो महादेव उन्हें आदर से पास बिठाकर हरि अवतार की कथाएं सुनाने लगे। उन्हीं दिनों सती के पिता दक्ष को ब्रह्मा ने प्रजापतियों का नायक बनाया। ऐसी प्रभुता का पद पाकर अभिमान किसे नहीं होता। दक्ष को भी अभिमान हुआ और उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी, जिसमें गंधर्व, किन्नर, शेषनाग, सिद्धों सहित सभी देवताओं को निमंत्रित किया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। अरहर की उन्नत किस्में और गुण, इस विषय पर आज जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुधीर सिंह तोमर।
1: किसान भाइयों, अरहर का तो आप महत्व देख ही रहे हैं। अरहर का भाव किसान भाइयों को काफी अच्छा मिल रहा है, जिससे इसका महत्व फसल का और भी बढ़ जाता है। इसमें क्या है किसान भाई, यह विशेष ध्यान रखें कि बहुफसली फसल उत्पादन पद्धति का प्रयोग करें और हल्की ढलान वाली अगर असिंचित भूमि है किसान भाइयों के पास, तो जल्दी पकने वाली प्रजातियां ही बोएं। जल्दी पकने वाली अरहर की कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं UPAS 120, यह 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज देती है और यह 130 से 140 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। उपास 120 के नाम से भी किसान भाई इसको जानते हैं। इसका दाना लाल रंग का होता है और असीमित वृद्धि वाली यह प्रजाति होती है। ग्रोथ वृद्धि इसकी काफी अच्छी होती है। इसके अलावा कम अवधि में होने वाली अरहर की फसल है किसान भाइयों ICPL 87, जिसको प्रगति के नाम से जानते हैं। यह 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है इस प्रजाति से। 125 से 135 दिन में पककर यह तैयार हो जाती है। इसकी वृद्धि थोड़ी कम होती है, सीमित होती है। इसका बीज गहरा लाल रंग का होता है और मध्यम आकार का होता है। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी प्रजाति है अरहर की कम अवधि में पकने वाली ट्रॉम्बे जवाहर तुअर 501। इसकी उपज काफी अच्छी प्राप्त होती है, जो कि 19 से 24-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त हो जाती है। 145 से 155 दिन में लगभग यह तैयार हो जाती है प्रजाति। असीमित वृद्धि वाली होती है, लाल दाना होता है इसका। और किसान भाइयों, ट्रॉम्बे जवाहर तुअर 501 का एक प्रमुख फायदा यह है कि यह प्रजाति उकटा रोगी रोधी जाति है, जिसका कि उकटा का काफी दलहनी फसलों में प्रकोप पाया जाता है। किसान भाइयों, जिनके यहाँ मध्यम गहरी भूमि हो और पर्याप्त वर्षा होती हो, तो सिंचित और असिंचित अवस्था में वह मध्यम अवधि की जातियां बोएं। मध्यम अवधि की अरहर की किस्में हैं JKM 7, जो कि असिंचित में 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज दे देती हैं। यह 170 से 190 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह प्रजाति भी असीमित वृद्धि वाली होती है। इस प्रजाति का दाना जो बीज का होता है किसान भाइयों, वह भूरा लाल सा होता है और यह प्रजाति भी उकटा रोधक प्रजाति है। अरहर की दूसरी एक किस्म है JKM 189, यह असिंचित अवस्था में 20 से 22 क्विंटल तक और अर्धसिंचित अवस्था में तो किसान भाइयों, यह प्रजाति 30 से 32 क्विंटल तक भी उपज देती है। यह 160 से 170 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह प्रजाति असीमित वृद्धि वाली होती है। इसका दाना लाल भूरा होता है और किसान भाइयों, वैज्ञानिक भाषा में सीड इंडेक्स, जिसे हम कहते हैं कि 100 दानों का वजन, यह 10 ग्राम से भी ज्यादा पाया जाता है, यानी इसका दाना काफी अच्छा होता है। उकटा, बांझपन, झुलसा, इन सभी बीमारियों से यह प्रतिरोधी होती है। यहाँ तक कि किसान भाइयों, सूत्रकृमि यानी नेमेटोड, इसकी भी प्रतिरोधी होती है। फली छेदक के लिए सहनशील है और देर से बोने के लिए भी यह उपयुक्त पाई गई है। इसके अलावा अरहर की एक अन्य किस्म है ICP 8863, जिसे मारुति नाम से भी जानते हैं। यह 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज दे देती है। किसान भाइयों, यह प्रजाति 150 से 160 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। यह भी उकटा रोधी जाती है। इसके अलावा दूसरी प्रजाति है जवाहर अरहर 4, 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। यह लगभग 180 से 200 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह प्रजाति भी किसान भाइयों, असीमित वृद्धि वाली होती है। इसका दाना मध्यम आकार का होता है और लाल रंग का होता है। इस प्रजाति की प्रमुख विशेषता यह है किसान भाइयों कि यह फाइटोप्थोरा रोग रोधी होती है। इसके अलावा दूसरी किस्म है ICPL 87119, जिसे आशा के नाम से भी जानते हैं। यह 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज दे देती है। यह 160 से 190 दिन में पककर तैयार हो जाती है। असीमित वृद्धि वाली यह प्रजाति होती है। इसके अलावा एक प्रजाति है वैशाली, जिसे BSMR 853 के नाम से जानते हैं। यह 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज दे देती है। यह 170 से 190 दिन में लगभग तैयार हो जाती है। असीमित वृद्धि वाली यह प्रजाति होती है। हालांकि इसका दाना सफेद रंग का होता है और यह कई रोगों के प्रति प्रतिरोधी होती है। BSMR 736 को ही लें किसान भाइयों, यह मध्यम अवधि की प्रजाति है। यह 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज देती है। 170 से 190 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह प्रजाति उकटा और बांझ रोग के प्रति प्रतिरोधक है। असीमित वृद्धि होती है इसमें और इसका दाना भी मध्यम लाल रंग का होता है। एक दूसरी किस्म है किसान भाइयों विजया, जिसे ICPH 2671 के नाम से जानते हैं। यह काफी अच्छी उपज 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक दे देती है। किसान भाई जिनके पास अगर फसल चक्र में उनको लंबी अवधि मिल रही है, तो वह अरहर की लंबी अवधि वाली किस्में बो सकते हैं। हमारे क्षेत्र के लिए प्रमुख रूप से जैसे कि MA 3, जिसे मालवीय नाम के से जाना जाता है, यह प्रजाति लंबी अवधि की अरहर की 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज देती है। एक दूसरी प्रजाति है ग्वालियर 3, जो कि हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के लिए काफ़ी उपयुक्त पाई गई है। यह 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज देती है।
0: कार्यक्रम कृषि चर्चा में अभी आप सुन रहे थे जानकारी अरहर की उन्नत किस्में और गुण। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सुधीर सिंह तोमर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।
2: रक्तदान जीवन का उपहार है, आइए रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। 18 से 65 वर्ष तक उम्र और 45 किलो अथवा इससे अधिक वजन का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक पीड़ा रहित प्रक्रिया है। महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान किसी को जीवन और स्वयं को आत्मसंतोष प्रदान करता है।

0: रक्तदान करने के लिए शासकीय अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में संपर्क करें।
1: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

0: सदियों बाद पैदा होता है एक महापुरुष और हमें दिखा जाता है रोशनी की अनगिनत राहें। आइए हम सब चलें उस मार्ग पर जो दिखाया महात्मा गांधी ने।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: दर्पण कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। संस्कृत में समाचार अब दिल्ली से होंगे, उसके बाद हिंदी में समाचार होंगे।
4: प्रवाचिका निधि झाहा। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य यात्रावधौ स्वकीय प्रवासस्य चरमे सोपाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः रात्रौ पेरिस नगरं संप्राप्तवान्। पेरिस नगरे आगमन समये विश्रांति निलये एकत्रिताः भारतीय समुदायस्य सदस्याः उत्साहपूर्वकं तदीय भव्यं स्वागतं अकुर्वन्। अद्य प्रधानमंत्री प्रमुख विपणीनां मुख्य कार्यकारिभिः सह चर्चां करिष्यति। तदनन्तरं सः यूरोप महाद्वीपस्य प्रमुख प्रौद्योगिकी मञ्चे विवाटेक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति, तत्र च स्वसंबोधनं प्रदास्यति। सायंकाले असौ एकस्मिन् सामुदायिक कार्यक्रमे भारतीय प्रवासिभिः सह संवादं विधास्यति। G7 देशैः वैश्विक स्थिरतायाः सुरक्षा सहयोगस्य अथ सीमापार संघटित अपराध निवारणस्य उद्देश्येन विभिन्नाः प्रमुखाः घोषणाः विहिताः। मुख्य वक्तव्ये नेतृभिः अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये संजातं सन्धिनिश्चयम् अभिनन्दितम्। अन्य घोषणापत्रे G7 देशैः मादक द्रव्यस्य अवैध कार्यं निरोद्धुं संकल्पो विहितः। अस्मिन् अभियाने ब्राजील, दक्षिण कोरिया देशौ अपि सहमतिं प्रदर्शितवन्तौ। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे चलायमाने G7 शिखर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वहितकारी सतत आर्थिक विकासः इत्याख्ये मुख्य विषये आयोजितायां महत्वपूर्ण कार्यगोष्ठ्यां भागं भजते। सत्रेऽस्मिन् G7 देशाः सहभागी राष्ट्राणि, अन्ताराष्ट्रिय मुद्रा कोषस्य OECD इत्यस्य च प्रतिनिधयः उपस्थिताः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य मध्यप्रदेशस्य ओडिशायाः च 5-दिवसीयायां यात्रायाम् अस्ति। प्रथमदिवसे सा मध्यप्रदेशस्य बैतूल नगरे आध्यात्मिक जागृत्या जनजातीय समाजस्य सशक्तिकरण कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। द्वितीय

0: सा ओडिशायाः रायरंगपुरे चिकित्सा शिविरस्य ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनायाः च उद्घाटनं विधास्यति। तृतीय दिवसे राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह पहाड़पुरे कौशल केन्द्रस्य निरीक्षणं करिष्यति, सहैव रायरंगपुरे जनसभां च संबोधयिष्यति। चतुर्थ दिवसे 7 जून 2021 जबलपुरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसोत्सवे भागं ग्रहीष्यति, सहैव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे अध्यक्षतां विधास्यति। यात्रायाः चरमे सोपाने सा ख्यूनो राष्ट्रीय उद्याने सहरिया जनजातीय सदस्यैः चीता अन्वेषकैः च सह संवादं विधास्यति। संयुक्त राष्ट्र संघस्य खाद्य संस्थाभ्याम खाद्य एवं कृषि संघटनेन अथ विश्व खाद्य कार्यक्रमेण च विज्ञापितं यत् आगामीषु मासेषु युद्ध जलवायु परिवर्तन धन न्यूनता कारणात् विश्वस्य 13 प्रमुख क्षेत्रेषु बुभुक्षा संकटं अधिकं गभीरं भविष्यति। संयुक्त प्रतिवेदनस्य अनुसारं संप्रति जगति 66.2 कोटि जनाः तीव्र खाद्य असुरक्षया पीडिताः सन्ति। अस्यां सूच्यां सुडान, दक्षिण सुडान, यमन, फिलिस्तीन, नाइजीरिया, सोमालिया चेत्यादयः देशाः अत्यधिक संकटग्रस्ताः सन्ति। प्रतिवेदने चिंता प्रदर्शिता यत् 2022 परं मानवीय सहायतायै प्राप्यमाणं धनं 60% न्यूनं जातम्। WFF संस्थायाः कार्यवाहक निदेशकः कार्ल स्काउ महोदयः अवोचत् यत् यदि शीघ्रं किमपि कार्यान्वयनं न क्रियते तर्हि कोटिशः जनाः दुर्भिक्षस्य गर्ते पतिष्यन्ति। हॉकी क्रीडायां नीदरलैंड देशस्य राइडरहेम नगरे प्रचल्यमाणायाः FIH प्रो लीग स्पर्धा मालिकायाः द्वन्द्वे भारतीय पुरुष हॉकी दलेन जर्मनी दलं 3-1 इत्यांकांतरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिसिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाखड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। ये मनप्रीत सिंह का 413वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। उन्होंने भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रम के लिए देश भर में 1,70,000 से अधिक आयोजकों ने पंजीकरण कराया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग संगम स्वास्थ्य के माध्यम से एकता का उत्सव है। इसके तहत देश भर में हजारों स्थानों पर लोग एक साथ योग करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इसे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। 7:20 पर सुनिए लघु रूपक रानी लक्ष्मीबाई के साथ खड़ा हाशिए का समाज। लेखक होंगे महेश कटारे और प्रस्तुतकर्ता तुलिका शर्मा। ये लघु रूपक आपको महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के अवसर पर सुनवाया जाएगा। 7:30 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। ये दोनों ही समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुनिए सुबह 8:30। इसे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाता है। 9 बजे सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम सुनिए गुड मॉर्निंग ग्वालियर। 9:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुधीर मसूरकर का सितार पर बजाया राग अहीर भैरव सुनवाया जाएगा। 10:00 जिले की चिट्ठी भोपाल से होगी।

10:05 पर व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सुनेंगे। इसमें श्रोताओं की पसंद के फिल्मी गीत सुनवाए जाते हैं और आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से सभी कार्यक्रम सुबह 11 बजे से अनुप्रसारित किए जाएंगे सभा की समाप्ति तक। आज गुरुवार है, आज हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स आप सुनते हैं। इसे दिल्ली से शाम 4 बजे अनुप्रसारित किया जाता है। 5 बजे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा।

का कार्यक्रम जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति होगा। एनसीईआरटी का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग शाम 6 बजे सुना जा सकता है। शाम 6:30 बजे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बैतूल प्रवास पर आधारित रेडियो रिपोर्ट आप सुनेंगे। इसे भी हमारे मध्य प्रदेश केंद्र से ही अनुप्रसारित किया जाएगा।

शाम 7:20 पर हमारे केंद्र से किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम चौपाल। इसमें चर्चा होगी रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस पर। इसके अलावा जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाएं, इस विषय पर भी चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, इस विषय पर भी किसान भाइयों से चर्चा होगी। श्रीमती कुसुम जाटव से उनकी वार्ता सुनिए, जीवन में मितव्ययिता जरूरी। ये वार्ता भी चौपाल कार्यक्रम के ही अंतर्गत हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे। रात 8 बजे से सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति आज से प्रदेश के 5 दिवसीय प्रवास पर। प्रधानमंत्री आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। महाराणा प्रताप का जीवन वीरता शौर्य पराक्रम का प्रतीक, कहा मुख्यमंत्री ने। और भारत ने पुरुष क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को और महिला T20 क्रिकेट मैच में नीदरलैंड को हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से प्रदेश में 5 दिवसीय दौरा कर रही हैं। आज सुबह मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य उनका इंदौर विमानतल पर स्वागत करेंगे। इसके पश्चात वे बैतूल जाएंगी। वहां वे ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी बाय स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम के बाद वे ओंकारेश्वर पहुंचकर मंदिर में दर्शन एवं आरती में सम्मिलित होंगी। 19 जून को राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर ओंकारेश्वर में कार्यक्रम में शामिल होंगी। 20 जून को राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जबलपुर पहुंचेंगी और 21 जून वहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके पश्चात रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह में सहभागिता करेंगी। 22 जून को राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और इसके बाद वे ग्वालियर पहुंचकर नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्र

0: राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवा टेक 2026 सम्मेलन में भाग लेंगे। वे भारत की तकनीकी प्रगति और नवाचार को दुनिया के सामने रखेंगे। पेरिस में प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से भारत फ्रांस संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। इससे पहले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई विश्व नेताओं से मुलाकात की और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस साल 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय निर्यात को बड़ा लाभ मिलेगा। भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। इससे वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जीवन वीरता, शौर्य, पराक्रम, त्याग का प्रतीक है। उनका नाम स्मरण करते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। महाराणा प्रताप ने तमाम कठिनाइयों के बीच भी राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि रखा। समाज का हर वर्ग, देश की अस्मिता और आत्मसम्मान के लिए महाराणा प्रताप को एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में देखता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती के अवसर पर भोपाल के महाराणा प्रताप नगर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समाज के प्रतिभाशाली डॉक्टर, युवा खिलाड़ियों और समाज सेवियों को मंच से सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा,
2: यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की ओर जब बढ़ने की बात आएगी तो हमारे लिए भौतिक अधोसंरचनाएं जीवन उपयोगी आवश्यक वस्तुओं के लिए, लेकिन गौरवशाली अतीत के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसे कामों के सिलसिले में हमने कमिटमेंट किया था कि महाराणा प्रताप जयंती पे छुट्टी होगी तो पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर अपने उस अवकाश को भी निभा रहा है। लेकिन अवकाश के साथ साथ उनके जीवन के सभी पक्षों को आने वाली पीढ़ी को जानने के लिए भी हम पाठ्यक्रम में भी महाराणा प्रताप को जोड़ने वाले हैं, ताकि स्कूल एजुकेशन के माध्यम से उनके जीवन के सभी पक्षों से भविष्य की पीढ़ी को भी सीखने को मिले।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 के भव्य आयोजन के लिए हजारों करोड़ के विकास कार्य तेजी से पूर्ण किए जा रहे हैं। उज्जैन, इंदौर और आसपास के सभी जिलों में विकास को गति मिल रही है। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन में धार, नागदा और रतलाम को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल उज्जैन जिले के नागदा में बालाजी धाम में श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा व ध्वज पूजा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डॉ. यादव का श्री बालाजी धाम में भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत विशेष रूप से उपस्थित थे। संयुक्त राष्ट्र की संस्था UN वुमेन द्वारा संचालित सेफ सिटीज एंड सेफ पब्लिक स्पेसेस फॉर वुमेन परियोजना में जबलपुर शहर को शामिल किया गया है। जबलपुर का चयन देश के एकमात्र शहर के रूप में किया गया है। विश्व के चुनिंदा 65 शहरों में संचालित इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत जबलपुर में महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक सर्वसाधारण सार्वजनिक वातावरण विकसित करने की दिशा में कार्य योजना तैयार की जाएगी। इस उपलब्धि पर कल मानस भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े अनुभव और सुझाव साझा किए। इन सुझावों के आधार पर शहर के लिए एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं, छात्राओं और कामकाजी युवतियों के लिए सार्वजनिक स्थलों को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। वहीं महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में कल रात भारत ने नीदरलैंड को 95 रनों से हरा दिया। लीड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम ने

कोलारस के ग्राम पचावली और 20 जून को जिला मुख्यालय शिवपुरी स्थित मानस भवन में प्राकृतिक खेती कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी आज आगरमालवा स्थित नमो उपवन में वृक्षारोपण करेंगे और साथ ही जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नर्मदापुरम जिले में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर मतदाता सूची को अपडेट करने का काम जारी है। इसके तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं, जबकि मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले नाम हटाने और अन्य त्रुटियों को सुधारने की कार्रवाई की जा रही है। इंदौर जिले के चंद्रावतीगंज में आगामी 20 जून को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उपस्थित रहेंगे। कटनी जिले में आयोजित जनकल्याण शिविरों के माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जा रहा है। शिविर में अब तक 13,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 12,156 का निराकरण किया जा चुका है। श्योपुर जिले में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत छात्रों के लिए संचालित मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में रसोइयों के लिए कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से प्रदेश के 5 दिवसीय प्रवास पर। प्रधानमंत्री आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। महाराणा प्रताप का जीवन वीरता शौर्य पराक्रम का प्रतीक, कहा मुख्यमंत्री ने। और भारत ने पुरुष क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को तो वहीं महिला T20 क्रिकेट मैच में नीदरलैंड को हराया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर होगा। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोता साथियों, आज है महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस। इसी अवसर पर सुनते हैं ये लघु रूपक, रानी लक्ष्मीबाई के साथ खड़ा हाशिए का समाज। लेखक श्री महेश कटारे और प्रस्तुतकर्ता तुलिका शर्मा।
1: हिंद के वाशिंदों, अरसे से जिसका इंतजार था, आज़ादी की वो पाक घड़ी आ पहुंची है। हिंदुस्तानी अब तक धोखे में आते रहे और अपनी ही तलवार से अपनी गर्दनें काटते रहे। अब हमें मुल्क फरोशी के इस गुनाह का कुफारा करना चाहिए। अंग्रेज़ अब भी अपनी पुरानी दगाबाजी से काम लेंगे। वे हिंदुओं को मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मुसलमानों को हिंदुओं के ख़िलाफ़ भड़काएंगे। ऐसी चालाकियों से तुम्हें होशियार रहना है।
0: पयामे आज़ादी में छपी ये तहरीर आज़ादी की जंग में अंग्रेजी सेना और शासन से विद्रोह करने वाले सिपाहियों को सहयोग करने की अपील थी। ये 1857 के राष्ट्रीय समर का संदेश था, जो हिंद के सभी वासियों, भाषा भाषियों, जातियों और धार्मिक समूहों को संबोधित था। 1857 का समर केवल स्थानीय नायकों और वीरांगनाओं के बलिदान की गाथा नहीं है। इस महायज्ञ की आहुति में स्त्रियों, दलितों, आदिवासियों की टोलियां और सेनाएं भी शामिल थीं।
1: 1857 के संग्राम में गरीब किसानों, कारीगरों और कलाकारों सहित समूचे देश में बसी निरक्षर जनता की भागीदारी थी। रोटी और कमल ऐसा प्रतीक बन गया था कि एक गांव से दूसरे गांव तक संदेश लेकर पहुंच जाता। आज़ादी चाहने वालों का स्वागत करो, भोजन पानी की व्यवस्था करो, अंग्रेज़ों पर टूट पड़ो। 300-400 मील का सफ़र एक दिन में तय करता था ये संदेश। कमाल का तंत्र था।

0: ये बुंदेले और हरबोले कोई दरबारी कवि नहीं, लोक गायक ही तो थे जिन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीबाई का यश देश देशांतर तक गुंजा दिया। केवल सुभद्रा कुमारी चौहान ने ही रानी को मर्दानी नहीं कहा है, बुंदेली लोकगीतों में भी रानी को मर्दानी विरुद्ध दिया गया है। सन 57 भारत बिगड़ियो गवर्नमेंट घबरानी, बिगड़ उठी झांसी के सेरनी, लक्ष्मीबाई मर्दानी। जन जन तक शहीदों की गाथाएं पहुंचाने वाले श्याम सरीन इस संदर्भ में कहते हैं,
1: 2012 के मार्च महीने में ब्रिटिश सैन्य संग्रहालय ने पूरे विश्व के 20 ऐसे प्रबल योद्धाओं की एक सूची बनाई जिन्होंने अंग्रेजी सेनाओं को नाकों चने चबवाए थे। जहां तक भारत का ताल्लुक है, इसमें दो नाम थे, एक तो टीपू सुल्तान का और दूसरा झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई का। हीरोज ने भी अपनी डायरी में लिखा है कि वो विद्रोहियों में अकेली मर्द थी। चूंकि झांसी की रानी ने पूरे युद्ध क्षेत्र में मर्दाने रूप में युद्ध का संचालन किया, तो जो लोक आख्यान हैं उनमें उन्हें मर्दानी कहकर संबोधित किया गया है।

0: 1857 में समाज के हर वर्ग के लोगों ने अपनी सांसों में क्रांति के अग्नि बीजों को सुलगाया था। टाइम्स ऑफ लंदन ने 1857 की क्रांति के कारणों की पड़ताल करते हुए लिखा था, इसके पीछे कट्टरता या धार्मिक उन्माद जैसी भावनाएं नहीं, बल्कि स्वाधीनता की आकांक्षा और विदेशी सत्ता के प्रति घोर घृणा का भाव है जिसने लोगों को इस तरह भड़का दिया है।
1: इसी सिलसिले में इतिहासविद डॉक्टर संजीव बिथरिया कहते हैं,
2: भारत में प्राचीन जो कर व्यवस्था थी वो इस तरह से बनाई गई थी कि वो किसान भी उससे परेशान ना हो और राज्य की आय का जो एक जरिया है वो भी बना रहे। लेकिन अंग्रेजों ने भारत में आकर उस सिस्टम को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, इस प्रकार के सिस्टम किए गए और उसमें किसानों की उपज का 60% से लेकर 80% भाग ले लिया जाता था, जिससे वो किसान बहुत परेशान थे। कई किसान तो अपनी खेती को छोड़कर जंगलों की ओर भाग रहे थे क्योंकि वो उनके पास जीवन अपना निर्वहन के लिए कुछ बचता ही नहीं था, सारा उनका टैक्स में ही चला जाता था। प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी किसानों से वही दर से लगान वसूला जाता था जो पहले से निर्धारित था, न देने पर उनको यातनाएं देना, उनकी जमीन को छुड़ा लेना, इस प्रकार का सारा सिस्टम अंग्रेजी समय में चल रहा था। इस वजह से असंतोष किसानों में इतना अधिक बढ़ गया था कि वो इस उम्मीद से नेतृत्व की ओर देख रहे थे कि कोई नेतृत्वकर्ता ऐसा आएगा जो शोषण हो रहा उनसे उनको मुक्ति दिलाएगा।
1: रानी लक्ष्मीबाई इस आकांक्षा और विदेशी सत्ता के प्रति घृणा का प्रतीक बनकर उभरी थीं। लेखक शंभुनाथ कहते हैं, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य से जो टकरा रहे थे वे अनपढ़ किसान या इनके घरों के सिपाही थे। बंगाल और कुछ हद तक महाराष्ट्र के शिक्षित संपन्न भारतवासी जब ये प्रार्थना कर रहे थे कि इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हो जाए, तब वर्दीधारी किसान अंग्रेजों को देश से खदेड़ देना चाहते थे।
2: जमींदारी सिस्टम डेवलप करने के पीछे अंग्रेजों के दो छुपे हुए उद्देश्य थे। एक उद्देश्य तो ये था अंग्रेजों का कि अंग्रेजी अधिकारी सीधा कर नहीं वसूलेगा तो अंग्रेजी अधिकारी से उनकी बैर भाव नहीं होगा। दूसरा, इससे भी जो बड़ा पक्ष जो था वो ये था कि अंग्रेजों को एक अपना भक्त वर्ग तैयार करने में मदद मिली। इन लोगों ने अंग्रेजी शासन के पक्ष में न केवल युद्ध किया वरन उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए जिससे कि अंग्रेज शासन भारत में बचा रहे।
1: सन 57 में हाशिए पर खड़े बहुसंख्यक भारतीय अपनी सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के लिए उठ खड़े न होते तो इस देश की पहचान ही संकट में पड़ जाती। इस संग्राम की सर्वाधिक प्रासंगिक बात यह थी

0: कि इसमें सभी जातियों सभी धर्म समूहों के बीच अटूट एकता कायम हुई थी तथा दलितों महिलाओं और आदिवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था।
1: उत्तर और मध्य भारत के किसी भी हिस्से में जाइए, आपको ऐसे असंख्य लोकगीत मिलेंगे जिनमें 1857 के विद्रोही नेताओं के शौर्य की स्वर्णिम गाथाएं हैं, जिनमें करोड़ों भारतीयों की राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इसके संगठन का श्रेय श्रीमंत नाना साहब, मौलवी अहमद शाह, वजीर अली खान, तात्या टोपे, खज्जिया नायक, भीमा नायक और अजीजन जैसी विभूतियों को जाता है।
2: धीरज

0: इस युद्ध का सर्वाधिक चकित करने वाला पक्ष है महिलाओं की जांबाज हिस्सेदारी।
1: श्याम सरीन इसे विस्तार देते हुए कहते हैं,
2: झांसी की रानी ने अपनी जो दासियां थी उनको दासी ना समझ के सखी समझा और उन्हें पूरी शिद्दत के साथ सैन्य प्रशिक्षण दिया। क्योंकि अब एक महिला सैन्य प्रशिक्षण दे रही है तो बाकी महिलाओं ने उनसे सैन्य प्रशिक्षण लेने में कोई गुरेज नहीं किया, बड़े अपनेपन के भाव से उन्होंने ये सब सीखा। ग्रामीण अंचल में जो लोग रहते थे जिनको लोग हेठा समझते थे, लक्ष्मीबाई को लगा कि ऐसे लोगों को जोड़ने से इस लड़ाई को हम जन जन तक पहुंचा पाएंगे।
0: लक्ष्मीबाई ने महिलाओं की एक टुकड़ी बनाई थी जिसका नाम था दुर्गा दल। दलित समाज से उभरी झलकारी बाई ने अपनी बहादुरी, कौशल और प्रत्युत्पन्न मति के बूते दुर्गा दल का नेतृत्व संभाला था। ये वीर महिलाएं हर मोर्चे पर मौजूद थीं। हथियार चलाना हो या उनकी मरम्मत करना, ये हर काम में पारंगत थीं। रानी की अंगरक्षिकाएं सुंदर मुंदर नर्तक समाज से थीं। इनके साथ काशीबाई भी दुर्गा दल की सैनिक थीं।
1: स्वतंत्रता के इस समर में गणिकाओं के बलिदान को प्रायः अनदेखा कर दिया जाता है। मोतीबाई ने अंतिम सांस तक रानी का साथ दिया था। नर्तकियां अंग्रेजी शिविरों और उनके समर्थक राजाओं की फौज में नृत्य के बहाने घुसकर शत्रु की सूचनाएं एकत्रित करती थीं।
0: जाने कितने ही तो ज्ञात और अज्ञात नाम हैं जिन वीरांगनाओं ने आत्म बलिदान से जुड़े जौहर के मायने बदल दिए। अब जौहर धधकती अग्नि में कूद पड़ना नहीं था, अब जौहर था शत्रु से लोहा लेते हुए काटना और कट मरना। विश्व में युद्धों के इतिहास का ये पहला संग्राम था जिसमें स्त्रियां गा गा कर गोले दागती थीं, जननी जन्म दियो है हम खां जई दिना के लाने।
1: रानी लक्ष्मीबाई अपने वीर योद्धाओं को कुंवर की उपाधि से समादृत करते हुए जाति पाति का विचार नहीं करती थीं। कुंवर खुदाबख्श और कुंवर विजय मल इसके उदाहरण हैं। पठानों के सरदार गुल मोहम्मद और तोपची गौस खां जैसे वीर उनके विश्वस्त सहयोगी रहे। सच तो ये है कि इस लड़ाई के दौरान हिंदू मुसलमान, सवर्ण असवर्ण, धनी गरीब का सारा फर्क मिट गया था।
0: पूरा देश एक ही कौम था और दूसरी ओर थे अंग्रेज, जिन्हें वो अपने मुल्क से खदेड़ बाहर करने को तत्पर था, जिसके लिए झांसी की रानी ने अपने रक्त से बलिदान का इतिहास लिखा।

अभी आप सुन रहे थे ये लघु रूपक रानी लक्ष्मीबाई के साथ खड़ा हाशिए का समाज। लेखक थे श्री महेश कटारे, वाचक स्वर श्री विवेक नामदेव और तुलिका शर्मा के, प्रस्तुतकर्ता तुलिका शर्मा। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और अनूप जलोटा को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी एक दूजे के लिए, गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। लता मंगेशकर के साथ आइए अब मोहम्मद अजीज को सुनते हैं। गीत एक बार फिर आनंद बख्शी का, संगीत अनु मलिक का है, फिल्म का नाम आवारगी।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया, आनंद बख्शी का लिखा ये गीत। राजेश रोशन ने इस गीत को संगीतबद्ध किया है फिल्म जूली के लिए।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से सुन रहे हैं। फिल्म संगीत हमारे केंद्र से आप 10:05 पर भी सुनेंगे। फिल्म संगीत का वो कार्यक्रम होता है व्हाट्सएप फरमाइश, जिसमें श्रोता अपनी पसंद के फिल्मी गीत सुनते हैं। आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम बॉबी,

0: फिल्म बॉबी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 8 बजे हैं समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज अब दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे।
1: क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
3: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
4: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
2: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
5: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनयिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
2: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान वहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
6: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
2: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
7: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
2: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
8: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
9: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
10: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
8: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
11: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
8: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
12: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
13: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट एएफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
14: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
2: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
15: Akashwani presents Morning News.
16: Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to attend Viva Tech Summit in Paris with French President Emmanuel Macron. PM Modi to also address members of Indian community in French capital. President Draupadi Murmu to embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for 2 Rajya Sabha seats from Jharkhand and 1 from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. US President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the 3-match series to take unassailable 2-0 lead. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from the members of the Indian community gathered at his hotel.
17: India and France, it goes beyond geopolitics, education, culture, AI, innovation, it is everything. So we are very thankful ki Modi ji aaye humse mile.
16: In Paris, Prime Minister Modi will attend the VivaTech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. The VivaTech Summit is Europe's largest technology and startup event where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation, ecosystem and technological advancements. Prime Minister Modi is also scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event. We have more from our correspondent.
18: Today, the Prime Minister continues packed itinerary designed to supercharge bilateral trade and innovation partnerships. He will lead the charge by covering a specialized roundtable with top French and European business leaders, focusing on driving strategic investments into India's expanding industrial and tech corridors. The centerpiece of the visit takes place later today at VivaTech, Europe's premier technology and startup conference. Prime Minister Modi, alongside French President Emmanuel Macron, will lead a series of high-level engagements at the summit, culminating in a highly anticipated keynote address that highlights India's skyrocketing global digital footprint. The intensive diplomatic trip will wind down with a major community outreach initiative. The Prime Minister is slated to attend a massive diaspora reception featuring vibrant cultural performances that celebrate India's heritage. Mahesh Sopre, Akashwani News, Paris, France.
16: The Paris leg of PM Modi's visit is expected to further strengthen India-France relations, particularly in technology, innovation and people-to-people ties. President Draupadi Murmu will embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. On the first day of her visit, President Murmu will attend a program on the empowerment of tribal society through spiritual awakening at Bethu.

यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि नारायण मल्हार जोशी का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 5 जून। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश से प्रवीण कुमार झा और दमोह से किशन घीवाला। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आज़ादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आज़ादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारतीय स्वाधीनता इतिहास में ऐसे अनगिनत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को एक तपस्या की तरह जिया, जिन्होंने सेवा को साधना माना तथा राष्ट्र प्रेम को जीवन का सर्वोच्च धर्म। उन्होंने स्वतंत्रता को केवल स्वप्न नहीं माना, बल्कि गांवों जंगलों में घूम घूम कर उसे जन जन का विश्वास, संघर्ष और संकल्प बना दिया। अपने जीवन का प्रत्येक क्षण राष्ट्र को समर्पित करने वाले ऐसे ही महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे लक्ष्मण प्रसाद दुबे। वो एक दूरदर्शी शिक्षाविद और समाज सुधारक भी थे। चूंकि उनका पूरा जीवन एक शिक्षक के रूप में बीता और अपने इस कर्तव्य को उन्होंने एक साधना माना, इसलिए वो आम जन में गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। लक्ष्मण प्रसाद दुबे का जन्म 9 जून सन 1909 को दुर्ग जिले में हुआ था। ये वो समय था जब देश में राष्ट्रवाद की लहरें हिलोरें ले रही थीं।

सन 1905 में बंग भंग आंदोलन की आंच से पूरा देश सुलग रहा था। ऐसे वातावरण में लक्ष्मण प्रसाद दुबे का बचपन बीत रहा था। उनकी आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्तर पर ही आरंभ हुई और शिक्षा के साथ साथ वो समाज की विषमताओं को भी देख रहे थे। शोषण और पराधीनता के प्रभाव से वो अत्यंत आहत हो जाया करते थे। विद्यार्थी जीवन से ही उनके भीतर अध्ययन के साथ साथ सामाजिक सरोकारों के प्रति गहरी रुचि थी। यही कारण है कि वो केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि समाज और राष्ट्र की परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते रहे। फिर वो समय आया कि जब देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन नई दिशा प्राप्त कर रहा था। स्वदेशी और सत्याग्रह के विचार लोगों को आकर्षित कर रहे थे। लक्ष्मण प्रसाद दुबे भी इस राष्ट्रीय चेतना से अछूते नहीं रहे। उनके मन में देश की स्वतंत्रता और समाज के उत्थान का भाव निरंतर प्रबल होता गया।

0: आए।
1: अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। वो अध्यापन का कार्य तो करते ही थे, इसके साथ ही उन्होंने अनेक युवाओं को राष्ट्र सेवा हेतु प्रेरित किया। भिलाई में शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए उनका संपर्क जिले के वरिष्ठ सत्याग्रही नरसिंह प्रसाद अग्रवाल से हुआ। अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में उन्होंने मद्य निषेध आंदोलन चलाया, स्वदेशी का संकल्प लिया तथा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। विदेशी वस्तुओं के साथ साथ उन्होंने जॉर्ज पंचम का चित्र भी जलाया। 1930 का दशक भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का अत्यंत महत्वपूर्ण समय था, जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया। इसी समय लक्ष्मण प्रसाद दुबे सक्रिय राजनीति में शामिल हुए। वो अब राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। वो जनसंपर्क संगठन निर्माण के साथ ही लोगों के भीतर राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम करने लगे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत शांत, सरल और कर्मठ था। वो मानते थे कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं बल्कि समाज में जागृति और आत्मसम्मान का संचार भी है। यही कारण है कि वो शिक्षा पर अत्यधिक बल देते थे। वो विशेष रूप से नारी शिक्षा और नारी स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर थे। सन 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा आरंभ की, तब इस आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से हुआ। सन 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा आरंभ की, तब इस आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से हुआ। चूंकि यहाँ कोई समुद्र तट नहीं था, इसलिए सविनय अवज्ञा की भावना से जुड़ते हुए ब्रिटिश शासन के अन्य दमनकारी कानूनों को चुनौती दी गई। मध्य प्रांत में जंगल सत्याग्रह आंदोलन का प्रमुख रूप बन गया। वन क्षेत्रों में रहने वाले किसानों, जनजातीय समाज के लोगों और ग्रामीणों पर अंग्रेजों ने जंगलों में चराई, लकड़ी, घास और वन उपज लेने पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे थे। इसलिए सत्याग्रहियों ने इन कानूनों का उल्लंघन करने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ का पोड़ी जंगल सत्याग्रह 1930 के जंगल सत्याग्रहों में एक महत्वपूर्ण कड़ी था। छत्तीसगढ़ में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वन कानूनों के विरोध में किया गया था। धमतरी के पास स्थित बालोद के ग्राम पोड़ी में हुए जंगल सत्याग्रह का आरंभ जुलाई 1930 में हुआ, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने किया। लक्ष्मण प्रसाद दुबे चूंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में काम कर रहे थे, इसलिए जाहिर तौर पर वो इसमें सघन रूप से सक्रिय हुए। सत्याग्रहियों ने आरक्षित वन क्षेत्र में प्रवेश किया, घास और लकड़ी एकत्र की, पशुओं को प्रतिबंधित क्षेत्रों में चराया। इस तरह वन कानूनों का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। पोड़ी सत्याग्रह की पूरी रूपरेखा तथा दस्तावेजी काम अग्रवाल जी ने लक्ष्मण प्रसाद दुबे को सौंप दिया था। सत्याग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को उन्होंने गुप्त रूप से संरक्षित रखा और उसका पूरा लेखा जोखा एक रजिस्टर में दर्ज कर उसे संकलित किया। सत्याग्रह की इन सभाओं में महिलाएं भी आती थीं, जो चरखा लेकर आंदोलन का प्रतिनिधित्व करती थीं।

लक्ष्मण प्रसाद दुबे ने राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो लोगों के बीच जाकर उन्हें देश की स्थिति से अवगत कराते, स्वाधीनता आंदोलन के उद्देश्य को समझाते और राष्ट्रहित में लोगों को संगठित होने का संदेश देते। उनका मानना था कि स्वतंत्रता का संघर्ष केवल नेताओं का नहीं बल्कि जन सामान्य का संघर्ष है। सन 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, तब पूरा देश नई ऊर्जा से भर उठा और एक निर्णायक लड़ाई आरंभ हुई। इस समय भी लक्ष्मण प्रसाद दुबे छत्तीसगढ़ में सक्रिय थे। वो स्वाधीनता आंदोलन और जंगल सत्याग्रह में पूरी तरह से जुटे हुए थे। उनकी गतिविधियों पर अंग्रेजी शासन की नज़र रहने लगी, लेकिन नरसिंह प्रसाद अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद भी वो रुके नहीं। वो आंदोलन को हवा देते रहे। परिणाम स्वरूप लक्ष्मण प्रसाद दुबे को गिरफ्तार करने का आदेश जारी हुआ। उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दिया और भूमिगत हो गए और वन्य क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन की लौ जलाते रहे। सन 1942 से 1947 तक वो दुर्ग, रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय रहे। 15 अगस्त सन 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद भी वो चुप नहीं बैठे। वो लगातार समाज सेवा के मार्ग पर चलते रहे। उनके लिए स्वाधीनता का अर्थ केवल अंग्रेजी शासन से मुक्ति नहीं था, वो एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहां शिक्षा, जागरूकता और मानवीय मूल्यों का विकास हो। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ही उन्होंने शिक्षा के महत्व को बहुत गहराई से समझ लिया था। वो अक्सर कहा करते थे कि किसी भी राष्ट्र का वास्तविक विकास शिक्षित और जागरूक नागरिकों के माध्यम से ही संभव है। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद उन्होंने किसी भी पद का लालच नहीं किया। आज़ादी के बाद उनका पूरा ध्यान सामाजिक जागरण और शिक्षा पर ही केंद्रित रहा। लक्ष्मण प्रसाद दुबे ने ग्रामीण अंचलों में शिक्षा के प्रसार और विद्यालयों की स्थापना की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो मात्र एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी नहीं थे, बल्कि वो ग्रामीण शिक्षा जागरण के अग्रदूत भी थे। गुरुजी के रूप में उन्होंने गांव-गांव में शिक्षा की अलख जगाई, अनेक युवाओं को अध्यापन कार्य से जोड़ा और ग्रामीण अंचलों में विद्यालयीन शिक्षा के विस्तार की दिशा में मजबूत नींव रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत की आज़ादी, भारत का उत्थान, भारत की विजय ही उनके जीवन का अनंतिम लक्ष्य था। निस्वार्थ भाव से आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 23 जुलाई सन 1993 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसे महान राष्ट्र सेवी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: न सनसनी, न सनसनी, न सनसनी, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश है इस घंटे की खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और अन्य स्थानों पर भी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कुनो अभ्यारण्य में भी वे जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवाटेक 2026 सम्मेलन में भाग लेंगे। वे भारत की तकनीकी प्रगति और नवाचार को दुनिया के सामने रखेंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस साल 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय निर्यात को बड़ा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती के अवसर पर भोपाल के महाराणा प्रताप नगर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समाज के प्रतिभाशाली डॉक्टर, युवाओं, खिलाड़ियों और समाज सेवियों को मंच से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 के भव्य आयोजन के लिए हजारों करोड़ के विकास कार्य तेजी से पूर्ण किए जा रहे हैं। इंदौर उज्जैन मेट्रोपोलिटन में धार, नागदा और रतलाम को भी शामिल किया गया है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रनों से हरा दिया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में कल रात भारत ने नीदरलैंड को 95 रनों से हरा दिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तूलिका का नमस्कार। श्रोताओं, हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे नाम के अनुरूप ही आपका दिन बीते, यानी हमारे कार्यक्रम का नाम है गुड मॉर्निंग ग्वालियर, और हम चाहते हैं कि आपकी सुबह ही नहीं बल्कि पूरा दिन बहुत अच्छा बीते। इसीलिए हम इस कार्यक्रम में आपसे ऐसी बातें करते हैं जिससे कि आपको पॉजिटिविटी की एक नई डोज मिले। कभी हम मौसम की बातें करते हैं, कभी हमारे इंसानी रिश्तों की बातें करते हैं, कभी अपने व्यवहार की बातें करते हैं, कभी दीन दुनिया की बात करते हैं, देश विदेश में क्या हो रहा है, कौन सी नई बातें हो रही हैं, इन पर बातें करते हैं। और इन सभी बातों का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम आपको सीखते रहने की जो सतत प्रक्रिया है उसमें जोड़े रखना चाहते हैं। जी हाँ, मनुष्य जब तक जीवित रहता है तब तक अपने माहौल से कुछ न कुछ सीखता है, और वो माहौल कौन देता है?

हमारे मित्र, हमारे परिचित, रिश्तेदार, या फिर जिस माहौल में, जिस वातावरण में हम रह रहे होते हैं, वो माहौल, ये माहौल, ये वातावरण बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनता है। हम कह नहीं सकते कि ठंडी हवा आप पर क्या असर डालेगी, हम ये भी नहीं कह सकते कि गर्म धूप आप पर क्या असर डालेगी, लेकिन हाँ, इन दोनों चीज़ों से हम कुछ ना कुछ तो सीखते हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये दो चीज़ें कही गई हैं कि इंसान के व्यक्तित्व पर बेहद असर डालती हैं। हेरिडिटी हमें अपने माता पिता, अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है। हम कैसे होंगे, दिखने में कैसे होंगे, हमारा चाल, चलने फिरने का ढंग कैसा होगा, हमारी आँखें, आँखों का रंग, बालों का रंग, उनकी मोटाई, ये सब कुछ हेरिडिटी निर्धारित करती है। कई बार हमारी आवाज़ या फिर कह लें कि हमारे सोचने समझने का ढंग हमारे, हमें अपने परिवार से मिलता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें इन्वायरमेंट से सीखने को मिलती हैं, और इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। 1961 में एक साइकोलॉजिस्ट ने एक प्रयोग किया था और जानने की कोशिश की थी कि इंसान सीखता कैसे है, और एक सच्चाई सामने आई थी। वो प्रयोग था कि उसने बच्चों को कमरे में बुलाया और दो भागों में बच्चों को डिवाइड कर दिया, दो अलग अलग कमरों में रखा गया, और दोनों ही कमरों में एक इन्फ्लेटेबल क्लाउन रखा गया जिसका नाम था बोबो डॉल। बच्चों से कहा गया कि वो एक जगह बैठें और सिर्फ देखें कि हो क्या रहा है, बच्चे कुछ करेंगे नहीं, ऐसा निर्देश बच्चों को दिया गया। एक व्यक्ति कमरे में आया एक ग्रुप के पास और वो उस डॉल के पास बैठ गया, बिल्कुल शांत तरीके से उस डॉल के साथ खेलकर वापस चला गया। दूसरे ग्रुप के सामने एक दूसरा व्यक्ति आया, वो डॉल के सामने बैठा, उसे पीटना शुरू किया, मुक्के मारे, लातें मारी, ज़ोर ज़ोर से उसके ऊपर चिल्लाया और वापस चला गया। इसके बाद बच्चों को खिलौनों से भरे हुए एक नए कमरे में ले जाया गया और देखा गया कि जिन बच्चों ने एग्रेसिव बिहेवियर देखा था, उन्होंने भी खिलौनों पर वैसे ही लातें मारी, मुक्के मारे और बिल्कुल वही, उसी तरह के शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन जो बच्चे शांत वातावरण में बैठे थे, उन्होंने डॉल को नुकसान पहुंचाने की जगह उन्हें कडल किया, उनके साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव किया। इन बच्चों को किसी ने सिखाया नहीं था, ये नहीं कहा था कि आपको किसी को पीट के आना है, मार के आना है, या फिर किसी से ठीक से बात करनी है, उन्हें सिर्फ दिखाया गया था। सिखाने के लिए दिखाया जाना एक बहुत बड़ा उत्प्रेरक है, जैसा हम देखते हैं वैसा ही सीख लेते हैं। अपने अनुभवों से तो हम सीखते ही हैं, लेकिन देखने से उससे भी ज़्यादा सीखते हैं। बिना किसी रिवॉर्ड के, बिना असहज हुए हम सीख लेते हैं। ये प्रयोग किया गया था 1961 में, कितनी पुरानी बात है, लेकिन आज इसी चीज़ को हम रिप्लेस कर दें दूसरे माहौल में, तो फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आज हम जिन इन्फ्लुएंसर को, सेलिब्रिटीज़ को, या किसी सोशल मीडिया पर आई पोस्ट के कमेंट्स को देखते हैं और घंटों दिन में देखते हैं, उससे भी क्या कुछ सीख रहे हैं? क्या हम उनके जैसा बनने की कोशिश नहीं करते? हमें शायद ये महसूस भी नहीं होता, लेकिन हमारे दिमाग की वायरिंग धीरे धीरे बदलती जाती है। हम ये सोचने लगते हैं कि सफलता दिखती कैसी है, ऐसा लगने लगता है कि हर कोई हमसे आगे है। हम ये सोच भी नहीं पाते कि रिश्ते कैसे दिखते हैं। हम इन रील्स को, इन इन्फ्लुएंसर्स को देखकर अपने आसपास के लोगों में परफेक्ट पार्टनर ढूंढने लगते हैं, लेकिन परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये हमारा दिमाग हमें नहीं बता पाता। ये भी देखते हैं कि लोग कैसे पैसे खर्च कर रहे हैं, कौन कौन सी नई चीज़ें बाज़ार में आई हैं और नए लॉन्चेस क्या क्या हो रहे हैं, नए अपग्रेड कौन कौन से हैं, और हमारा मन लालच में भर जाता है कि ये भी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। हम तुलना करने लगते हैं और तुलना करना हमें नॉर्मल लगने लगता है, और फिर तुलना करके अपने आप को हम असंतुष्ट महसूस कराने लगते हैं, और असंतुष्ट महसूस करना भी हमें नॉर्मल लगने लगता है। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन्हें ख़रीदना भी नॉर्मल लगने लगता है। पहले हमारा माहौल, हमारे आसपास के लोग हमें शेप करते थे, अब अनजान लोग भी हमें शेप करने लगे हैं।

इन इन्फ्लुएंसर्स को हम जानते थोड़े हैं, इन सेलिब्रिटीज़ को हम जानते थोड़े हैं, लेकिन ये लोग भी हमारी पर्सनालिटी को आकार देने में अपना अपना योगदान दे रहे हैं, और शायद ही हम अपनी ज़िंदगी में इन लोगों से कभी मिलेंगे। तो आज की ज़िंदगी में यदि हम देखें तो इस तरह के इन्फ्लुएंसेस से हम पूरी तरह बच तो नहीं सकते, लेकिन हमें माइंडफुली इन सब चीज़ों को सोचना होगा कि हम किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हों और किस चीज़ से नहीं। हम ये ज़रूर चुन सकते हैं कि हमारे जीवन में हमें क्या चीज़ें चाहिए और क्या नहीं चाहिए, हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना, किस चीज़ को लेकर सावधान होना है और किस से कॉन्टैक्ट में रहना है। अनजाने में ही हम उन बच्चों जैसे भी होते जा रहे हैं, जो देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। हमें खुद नहीं पता होता कि हमारी ज़िंदगी में असर डालने वाले लोग क्या सच में सही हैं। बस इतना माइंडफुल यदि हम हो जाएं, तो हमारी पर्सनालिटी निखर कर सामने आ जाएगी।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। श्रोता साथियों, इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि हम किस तरह से सीख रहे हैं, देख देख कर सीख रहे हैं। और हमारे हाथ में जो ये मोबाइल फ़ोन है, बहुत सारे लोग न्यूज़ ऑन एयर ऐप से हमें कार्यक्रम में सुन भी रहे होंगे इसी मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। ये हमारे जीवन में बहुत सारी सुविधाएं तो लेकर आया ही है, लेकिन हाँ, कुछ अप्रत्यक्ष तौर पर ये हमें नेगेटिवली भी प्रभावित कर रहा है। अब ये नेगेटिव्स क्या हैं? हम आपसे कह रहे थे कि हम स्क्रॉल करते हैं, रीले देखते हैं, और ये इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हमारे जीवन पर इन्फ्लुएंस करते हैं, और हम होते हैं इन्फ्लुएंस। आपने देखा होगा कई बार कई लोग बड़े गहराई से किसी विषय पर बोल रहे होते हैं, आपकी कोई समस्या सुनी उन्होंने, अरे आपको ये अगर स्वास्थ्य समस्या है तो ये कीजिए, मैंने देखा था और ये बहुत कारगर उपाय है, आप तो ये कीजिए। वो हर किसी को इस तरह की बात बताते नज़र आएंगे, क्योंकि वो लगातार किसी इलाज से संबंधित रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं और उनके फ़ोन का AI उन्हें बार बार उसी तरह की चीज़ दिखा रहा होता है। आज के दौर ऐसा है कि हम पहले से कुछ ज़्यादा सूचनाएं ग्रहण कर रहे हैं। हर एक माध्यम हमें सूचना देने पर आमादा है। हम दिन भर कोई लेख देखते रहते हैं, वीडियो, पोस्ट, पॉडकास्ट, लोगों की टिप्पणियाँ और समाचार, कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे सामने से जब गुज़रती हैं ना, तो हमारे दिमाग में सूचनाओं का भंडार हो जाता है। हमें बहुत कुछ पता तो होता है, लेकिन बहुत सरसरी तौर पर। बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें वास्तव में हम गहराई से समझ पाते हैं। तो वैसी ही स्थिति हो जाती है जिसके लिए कहा गया है, कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। हम अपना ज्ञान कहीं कहीं उड़ेलते रहते हैं, आप ये कर लो, आप वो कर लो, आपको ऐसा करना चाहिए। हमें ये संकल्प करना होगा कि यदि हम किसी भी चीज़ में पारंगत होना चाहते हैं तो उसे गहराई में पढ़ें, लेख ढूंढें, कोई कोर्स करें उसके सिलसिले में। ऐसे में यदि हम एक एक चीज़ जो हमारे इंटरेस्ट की है उस पर 2-4-5 महीने लगाएंगे और उसको गहराई से जानने की कोशिश करेंगे, तो हम अधजल गगरी नहीं होंगे, बल्कि वो भरी गगरिया होगी जो चुप रहती है और सिर्फ वक्त पर प्यास बुझाती है। किसी भी विषय के साथ यदि समय ज़्यादा बिताया जाए तो वो हमारी समझ का हिस्सा बन जाता है, यानी हम ज़्यादा समझदार होकर गहराई से उस चीज़ को बता पाते हैं। और यदि हम स्क्रॉल करते हैं कोई चीज़ अपने मोबाइल फ़ोन पर, तो वो हमें नयापन तो देती है लेकिन समझ नहीं देती। तो ज़रूरी ये है कि हम ये संकल्प लें कि चीज़ों को सरसरी तौर पर जानेंगे तो ज़रूर, लेकिन बाद में उन्हें समझेंगे भी।

आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ सूचनाएं देते हैं। श्रोता साथियों, आज से भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश प्रवास पर रहेंगी। 18 से 22 जून तक का उनका मध्य प्रदेश प्रवास है। वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और श्योपुर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगी। आज 18 जून को वो इंदौर पहुंचेंगी और उसके बाद बैतूल में एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी बाय स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्यक्रम में शामिल होंगी। और आज का जो इनका कार्यक्रम है उस पर आधारित रेडियो रिपोर्ट आप शाम 6:30 बजे सुन सकेंगे। राष्ट्रपति के मध्य प्रदेश प्रवास की ये रेडियो रिपोर्ट्स जब तक राष्ट्रपति मध्य प्रदेश में हैं आपको हम सुनवाते रहेंगे। आज ही ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए राष्ट्रपति महोदया जाएंगी और आरती में भी शामिल होंगी। कल यानी 19 जून को सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। 20 और 21 जून को राष्ट्रपति महोदया जबलपुर में

योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल रहेंगी। 21 और 22 जून को श्योपुर ज़िले के कूनो नेशनल पार्क का आप भ्रमण करेंगी और उसके बाद ग्वालियर से दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगी। ये राष्ट्रपति महोदया का पूरा प्रोग्राम है और चूँकि श्योपुर का कूनो अभयारण्य ग्वालियर आकाशवाणी की सीमा में आता है, तो कूनो में राष्ट्रपति महोदया के प्रवास की रेडियो रिपोर्ट भी हम आपको सुनवाएंगे और इसकी सूचना आपको हम यहीं देंगे। श्रोता साथियों, आज 18 जून है, आज है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस और हम सब जानते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान यहीं ग्वालियर में हुआ था। तो ग्वालियर में हर साल 2 दिवसीय बलिदान मेला लगता है। पहले दिन रानी की कर्मस्थली जो झांसी है वहाँ के दुर्ग से परंपरागत रूप से बलिदान ज्योति लाई जाती है, जो कल लाई गई और बलिदान ज्योति यहाँ प्रज्वलित की जाती है। ये ज्योति महारानी लक्ष्मीबाई के 1857 के प्रथम स्वाधीनता समर में बलिदान की याद तो दिलाती ही है और साथ ही हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें आज़ादी कितने बलिदानों के बाद मिली है। समाधि स्थल और उसके सामने जो मैदान है वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के अस्त्र और शस्त्रों की प्रदर्शनी लगाई जाती है और ये अस्त्र शस्त्र सामान्य जन जाकर वहाँ देख सकते हैं। कल यानी 17 जून को महाराणा प्रताप की जयंती थी, तो इस सिलसिले में प्रताप की प्रतिज्ञा इस नाटक का मंचन किया गया था। आज भी एक महानाट्य होगा। चूँकि बलिदान मेले का आज मुख्य दिवस होता है, तो आज उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जगदीश देवड़ा मुख्य अतिथि होंगे इस समारोह के और लक्ष्मीबाई समाधि के सामने जो मैदान है ना, वहाँ शाम 7 बजे ये मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा जहाँ खूब लड़ी मर्दानी महानाट्य का मंचन किया जाएगा, क्रांतिवीर वंशज सम्मान होगा और साथ में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो यदि आप इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो हमने आपको बता दिया है कि कौन कौन से कार्यक्रम वहाँ होंगे, तो यदि आज शाम आप खाली हैं तो ज़रूर जाइए क्योंकि ये बलिदान मेला ज़रूर हमारे अगली पीढ़ी को भी जानना चाहिए कि हमारे शहर से जुड़े हुए कौन से लोग हैं और किस तरह से उन्होंने ये बलिदान दिया, पुराने ज़माने के अस्त्र शस्त्र कैसे हुआ करते थे और किन से लड़ाई लड़ी गई है।

वक्त है बह ही जाएगा, साथ में रह जाएंगी हमारी आपकी बातें। तो बातों का सिलसिला फिलहाल तो रोकते हैं क्योंकि वक्त लगातार आगे बढ़ रहा है। कल फिर इन्हीं बातों का पिटारा फिर से खोलेंगे इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग ग्वालियर। फिलहाल अपनी दोस्त तुलिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सूचना पर कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत, इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं सुधीर मसूरकर का सितार वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं मनोज मिश्रा। आइए सुनते हैं सुधीर मसूरकर का सितार पर बजाया राग अहीर भैरव।

भोपाल से प्रस्तुत है सतना जिले की चिट्ठी। आलेख लाल बहादुर तिवारी, वाचन स्वर शरद बाघेला। सतना जिले में भी इन दिनों प्री मानसून गतिविधियों का दौर है। तेज हवा के साथ कहीं कहीं बारिश होने से तापमान में कमी आई है। जिले में अतिवर्षा और बाढ़ आपदा स्थिति में आवश्यक सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07672223211 यानी 07672223211 है। कंट्रोल रूम के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कंट्रोल रूम के लिए प्रभारी अधिकारी राहत शाखा और डिप्टी कलेक्टर लक्ष्य राम जांगड़े को बनाया गया है, जिनका नंबर 9993754244 यानी 9993754244 है। सतना जिले में खरीफ फसलों की बोनी की तैयारी को ध्यान में रखते हुए जिले में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उप संचालक किसान कल्याण कृषि ने बताया कि वर्तमान में सतना और मैहर जिलों में यूरिया, डीएपी, एनपीके और एसएसपी सहित विभिन्न उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने गत माह स्थानीय टाउन हॉल में आयोजित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में सांसद गणेश सिंह उपस्थित रहे। विगत दिनों प्रदेश की पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और मैहर जिले की प्रभारी मंत्री राधा सिंह ने मैहर जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट भवन के पास 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नवीन जिला पंचायत के भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिला पंचायत भवन को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण के साथ तैयार किया जाए। प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के रेगांव विधानसभा क्षेत्र में 11 से 15 जून तक सघन भ्रमण एवं जनसंवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। रेगांव मंडल के प्रवास के दौरान राज्य मंत्री ने जनसंपर्क, जनसुनवाई और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए क्षेत्रवासियों को 213 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगातें दी। कार्यक्रम के तहत उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी दिलाया। उन्होंने ग्रामीणों से अधिक वृक्षारोपण करने और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। जिले के जवाहर नगर स्थित दादा सुखेंद्र सिंह स्टेडियम में स्विमिंग पूल सहित शेष बचे निर्माण कार्यों का शुभारंभ सांसद गणेश सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि ये स्विमिंग पूल युवाओं में तैराकी के प्रति रुचि बढ़ाने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सतना और मैहर जिले में 12 से 18 जून तक नगरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में क्षेत्रीय नागरिकों की समस्याओं के निराकरण और विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। सतना जिले में वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी जल संसाधनों में 16 जून से 15 अगस्त तक क्लोज सीजन घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान सभी प्रकार की मछली पकड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सतना जिले में मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को सभी स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। समय समय पर टीकाकरण कराए जा रहे हैं। सतना और मैहर जिले में किसानों के कल्याण के लिए कृषि और संबंधित विभाग के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए 10 दिवसीय कृषि रथ का शुभारंभ किया गया। ये कृषि रथ जिले के प्रत्येक विकास खंड के अंतर्गत निर्धारित सभी ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहा है। सतना जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जल संरक्षण और जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए व्यापक स्तर पर गतिविधियां आयोजित की गई। इसी तारतम्य में शहर के प्रसिद्ध जगत देव तालाब में जिला पंचायत और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तालाब सफाई के लिए संकल्प लेकर सफाई कार्य शुरू किया। सतना जिले के मझगवां विकासखंड अंतर्गत नकेला में क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र मझगवां के संयुक्त तत्वावधान में किसानों को औषधि पौधों की उन्नत खेती, प्रसंस्करण और उपयोग विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। और सतना जिले में 28 से 30 जून तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा, जिसमें घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम बच्चों को दवा पिलाएगी। सतना जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे सतना जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी का
1: ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त तुलिका।

लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और साथियों की गाई ये कव्वाली अभी आपने फिल्म मुगले आजम के लिए सुनी। इसे लिखा था शकील बदायूनी ने, संगीतबद्ध किया था नौशाद ने और सुनना चाहते थे आप सब। गंज डंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी, कमर कॉलोनी बड़वा, खरगोन से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली, रोहिदास चौक पंडरपुर शहर से सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के और मधुबनी बिहार से शब्बीर परवाना, साजिद अली, जाहिद अली और शाहिद अली। कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर है। आप हैं बांडी वाला फजिल का पंजाब से, ओम बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत, बेबी गरिमा बगड़िया, मनीष चौधरी, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतेक विरक और मीका विरक, बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा से बेबी शालिया डावर, हलीमा डावर, जिक्रा डावर और आयशा खत्री, धार धर्मपुरी से मूसा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जाकिर खत्री, छत्तीसगढ़ महासमुंद से कलीम आसमा, सलीम आसमा, यूसुफ आसमा, चांदनी चौक बिहार से सरफुद्दीन जाटव, फातिमा जाटव, डब्लू वली जाटव, सोनम वली और उनके बहुत सारे साथी। आप सब सुनना चाहते हैं आशा भोसले और साथियों का गाया, साहिर लुधियानवी का लिखा और रोशन का संगीतबद्ध किया ये गीत नहीं, ये कव्वाली है। फिल्म का नाम दिल ही तो है।

अगली कव्वाली सुनना चाहते हैं आप सब सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, रेशमा थापा, झांसी से फ़खरुद्दीन अंसारी, बद्रू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी, जेल रोड जालंधर से अमनदीप, सोनम कौर, परमजीत आसमा कौर, धर्मजीत फातिमा कौर, छठिया पुकर डुमराव से फातिमा वली, डब्लू वली, आसमा वली, सोनम वली, बिहार भवन दिल्ली से अकरम कटूरिया, उल्लाह कटूरिया, और कुंभार गली कोलगांव से पांडू चंदन, उषा चंदन।

रानीचंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन और पांडुरंग कुंभार। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर आशा भोसले, शमशाद बेग।

कार्यक्रम की अगली कव्वाली आप सबकी पसंद पर। आप हैं बिहारी कॉलोनी महासमुंद से मोहम्मद याकूब असमा कुरैशी, यूसुफ असमा कुरैशी, जेल रोड।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

आइए अब आपको सुनवाते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत। आप हैं पोस्ट तालगांव तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से मेहरबान सिंह नांगल, संतोष कुमार नांगल, प्रताप सिंह नांगल, अभिषेक कुमार, शिवम कुमार और उनके मम्मी पापा। मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आशना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर ये कव्वाली जिसे गाया है मन्ना डे ने फिल्म वक्त के लिए। गीत लिखा है सहर लुधियानवी ने, संगीतबद्ध किया है रवि ने।

कार्यक्रम की अगली कवाली आप सबकी पसंद पर। आप हैं रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। आप हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख और कल्पना देशमुख। खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रामचंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोडाना। सुदामानगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप। आइए आप सबको सुनवाते हैं शिवान रिजवी की लिखी ये गीत रचना, संगीत बुल्लो सी रानी का। इस्माइल आज़ाद कव्वाल और साथियों ने इसे गाया है फिल्म अल हिलाल के लिए।

फजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विश्व खेड़ा, लाडी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, नई बस्ती गंजुंडवारा से यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तौसीफ हाशमी, तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी, गंजुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन्निसा शाबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैज़ल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया, वर्मा मलिक का लिखा और सोनी गोमिक का संगीतबद्ध किया फिल्म धर्मा का ये गीत।

और आइए अब कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते हैं। आप हैं चंद्रनगर सहारनपुर से सुरेंद्र यादव, महेंद्र यादव, सुरेश यादव, आशा यादव और नरेंद्र यादव। जेल रोड रायगढ़ से निशा, उमा और जाह्नवी। खंडवा से दुर्गा कुमारी, सपना और राकेश। रायगढ़ बिहार से उमा राज, पवन, संजय, दीपक और कमल। धार धर्मपुरी से मूसा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जाकिर खत्री। मुरादाबाद दुल्हापुर से फरमान, सलमान, इरफान, असरार और नरगिस खातून। और चरडोगरी पिपरिया कबीर धाम से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जयकिशन साहू, कुमारी साहू, इंद्राणी और माया साहू। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर मन्नाडे, आशा भोसले और बातिश के स्वर में फिल्म बरसात की रात का ये गीत। गीतकार साहिर, संगीतकार रोशन।

0: इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम प्रसारित करेंगे।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह इंदौर पहुंची। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने किया। राष्ट्रपति अपने 5 दिवसीय प्रदेश दौरे के दौरान बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर और ग्वालियर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कूनो अभ्यारण्य भी जाएंगी। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को और प्रगाढ़ करने के प्रयासों के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में प्रमुख फ्रांसीसी व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जा रही है। इससे खिलाड़ियों के लिए सम्मानजनक रोजगार सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें अपने खेल प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धात्मक तैयारियों को निरंतर जारी रखने में भी निरंतरता मिलेगी। वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन और वेस्टर्न कोल्डफील्ड्स लिमिटेड के बीच 2 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। इनका उद्देश्य नर्मदापुरम स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और सिवनी स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण को समर्थन प्रदान करना है। भोपाल के रविंद्र भवन में आज शाम को रानीदाई नाटक का मंचन किया जाएगा। विश्व संगीत दिवस के अवसर पर भोपाल के भारत भवन में 19 जून को शाम 7 बजे फ्रांस के संगीत बैंड की प्रस्तुति होगी। और प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसून गतिविधियों के चलते आंधी और बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर संभाग के अनेक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़।

0: डीटीएच का ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज़ ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। हमारे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम किसी खास विषय पर बात करेंगे। वैसे वो विषय हम सभी के लिए बहुत ही खास है। पानी की कमी को हम कैसे रोक सकते हैं? आने वाली स्थिति, बारिश नहीं होने की स्थिति में या बारिश कम होने की स्थिति में पानी का बचाव हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है, ये हम सभी जानते हैं। तो आइए आज हम इस विषय पर बात करेंगे और सुनेंगे सुमधुर गीत। तो कीजिए कॉल 2660902 पर और एसटीडी कोड आप जानते ही हैं 0755। हमें इंतज़ार है आपके फ़ोन कॉल्स का। हेलो, नमस्ते जी, कौन बोल रही हैं?
2: जानकी गुप्ता बोल रहे हैं, ग्राम भगवंत नगर से।
1: कौन बोल रहे हैं?
2: जानकी गुप्ता।
1: जानकी गुप्ता बोल रही हैं जी, कहाँ से?
2: ग्राम भगवंत नगर।
1: अच्छा, और जानकी जी, भगवंत नगर ये कहाँ पड़ता है?
2: ये है टीकमगढ़ जिला में है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: तहसील कलेरा।
1: आपने शायद पहली बार कॉल किया है ना?
2: कॉल अभी 3 तारीख को की थी, कॉल 7 तारीख।
1: नहीं मतलब बहुत, मेरी तो शायद आपसे पहली बार बात हो रही है जानकी जी।
2: आप कौन बोल रही हैं?
1: मैं कविता रावत बोल रही हूँ।
2: हाँ, पहली बार हो गया
1: है ना। चलिए और सुनाइए, क्या हाल है आपके?
2: सब बढ़िया है मैम, खाना बना गए।
1: हाँ,
2: साफ कर रहे थे, फोन लगा रहे थे, फिर लग गया।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। और जानकी जी, आपके यहाँ जो पानी है उसकी कोई कमी तो नहीं है? भरपूर मात्रा में मिलता है आपको पानी?
2: एक तो ये नहर वहर आती है सिंचाई के लिए।
1: अच्छा अच्छा,
2: हाँ। और जो बैठा कुगा उगा भी यहाँ पर।
1: मतलब अच्छी व्यवस्था है जल की,
2: घर में बोर है।
1: चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपसे एक बात पूछनी है कि आप है ना पानी की बर्बादी करने से बच्चों को या रोकती हैं या बहने देती हैं काफी हद तक पानी?
2: अरे मैम, हमारे यहाँ जो हमारा घर है ना,
1: हाँ,
2: हमारे से बिल्कुल भी पानी बर्बाद नहीं करते हम लोग।
1: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि है ना कई जगह पर पानी की बहुत समस्या हो रही है। और अभी हम देख रहे हैं कि जून आधा निकल चुका है लेकिन मानसून अभी पूरी तरह से हमारे यहाँ नहीं आया है।
2: हाँ मैम,
1: है ना।
2: तो हम जो हमारे यहाँ पानी है ना, और हमारे नल में थोड़ा कम पानी है, इसलिए हम और किसी के घर से पानी की वो करें व्यवस्था। तो हमारे यहाँ तो पानी बर्बाद हम करते ही नहीं, कभी नहीं करते। पहले नल से लिया तो नहीं करते, अब घर पानी आता तो नहीं करते।
1: बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि है ना यदि हमें भरपूर पानी मिल भी रहा है लेकिन हमें सब लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पानी की बर्बादी रोकना चाहिए। और ये हम सभी कर
2: गांव में।
1: हाँ हाँ,
2: पानी जी के जाना, पानी की मात्रा है तो बहुत बार करते, हम तो कई बार रोकते हैं, ये इतना पानी ना फैलाओ तुम।
1: बिल्कुल सही बात है, जहाँ भी आप देखें कि कोई पानी की बर्बादी कर रहा है तो बेझिझक होकर उसको रोकिए। जी चलिए जानकी जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू, धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते दीदी। कौन आप बोल रहे हैं?
0: मैं कविता दीदी बोल रही हूँ।
1: अच्छा,
0: आप
1: कहाँ
0: कौन
1: से
0: बोल रहे
1: फोन?
0: हैं?
1: मैं सपना से रमेश कोटवानी, सपना
0: कौन बोल रहे हैं?
1: से रमेश कोटवानी।
0: रमेश कोटवानी?
1: हाँ
0: कहाँ से? जी रमेश कोटवानी जी बोलिए।
1: हाँ तो आज कौन से हेलो वो वाला चल रहा?
0: आज हमारा प्रोग्राम है बात आपकी गीत हमारे।
1: जी, तो समाधि फिल्म का गाना सुनना है।
0: बिल्कुल हम आपको गीत तो सुनवाएंगे लेकिन आज के प्रोग्राम में हमारी पसंद के गीत होते हैं, बातें आपकी होती हैं। और आज की जो बात हमने रखी है उसका विषय है कि जल को कैसे संरक्षित करें, कैसे बचाव करें, हम पानी की बर्बादी को कैसे रोकें।
1: जल को तो देखिए दीदी, चाहे वो नाली हो चाहे नर्मदा हो, सबको रोक के चलना चाहिए। पानी तो हर चीज का काम आता है, चाहे गंदा भी हो भी गमलों में काम आ जाएगा,
0: बिल्कुल सही बात है लेकिन
1: हर
0: यही
1: चीज में काम
0: बातें
1: आ जाए।
0: हम हर जन जन तक पहुंचानी है कि कैसे पानी की बर्बादी को रोकें और
1: नहीं
0: वेस्टेज
1: नहीं
0: पानी है उसका क्या उपयोग करें।
1: नहीं दीदी, ये तो जरूरी है। नहीं, ये तो आदमी को शुरू से करना चाहिए, नहीं तो ये तो आगे चल के भविष्य में बहुत दिक्कत होगी।
0: बिल्कुल सही बात है। और ये जो आने वाली दिक्कतों को, कि हमारे बच्चों को वो दिक्कतें ना हो, यही सोचकर यदि हम सभी थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो
1: नहीं,
0: पानी
1: जरूर
0: को बचा सकते हैं,
1: जरूरी है दीदी, ये तो बहुत
0: है ना?
1: जरूरी है।
0: क्योंकि हम
1: हाँ
0: देख रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से कितनी मानसून कितना रूठा हुआ है हम सभी से।
1: अभी देखिए, इतनी गर्मी इसलिए भी पड़ती है कि
0: गर्मी,
1: जमीन पे
0: हाँ हर साल गर्मी बढ़ती ही जा रही है, टेम्परेचर।
1: सीमेंटिंग रोड बन रही,
0: बिल्कुल सही बात है।
1: वो पानी अब बहे तो जाए कहाँ से,
0: बिल्कुल
1: सीमेंट
0: बिल्कुल।
1: जब इधर उधर चला जाता है।
0: बिल्कुल। तो जब भी बारिश
1: बहुत
0: भी हो
1: बुरी
0: तो उसके
1: लगती
0: लिए
1: है।
0: भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कुछ गड्ढे हमारे जहाँ खेत वेत हैं वहाँ करके रखें कि वो जमीन के अंदर पानी बैठ सके, है
1: औद्योगिक
0: ना?
1: क्षेत्र देखिए, इतने खुले हैं मशीनों पूरी 24 घंटा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए रमेश जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। कल 11 बजे अपना प्रोग्राम सुनिएगा। और अभी के लिए आपसे इतनी ही बातचीत।

0: हेलो
1: हेलो, आकाशवाणी।
0: जी, आकाशवाणी मध्य प्रदेश
1: आप अच्छे हैं? आप?
0: जी। हम बहुत अच्छे हैं, आप अपना शुभ नाम बताइए।
1: मेरा नाम सागर सिंह कुशवाहा है।
0: सागर सिंह कुशवाहा, कहाँ
1: हाँ जी,
0: से?
1: बसई नवाब धौलपुर,
0: जबलपुर,
1: बसई नवाब धौलपुर।
0: धौलपुर
1: हाँ जी,
0: जी। और कब कॉल किया था आपने? आज तो हमारी शायद आपसे पहली बार बात हो रही है।
1: हाँ जी,
0: इसके पहले कब कॉल किया आपने आकाशवाणी में?
1: फोन लगता है नहीं है तुम्हारा।
0: लेकिन आज लग गया ना।
1: आज लग गया, बहुत खुशी हुई है। मैं
0: चलिए सागर जी, क्या करते हैं आप?
1: राजमिस्त्री हूँ।
0: अच्छा। और अब हम जिस विषय पे आज बात कर रहे हैं, वो बात करने में आपको तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप तो सागर हैं और हम बात कर रहे हैं जल की।
1: आओ बोल, बताइए।
0: तो बताइए, जल को कैसे बचाया जाए, पानी की बर्बादी कैसे रोकी जाए?
1: एक तो ऐसा है, पानी खर्च कम करो। उसकी जहां तक लगे एक बाल्टी फैला देना, आधी बाल्टी कोशिश करो पानी फैलाने की।
0: बिल्कुल सही बात है। मान लो अपने यहाँ खूब नल आता है, खूब पानी आता है, उसके बावजूद हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि बाकी लोगों के पास उतना नहीं पहुंच रहा है।
1: फालतू नल को मन चलाओ, पानी की जरूरत है उतना ही खर्च करो।
0: बिल्कुल सही बात है। यदि हम अपनी गाड़ियों को धोते हैं तो डायरेक्ट पाइप से ना धो के बाल्टी से मग्गे का इस्तेमाल करें तो पानी की कम बर्बादी होगी। और
1: बिल्कुल
0: जो
1: होगी साहब।
0: हमारे दाल चावल धोने का पानी है, यदि वो गमलों में डाला जाए तो उससे भी हमारी पानी की काफ़ी बचत होगी। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, यदि हम सभी उसका ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी को पानी की दिक्कत नहीं होगी।
1: जैसे पहले कुएं पे पानी निकालते,
0: जी
1: एक बाल्टी के काम निकाल लेते, अब समर तो उसको पैप चालू कर देंगे, चल रहा है काफी, एक
0: वही,
1: घंटा आध
0: बहुत जगह
1: घंटा।
0: ऐसा देखा है कि पानी की बर्बादी काफ़ी होती है। तो हम तो यही चाहते हैं अपनी सभी श्रोताओं के माध्यम से सब लोगों तक यही जागरूकता फैले कि पानी की बर्बादी को रोका जाए,
1: रोका जाए
0: है ना? चलिए सागर जी,
1: जबरदस्त।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। कुछ और कहना चाहते हैं?
1: अब गाना सुनना है।
0: गाना तो आप बिल्कुल सुनेंगे, हम अपनी पसंद का गाना सुनवाएंगे और कल 11 बजे से आप अपना कार्यक्रम सुन सकते हैं। हमारे बीच हुई बातचीत भी आप सुन सकेंगे, ठीक है?
1: ठीक है जी,
0: चलिए धन्यवाद।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: दीदी, नमस्ते। हम
0: नमस्ते जी।
1: भागचंद साहू जी, राजेंद्र नगर, गंज बासोदा, जिला विदिशा।
0: भारचंद साहू,
1: बिल्कुल दीदी, आपके नीमे सोता।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और
1: और
0: क्या
1: सारे
0: हाल है
1: कार्यक्रम
0: आपके?
1: कर हैं? बहुत बढ़िया है दीदी, आप
0: हम भी
1: कैसी
0: बहुत
1: हैं?
0: अच्छे हैं। और बारिश
1: बिल्कुल।
0: वारिश तो अभी गायब सी है।
1: हाँ, गायब तो है फिलहाल में, कल तो पानी गिरा है गंज वासुदेव में।
0: हाँ, यहाँ भोपाल में भी गिरा था, लेकिन बहुत कम। जो कहते हैं ना कि मानसून आ गया है, वो अभी ऐसे हालात दिख नहीं रहे।
1: नहीं, वो अभी 5% दिख रहा था माहौल,
0: वही।
1: ऐसा नहीं दिख रहा था।
0: तो आज हमारा विषय यही है कि जल की बर्बादी हम कैसे रोकें, क्योंकि डे बाय डे जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं, वक्त बीतता जा रहा है, पानी
1: बिल्कुल
0: की
1: बिल्कुल
0: कमी होती जा रही
1: बिल्कुल दीदी, बहुत बहुत
0: है
1: अच्छा
0: ना?
1: अच्छा फिर इसने है। बिल्कुल।
0: तो बताइए ना,
1: हम
0: आप कैसे पानी की बर्बादी को रोकते हैं?
1: दीदी, पानी तो ऐसा है, देखो, बेफजूल का पानी बिल्कुल नहीं बहाना चाहिए। है क्या है, जैसे पानी आपका है पर्याप्त, आपके पास है,
0: जी
1: तो या गड्ढा मड्ढा वगैरह बना लो या कुछ बना लो उसको।

0: रोक के रखें पानी के लिए,
1: बिल्कुल सही
0: ये
1: कह रहे
0: अपने
1: हैं।
0: लिए आगे के चल के अपने लिए काम में आए वो पानी, बिल्कुल
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: रखना पड़ेगा क्योंकि बिना पानी बगैर कुछ नहीं हो सकता।
1: और आज हमें पानी है लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए ये दिक्कतें और बढ़ जाएंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, पेड़ पौधे कट चुके हैं
1: वही।
0: तो उनकी वजह से पानी की मात्रा कम हो रही है, पानी गिर नहीं रहा सही तरीके से,
1: बिल्कुल।
0: बिल्कुल पानी बिल्कुल भी नहीं गिर रहा सही तरीके से, हम
1: तो
0: व्यर्थ कर
1: इसीलिए
0: चुके हैं
1: हम
0: ना।
1: सभी का कर्तव्य बन जाता है कि कहीं भी यदि पानी की बर्बादी होते देखें तो उसे
0: बिल्कुल
1: रोकें और स्वयं भी बहुत कम से कम मात्रा में पानी को खर्च करें।
0: बिल्कुल। और दीदी एक बात और कहना चाहते हैं हम रेडियो
1: बताइए।
0: के माध्यम से
1: हाँ
0: कि
1: जी।
0: आजकल जो स्कूल के खुलने वाले हैं बच्चों के,
1: हाँ।
0: ज्यादातर हमें देखने में एक आया है कि आजकल बच्चे टच मोबाइल में ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं।
1: वो तो सही बात है।
0: है क्या है, ये गलत है, ये माता पिता का फर्ज है कि उन्हें देखें क्या देख रहे हैं, पढ़ाई
1: बिल्कुल
0: कर रहे
1: सही
0: हैं कि
1: बात
0: नहीं कर
1: है।
0: रहे हैं, जी बच्चे कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, उनकी लाजें देख के आए भाई,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: लापरवाही बिल्कुल ना बरतें बच्चों के साथ।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हम जो अपने विषय से अब ना हटें तो पानी की बर्बादी को रोकने का पूरा प्रयास आप सब भी करें।
0: और दीदी हम ये कह रहे हैं कि हमारे पत्र शामिल नहीं हो रहे हैं आजकल
1: अभी
0: आकाशवाणी
1: आजकल
0: भोपाल में,
1: अभी होगा, आपका पत्र भी शामिल होगा। बहुत सारे लोग रहते हैं तो सबका नंबर आते आते थोड़ा टाइम लगता है। चलिए,
0: बहुत
1: कॉल करने के
0: ज्यादा
1: लिए धन्यवाद। हमारे अगले श्रोता लाइन में लगे हुए हैं। ठीक
0: बिल्कुल
1: है
0: दीदी
1: भारतचंद्र जी।
0: बिल्कुल
1: थैंक यू
0: मैम, दीदी
1: थैंक यू वेरी मच।
0: नमस्ते नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: हेलो हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं धार जिले के से रवि जी का बोल रहा हूँ,
0: रवि
1: रवि वर्मा।
0: रवि वर्मा, धार जिले से। और रवि जी, क्या करते हैं आप?
1: मैडम मैं किसान भी हूँ और हमारे पास में इंडस्ट्रियल एरिया है पिथमपुर,
0: हाँ,
1: वहाँ पर एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता हूँ जहाँ पर एक्सावेटर और जेसीबी बनती है।
0: अच्छा हाँ, मैं जानती हूँ पीथमपुर को तो।
1: जी।
0: चलिए, क्या उम्र क्या है आपकी?
1: मैडम मेरी उम्र 40 वर्ष है और मैं बहुत पुराना श्रोता हूँ, रेडियो का बहुत दीवाना हूँ।
0: अरे वाह,
1: और मेरा
0: अपनी
1: पहली बार फोन
0: दीवानगी
1: लगा है
0: बिल्कुल
1: आपके
0: बरकरार
1: रेडियो पे।
0: रखिए। जी।
1: और मैं कहना चाहता हूँ कि जो रेडियो सुनता है ना,
0: हाँ
1: उसकी कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है। जो सुनता है ना, तो
0: हाँ
1: उसकी कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा होती है,
0: बिल्कुल
1: ये मेरा
0: सही कह
1: मानना
0: रहे
1: है।
0: हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रेडियो से हमें तमाम तरह की ज्ञान प्राप्त होता है।
1: जी मैडम
0: आज
1: बिल्कुल।
0: हम जो बात कर रहे हैं, जैसे जल की बर्बादी को रोके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमेशा, मतलब हर बार है ना, पानी मानसून हमसे थोड़ा थोड़ा रूठता जा रहा है, क्योंकि
1: जी जी
0: पेड़
1: मैडम।
0: कटते जा रहे हैं,
1: हाँ मैं
0: है
1: भोपाल
0: ना?
1: में आता हूँ ना, तो जब झील थोड़ी सी खाली देखता हूँ ना, तो मुझे भी लगता
0: सच
1: है कि
0: बात है। तो हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को, उनके भविष्य के लिए, पानी को संरक्षित रखने के लिए सभी को थोड़े थोड़े
1: हम
0: प्रयास
1: हमारी
0: करने
1: आने
0: होंगे।
1: वाली पीढ़ी को बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं देना चाहते, उनको पर्यावरण अच्छा दे दें, उनको अच्छे पेड़ पौधे दे दें,
0: बिल्कुल,
1: पानी दे दें, तो यही अपने लिए बहुत
0: यही
1: है,
0: विरासत है उनके लिए,
1: यही विरासत है
0: है ना?
1: उनकी।
0: तो बस
1: क्या
0: इसी का
1: हम
0: प्रयास करना
1: हमेशा में
0: है।
1: अपनी प्रकृति को अपने हाथ से खोते जा रहे हैं?
0: बिल्कुल। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे कैसे प्रयास आप करते हैं रवि जी? थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस बात पर।
1: मैडम मैं तो अपने मेरे दो बच्चे हैं,
0: हाँ,
1: उनको हमेशा यही शिक्षा देता हूँ कि अपने को कम से कम गाड़ी चलाना है, कम से कम अपने को जो बिजली की भी बचत करना है घर में,
0: हाँ
1: और जहाँ तक हो सके हम आसपास तो साइकिल का यूज़ करते हैं। हमारे घर में दो साइकिल भी है
0: हाँ
1: और एक इलेक्ट्रिक बाइक भी है, तो हम कोशिश हमारे स्तर से कर रहे हैं मैडम।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अपने स्तर पे हर व्यक्ति यदि कोशिश करता रहेगा तो हम सभी अपने मकसद में सफल होंगे,
1: और
0: ठीक है ना
1: एक और
0: रवि
1: बात
0: जी?
1: कहता हूँ कि मैं बताऊँ, भारत को स्वच्छ देखना चाहता हूँ मैडम,
0: बिल्कुल सही कह
1: और
0: रहे हैं।
1: जहाँ पे भी मैं अगर ये कचरा और ये पॉलिथीन उड़ते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे थोड़ा कुछ अंदर से फील होता है कि अगर मैं कुछ, मेरे पास समय नहीं है अभी कि मैं कुछ करूँ इसमें ज्यादा, सोशल वर्क पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अगर आगे होके अगर मैं फ्री हुआ, अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे हो गए, बच्चे कमाने लग गए, तो मैं इसी काम में लगने वाला हूँ मैडम।
0: बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए रवि जी।
1: जी जी मैडम,
0: जी,
1: मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।
0: मुझे भी बहुत
1: और मैं
0: खुशी
1: मैडम
0: हुई।
1: मेरे बालक का कल बर्थडे, उसका नाम लेना चाहता हूँ
0: बिल्कुल
1: रौनक
0: लीजिए।
1: वर्मा, और मेरी मिसेज का नाम है नीतू वर्मा,
0: जी
1: और बड़े वाले बालक जो कंप्यूटर साइंस में बेंगलोर में पढ़ रहा है, उसका नाम है राज वर्मा।
0: चलिए, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे
1: और
0: आकाशवाणी परिवार।
1: मेरी माता जी का नाम मैडम शकुंतला वर्मा, और बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी
1: और मेरा
0: धन्यवाद।
1: गीत है मैडम,
0: गीत हमारी पसंद का होगा आज के कार्यक्रम में।
1: दिल दीवाने का डोला, दिल का
0: चलिए,
1: ये
0: ठीक
1: फेम रोग
0: ठीक
1: पे। धन्यवाद
0: ओके, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ नमस्ते मैम,
0: नमस्ते, कहाँ
1: मैं हीरो जी बोल रही, बाग से, बाग
0: से?
1: बाग जिला धार,
0: धार जिले से कौन बोल रही हैं?
1: मैं हीरो बोल रही, हीरो पड़ियार।
0: अच्छा, हीरो।
1: हाँ
0: कैसी हैं?
1: हम तो अच्छे, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, आप बताइए।
1: बढ़िया
0: आपके?
1: होती आप, बढ़िया होती।
0: बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हीरू जी, आज हम ये बात करेंगे कि है ना, पानी की बर्बादी को कैसे रोक सकते हैं हम? आप कैसे रोकती हैं?
1: पानी की बर्बादी को, ये तो मेरे को इतना नहीं आता है मैम।
0: हाँ,
1: हम तो बर्तन मानते तो कई साबुन रसोड़े से मान लेते, पानी की बचत करते हैं, ज्यादा पानी ढोलते नहीं है।
0: अच्छा,
1: हाँ पानी ढोलना कहाँ पे, अपन को पानी पीने को मिल रहा है इतना ही बहुत है मैम।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं।
1: हाँ
0: चलिए,
1: अपन पानी ढोल ढोल करेंगे फिर अपन क्या कैसे जिएंगे? हाँ
0: बिल्कुल सही बात है।
1: पानी से तो जी रहे अपन, नहीं तो कैसे जी रहे अपन?
0: जल ही जीवन है।
2: अभी तो जीवन है, वो मछली जैसे बाहर निकल अंदर रहती समुद्र में तो जीती, बाहर निकल जाती तो मर जाती है वो।
0: बिल्कुल सही बात है, वही हमारा जीवन है, बिन पानी सब सून, यानी हाँ। पानी के बिना हम सबका जीवन संभव नहीं है।
2: तो रोटी एक चटनी मिले तीखी सही, पर उनको पानी होना जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है। तो बस ये बात हम सभी को समझना चाहिए कि यदि आज हमारे पास भरपूर पानी है तो कल के लिए हमें उसे बचा के रखना बेहद जरूरी है।
2: मैम लोग समझते थोड़ी, ढोल ढोल करते इनके तो क्या
0: वही
2: समझ, क्या
0: अब हो सकता है कि अपन जो बात कर रहे हैं वो सबके कानों तक पहुंचे, और जो लोग बर्बादी करते होंगे वो शायद उन्हें थोड़ी बहुत समझ आ जाए। बस यही आकाशवाणी का उद्देश्य होता है कि लोगों में जागरूकता फैलाना। ठीक है जी,
2: जितना बचत करेंगे जितना अच्छा रहेगा जीवेंगे तो अपन क्या।
0: बिल्कुल, चलिए हीरू जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दूसरे कॉलर्स भी लाइन में हैं तो हम उनसे बात करेंगे। आपसे आज के लिए इतनी ही बात, ठीक है,
2: धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: खाते गांव से गोविंद जलोदिया बोल रहा था।
0: खाते गांव से
1: हाँ,
0: गोविंद जी,
1: गोविंद जलोदिया।
0: गोविंद जलोदिया, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है, ठंडी पड़ गई थोड़ी, जब पानी वानी गिर गया तो।
0: बहुत ज़्यादा तो नहीं गिर रहा, लेकिन हाँ, हल्का सा जैसे ही गिरता है तो थोड़े से
1: हाँ
0: मौसम में ठंडक आ जाती है, लेकिन
1: हाँ
0: थोड़ी देर बाद वापस उमस हो जाती है।
1: हाँ हो जाती है, पर वो
0: आज गोविंद जी, हम जो बात कर रहे हैं ना आज, हेलो
1: हाँ,
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: खाते गांव से बोल रहा था गोविंद जलोदिया।
0: हाँ, आपसे बातचीत अधूरी रह गई थी, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। तो गोविंद जी, आज जो हमारा विषय है, बात आपकी की थी हमारे कार्यक्रम का, कि
1: हाँ, अच्छा, पानी
0: पानी की बर्बादी को कैसे रोका जाए।
1: का बर्बादी का कैसा रोका जाए।

0: बताइए ना इस विषय पर, आप कैसे
1: पानी
0: पानी
1: का
0: का।
1: क्या है कि पानी तो बहुत ही मतलब अनमोल है चीज है। पानी तो मतलब क्या है, जल स्तर कम होता ही जा रहा है, पानी कम ढोलो। बहुत सारे नल की टोटियां पे लगी, नगर पालिका छोड़ देती है ऐसी पटक पटक, और लोग पटक रहे चलते रहता है काम उसका। क्या अपने घर भी यही हाल है, नल चल रहा है तो चल रहा है, बंद हो रहा है तो बंद हो रहा है, कोई देख रेख करते नहीं है
0: तो ये सबको
1: और दूसरी
0: ध्यान
1: बात
0: देने
1: यह
0: की
1: है कि
0: जरूरत
1: कंट्रोल
0: है।
1: फव्वारे से नहाया करो तो और कम पानी का उपयोग होता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन है ना,
1: हाँ
0: पानी को, बर्बादी को तो रोकना है ना हम सभी को,
1: पानी
0: है ना।
1: को रोकना है, कम उपयोग करो जी। बहुत सारे लोग क्या है कि मतलब बहुत ज्यादा ही उपयोग करते हैं उसका। अक्सर हमारे यहाँ खाते गाँव में तो क्या है कि रोड सुबह जब नहलाते हैं जब यहाँ से वहां रोड को नहलाते थे, जब लोगों को मिल नहीं रहा और ये फेंक रहे हैं।
0: अरे ये बहुत गलत बात है, और जहाँ
1: हाँ
0: कहीं
1: बहुत
0: भी हम
1: गलत
0: ऐसी पानी की बर्बादी होते देखें ना, तो
1: है।
0: हम उन्हें बिल्कुल बेतकल्लुफी से रोकें, ये हम सभी का फर्ज है।
1: क्योंकि वो हमारे यहाँ क्या है कि पानी की वो नहीं है, नर्मदा जी बांस में ही है तो
0: हाँ
1: उससे सप्लाई होता रहता है, तो पानी का कोई वो नहीं है।
0: हाँ, तो आप रोकिए, आप बोलिए उनको कि यदि आज हम पानी की बर्बादी करेंगे तो कल पानी की कमी होगी,
1: ठीक
0: है ना। ठीक है गोविंद जी, सबके छोटे छोटे प्रयास ना
1: हाँ
0: बहुत बड़े संकट से हमें मुक्ति दिला सकते हैं।
1: अरे
0: ठीक है, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद,
0: नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन
1: नमस्ते जी।
0: बोल रही है?
1: मैं कामिनी दासुंदी बोल रही हूँ, ठिकरी से, बड़वानी जिले के ठिकरी गांव से।
0: अच्छा, बड़वानी से। कामनी जी, कैसी हैं
1: बड़वानी
0: आप?
1: जिले के ठिकरी गांव से। बढ़िया
0: अच्छा, कैसी हैं आप?
1: बढ़िया सर।
0: और क्या काम करती हैं?
1: मैं मैडम, मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, हाउसवाइफ हैं। तो कामनी जी, आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि पानी की बर्बादी को आप कैसे रोकती हैं, या पानी खूब जब कपड़े धोती हैं, बर्तन
1: नहीं जी,
0: मांजती हैं।
1: पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए। पानी अमूल्य है अपने लिए, जल ही जीवन है।
0: ये हम सब समझते हैं, लेकिन है ना, रोकते नहीं हैं।
1: रोकते नहीं है, बस वो जैसे नल बह रहा है तो उसको बंद नहीं करेंगे। बर्तन बर्तन धोएंगे तो नल में धोएंगे, ऐसे नहीं करना। बर्तन में लेके पानी में बर्तन धो तो उससे पानी की बचत
0: बिल्कुल,
1: होगी।
0: बहुत छोटी छोटी बातें हैं। यदि आप टब में पानी लेके फिर बर्तनों को
1: अपने
0: धोंगी
1: बर्तन
0: तो
1: को
0: पानी की
1: धोएंगे
0: बर्बादी रुकेगी। कार अगर आप पाइप से ना धोएं, बाल्टी से धोएं, तो उससे पानी की बर्बादी रुकेगी,
1: उससे पानी की बर्बादी
0: है ना।
1: रुकेगी।
0: बहुत सारी बातें हैं। हमारी
1: बहुत सारी
0: सब्जी,
1: बातें
0: दाल, चावल, ये सब धोने का पानी यदि हम पेड़ों में
1: पौधों में
0: डालेंगे तो
1: डालेंगे।
0: उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और पानी की
1: हाँ,
0: बर्बादी बचेगी।
1: पानी की बर्बादी भी नहीं होगी।
0: बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अगर हम इन सब का
1: हाँ
0: ध्यान रखें तो हम
1: जी
0: आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं।
1: दीदी, पहली बार मेरा कान लगा है। मैं बहुत दिन से प्रयास कर रही थी मगर नहीं लगा, लेकिन आज प्रयास सफल हो गया।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कामनी जी, ये प्रयास तब और सफल होगा यदि आप अपने आसपास के लोगों को भी पानी बर्बाद करने से रोक सकें,
1: जी
0: है ना। कहीं भी आप किसी को अगर ऐसा कुछ करते देखें तो उसे बिल्कुल जाकर रोकिए कि ये गलत है, उसे सही तरीका बताइए। या कहीं नल खुला हुआ देखें तो उसे तुरंत बंद कर दीजिए बिना किसी झिझक के, है ना।
1: पानी
0: तब
1: का भी, और मैं दीदी, मैं तो लाइट का भी हमेशा घर में कहती रहती हूँ, वहां का लाइट जल रहा है, फालतू जल रहा है,
0: बिल्कुल
1: उसको बंद
0: हर
1: करो।
0: चीज की अगर बचत हम
1: हाँ
0: करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम अच्छा
1: जी,
0: भविष्य दे सकेंगे, अच्छी विरासत देकर जाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, आज के कार्यक्रम में आपसे हमने जो बातचीत की वो आप कल प्रोग्राम में सुन सकेंगी 11 बजे से, और हमें बहुत खुशी हुई आपसे बातचीत करके। धन्यवाद कामनी जी।
1: थैंक यू,
0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 5 दिवसीय प्रदेश प्रवास के पहले दिन आज बैतूल में ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी बाय स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। इसके बाद वे ओंकारेश्वर के लिए रवाना होंगी। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को और प्रगाढ़ करने के प्रयासों के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में प्रमुख फ्रांसीसी व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। उन्होंने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जा रही है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पुलिस में उपनिरीक्षक के 10 और आरक्षक के 50 पदों पर सीधी नियुक्ति का अवसर मिलेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल उज्जैन के महिदपुर में विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डोंगला से गुजरने वाला नया 4-लेन महिदपुर शहर के विकास को गति देगा। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से इंदौर, उज्जैन, भोपाल और ग्वालियर संभाग के अनेक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। और भारत अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे 1 दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का 3रा और अंतिम मुकाबला शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। पहला गीत आप सुनेंगे हेमलता के स्वर में, फिल्म का नाम अखियों के झरोकों से। गीत लिखा रविंद्र जैन ने, संगीतकार रविंद्र जैन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है कोटवा बलिया से। श्रोता हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। अगले श्रोता नेवादा गाजीपुर से हैं, प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय। अगले श्रोता अमरावती महाराष्ट्र से हैं, कमरुल्ला, नसीम, आयशा, हदिया, अस्मा, सालिया, शोएब खान, मुश्तबा खान, राउफ, शाहिद। अगले श्रोता अकोला से हैं, रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म मुगले आजम से। इस गीत को सुरों से सजाया लता मंगेशकर और साथियों ने। गीतकार हैं शकील बदायूं, संगीतकार नौशाद। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है घंटाघर चौक खंडवा से। श्रोता हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। अगले श्रोता नांदेड़ से हैं, गौतम नगर, प्रभाकर जौंधले और आरती जौंधले। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अमर अकबर एंथनी इस फिल्म से अगला गीत आप सुनेंगे। इस गीत को सुरों से सजाया किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है कनेरा मोहल्ला पटियाला से। श्रोता है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। अगली श्रोता गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

आशा भोसले और किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म सीता और गीता से। गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीतकार आर डी बर्मन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। श्रोता है ताज अंसारी, गुलाम साबिर और मिराज जहां। अगले श्रोता धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं, रामचंद माखीजा, शंकर लाल माखीजा, राहुल कुमार, श्रीमती सविता, स्वाति और पूरा माखीजा परिवार। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जंग लगी तलवार की 13वीं कड़ी।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना अपनी बेटी पार्वती के भाग जाने से दुखी भृगु साई नदी में कूदकर आत्महत्या करना चाहता है। यशवंत उसे बचाता है। भृगु हड़ताल को लेकर यूनियन नेताओं पर जमकर बरसता है। रामू बामू कंपनी के पुराने टायर बेचकर बोतल लेकर आते हैं। खाने के लिए मछली का इंतजाम करने के लिए दोनों मिलकर कंपनी के भंडार से जिलेटिन चुराकर साई नदी में विस्फोट करते हैं। विस्फोट में लिचू का लड़का जगन्नाथ मारा जाता है। लेबर इंस्पेक्टर का सहायक राधेश्याम ठाकुर साहब से मिलता है और कमीशन लेकर कंपनी के मजदूरों की हड़ताल से निजात दिलाने का सौदा तय करता है। नारायणी को अस्पताल में सफाई करने का काम मिल जाता है। पुलिस विस्फोट करने के आरोप में रामू बामू को गिरफ्तार कर लेती है और वर्कसाइट पर विस्फोटक का भंडारण करने के कारण कंपनी पर 10,000 रुपये का जुर्माना करती है। मुंशीगंज के कसाइयों द्वारा फेंके हुए सड़े कच्चे मांस को खाकर दलित बस्ती के कई बच्चे मर जाते हैं और बहुत से बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होते हैं। अब आगे

0: नारायणी, अरे सफाई हो गई क्या?
1: जी डॉक्टर साहब।
0: गुड। देखो नारायणी, अभी तुम्हें एक काम और करना है।
1: जी कहिए।
0: देखो वो सामने मरीजों के खून और मवाद से सनी पट्टियां पड़ी हैं, इन्हें साई नदी के किनारे गड्ढा खोदकर उसमें दबा देना, समझ गई?
1: जी।
0: ये रोज का काम होगा, समझ गई तुम?
1: जी जी समझ गई डॉक्टर साहब।
0: शाबाश।

0: अरे नारायणी, तुम ये गड्ढा क्यों खोद रही हो?
1: वो यशवंत बाबू, खून और मवाद भरी पट्टियां दबानी है इसमें।
0: अब कोई बात नहीं, ये तुम फावड़ा मुझे दे दो, गड्ढा मैं खोद देता।
1: नहीं नहीं, आप यूनियन के नेता हैं, साफ कपड़े पहने हुए हैं।
0: अरे तो क्या हुआ, अब लाओ मुझे दो, मैं खोदता हूँ। अरे लाओ दो। नारायणी, गड्ढा तो खोद गया, ला कपड़े मुझे दे दे।
1: ये लीजिए।
0: अच्छा, बर्खास्त हो जाने के बाद तुम क्या करोगी नारायणी? सच सच बता नारायणी, क्या उस दिन तू ठाकुर साहब के घर अपनी इच्छा से पाप का काम करने गई थी? बोल, जवाब दे।
1: हे भगवान, क्या जवाब दूं मैं इसे? क्या ये मेरी बात का विश्वास करेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसे मेरी बात का यकीन होगा। पर सुमति काकी के अलावा और कौन है इस दुनिया में जो दिल खोल कर दिखाने पर मेरी सच्चाई पर विश्वास करे? मैं जानती हूं और ऐसा कोई भी नहीं है।
0: क्या सोचने लगी नारायणी?
1: हाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं बाबू।
0: नारायणी, क्या मैं तेरी कोई सहायता कर सकता हूँ?
1: बर्खास्त होने पर हम लोग एक साथ चले जाएंगे। अगर अगर बाबू रास्ते में मेरा पति मर गया तो?
0: नारायणी, नहीं मरेगा तेरा पति, नहीं मरेगा। देखा नहीं लिचू लंगड़े का क्या हाल हुआ? बेटे के मरने के बाद से सारा दिन बेटे की चिता जलने वाली जगह पर ही पड़ा रहता है। भिखू की बेटी पेट की भूख मिटाने के लिए पैसेंजर ट्रेन में भाग गई। अरे कितने बच्चे जहरीला मांस खाकर मर गए। देख, अब धैर्य रख नारायणी, मेरा दिल कहता है कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।
1: यशवंत बाबू, मजदूरों की बातें छिप कर सुनी थी, सहायता की जरूरत मुझे नहीं आपको है। हा? आपको और दूसरे यूनियन नेताओं को अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए।
0: ये तुम क्या कह रही हो नारायणी?
1: वो मजदूर तुम लोगों को जिंदा गाड़ देंगे, खून खराबा होगा, वो तुम लोगों के चीथड़े बना डालेंगे। मैं पूछती हूँ, सच सच बताना, क्या तुम लोगों ने सबके साथ विश्वासघात नहीं किया? क्या भूख से मरने वालों की हत्या तुम लोगों ने नहीं की?
0: इतनी कोशिशों के बावजूद इतने लोगों की भलाई हम नहीं कर पा रहे हैं नारायणी, फिर भी कम से कम एक आदमी के लिए कुछ करने की शक्ति हम में जरूर है। बिल में छिपे हुए सांप की तरह शरीर के किस हिस्से में वो शक्ति है, ये ना तो तुझे मालूम है और ना ही मुझे।
1: मैं फिर कहती हूँ यशवंत बाबू, हमें तो हालात के सामने मजबूर होकर मरना ही है, लेकिन लेकिन तुम लोगों को जिंदा रहना है, हड़ताल कराने के लिए जिंदा रहना है, मजदूरों को भूखा मारने के लिए जिंदा रहना है।
0: नारायणी, सुन नारायणी, देख मैं जानता हूं कि तुमने जीवन में बहुत कष्ट सहा है, मैं सब जानता हूं सब, लेकिन क्या तुम इस तरह टूट जाओगी? इतने दिनों से कष्ट सहते हुए हम लोगों ने अपनी हड्डियों को सीमेंट के खंभे जैसा मजबूत नहीं किया है। अरे गांधी बाबा ने कहा था कि अगर उन्हें फिर से जन्म लेना पड़े तो वो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि वो दलितों के घर में जन्म लें। तू रो क्या रही है नारायणी?
1: यशवंत बाबू, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? सरकारी अस्पताल के बरामदे में भी मेरे पति को रहने नहीं देते।
0: क्या?
1: हाँ, यहाँ की बैरक से सब जाने लगेंगे तो मैं इन्हें साथ लेकर चलूंगी। ऊपर से एक दूर पीता बच्चा भी है। हम मर जाएंगे, मैं ये बात अच्छी तरह से समझ गई हूँ। अच्छी तरह से समझ गई हूँ यशवंत बाबू, हम मर जाएंगे।
0: देखो नारायणी, अब खुद पर भरोसा रखो। भरोसा खो देने वाले और मरे हुए इंसान में कोई फर्क नहीं होता। खुद पर भरोसा रखो।

0: नारायणी नारायणी नारायणी इधर आ।
1: क्या है लिच्चू?
0: नारायणी मेरे लिए दो रोटी लाकर दे सकती है? देख देख मेरा पेट कैसे सूख है, नदी का पानी भी कड़वा लगने लगा है। नारायणी
1: लिच्चू चल मेरे साथ चल, तू यहाँ ऐसे बैठा रहेगा तो क्या तेरा मरा लड़का वापस आ जाएगा? चल, देख यहाँ बैठा बैठा तो तू वैसे ही मर जाएगा।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नारायण, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। चल यहाँ से, मुझे तेरी रोटी नहीं चाहिए नारायण।
1: सिर्फ नहीं करते
0: तू, चल यहाँ से।
1: सुन तो,
0: मुझे कहीं नहीं जाना है, चल चल।
1: मेरी बात तो सुन।
0: मेरे जगह
1: लिच्चू, लिच्चू
0: जगन्नाथ मुझे भी अपने पास बुला ले।
1: रोते नहीं
2: नारायणी।
1: तुम तो वही हो ना जो यशवंत के साथ यूनियन में रहते हुए भी कंपनी के साहबों की गुलामी करते हो?
2: अब देखो सब अपने अपने फायदे की सोचते हैं, तो मैं भी सोचता हूँ। क्या गलत करता हूँ?
1: तुम्हें मुझसे क्या चाहिए?
2: ओहो नारायणी, मैंने तुझसे पहले भी कहा था, ठाकुर साहब बीमार हैं और यहाँ पर हड़ताल चल रही है,
1: तो
2: तो ठीक तरह से उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, और तू साहब के लिए नई तो है नहीं, है ना? देख नारायणी, मुझे साहब ने खुद तुझे ले जाने के लिए भेजा है।
1: पर मैं नहीं जाना चाहती।
2: अरे नारायणी, क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहती है?
1: क्या मतलब?
2: मतलब साफ है नारायणी, साहब ने धमकी दी है कि वो तुझे उस रात वाली घटना को लेकर झूठ मूठ बदनाम कर देंगे। हाँ, तो तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगी। हाँ, अब सोच ले क्या करना है तूने, चलना है या नहीं? आ जा, चल चल चल चल।

0: देख नारायणी साहब थोड़ी देर में आएंगे, तब तक तू यहाँ आराम कर है? मैं अभी आता हूँ, ठीक है? अभी आता हूँ मैं।
1: मैं किस जंजाल में फंस गई हूँ। लगता है आज कल में कयामत आने वाली है। खून की नदियाँ, साई में तूफान, इस तूफान में सब ध्वस्त हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई नहीं, ये ठाकुर साहब भी नहीं, ठाकुर साहब भी नहीं। कौन कौन हंस रहा है?
2: पहचाना नहीं नारायणी?
1: चौधरी साहब आप?
2: यानी पहचान लिया, इतने साल बाद भी पहचान लिया, तुझसे इस तरह यहाँ मुलाकात होगी। नारायणी मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
1: मैंने भी नहीं सोचा था
2: नारायणी।

0: तुम्हारे लिए प्यार सिर्फ एक वासना है, शरीर की आग को ठंडा करने का जरिया भर है।
1: नारायणी, तुझे देखकर और तेरी दुर्दशा के बारे में सोचकर मुझे बहुत दुख हुआ। अले, कुछ ये पैसे रख ले, तेरे काम आएंगे। नारायणी
0: साहब, इन पैसों के बदले में आपको क्या चाहिए?
1: कुछ नहीं, कुछ नहीं नारायणी, कुछ नहीं, बस तेरे रूप की गंगा में गोता लगाना चाहता हूँ नारायणी।
0: मैंने तो सुना था कि आपकी शादी हो गई थी।
1: ठीक सुना था तूने नारायणी।
0: साहब, आपकी पत्नी गंगा को पूछती है?
1: गंगा को पूछती है मतलब?
0: हाँ, मेरा मतलब है गंगा की पूजा पूजा पाठ तो करती है ना?
1: हम करती है, पूजा पाठ जरूर करती है। मैंने तेरे बारे में उसे बताया था, उसकी बहुत इच्छा है कि अगर तू कभी मिले तो तेरी देखभाल करूं, तेरी कोई दिक्कत हो तो मैं तेरी मदद करूं नारायणी। हाँ हाँ, उसने कहा था मुझे।
0: यही वो आदमी है जो वर्षों पहले मेरी देह को छल्ली करके भाग गया था, मेरा सारा सुख छीन लिया था इसने, मुझे आसमान से नरक में धकेल कर कायरों की तरह मुझे पाकर चुपके से निकल भागा था। और आज फिर इसकी गंदी नियत मुझ पर लाठ ठपका रही है। जी तो करता है कि मैं इसका गला दबा दूं, लेकिन अभी तो इस राक्षस के हाथों किसी तरह खुद को बचाना है, मगर कैसे? हाँ, वो सामने बाल काटने वाला चाकू पड़ा है। हाँ, यही मेरी असमत की रक्षा कर सकता है।
1: अरे कहाँ गुमसुम हो गई तुम है? बोल ना, क्या चाहिए तुझे? धन दौलत पैसा सब कुछ दूंगा, बोल ना नारायणी क्या चाहिए? देख देख नारायणी, तेरा पति बीमार है, तेरा बच्चा छोटा है, मैं तेरी धन दौलत से सब
0: देखो देखो, आगे मत बढ़ना।
1: अरे नहीं, पास आओ।
0: वरना ये चाकू मैं आपके सीने में भोंक दूंगी।
1: चाकू?
0: आपकी बेहतरी इसी में है कि तुरंत यहाँ से चले जाइए। सुना आपने? आगे मत बढ़ना।

0: अली हड़ताली मजदूरों को मजाक ही बना रखा है।
1: बोलो बोलो साथियों, हड़ताली मजदूर जब तब हमसे टकराते रहते हैं, भले ही कंपनी की शर्तों ने हमारे हाथ बांध रखे हो, लेकिन हम अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते।
2: हाँ हाँ, हमें आत्मसम्मान से जीना है। हड़ताली मजदूरों का मुकाबला करने के लिए हमें कमर कस लेनी चाहिए।
1: दलित बैरक की पार्वती जब से भागी है, हड़ताली मजदूर आते जाते हमें गाली देते हैं, तिरस्कार भरी नजरों से देखते हैं। हम ये अपमान नहीं सह सकते।
2: हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। अब की बार हड़ताली मजदूरों का जुलूस इस ओर आएगा तो हम उनका मुकाबला करेंगे।
1: हमें पीस वर्करों की यूनियन बना लेनी चाहिए, हड़ताल करने के लिए नहीं, बल्कि हड़तालियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए।
2: हमारी यूनियन का नाम होगा आजाद मजदूर यूनियन। अब की बार हड़ताली आएंगे तो हम लाठियों, रोड़ों, ईंट पत्थरों से हमले करके उन्हें मार भगाएंगे।
1: आजाद मजदूर यूनियन जिंदाबाद,
3: जिंदाबाद।
1: आजाद मजदूर यूनियन जिंदाबाद,
3: जिंदाबाद।

0: अरे दो दिन से नारायणी घर नहीं आई, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसे मैंने, पर वो कहीं नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। अरे उसे उसे इस दूध मुहे बच्चे की भी सुध नहीं रही। भगवान पता नहीं कहाँ होगी वो, किस हाल में होगी वो। भगवान
1: शिवू, शिवू भाई
0: कौन है, कौन है दरवाजे पर?
1: शिवू मैं हूँ, लिचू।
0: लिचू, लिचू तू इतनी रात को यहाँ क्या करने आया है?
1: डर मत, मैं रोटी मांगने नहीं आया।
0: तो फिर तू क्यों आया यहाँ?
1: शिवू भाई, देखने आया हूँ कि नारायणी अभी तक आई या नहीं।
0: अरे नहीं आई वो, अभी तक नहीं आई। अरे सब जगह ढूंढ लिया उसे, पुलिस वालों से भी पूछा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। अरे लीचू भाई, समझ में नहीं आता क्या करूं, कहां जाऊं। अरे तू अब दरवाजे पर ही खड़ा रहेगा या अंदर आएगा?
1: आजा अंदर आ शिवू। बच्चे को गोद में उठा ले और मेरे साथ चल, खुरपी वगैरह कुछ भी साथ ले ले।
0: ये क्या कह रहा है तू? अरे क्या तुझे पता है नारायणी कहाँ है?
1: हाँ पता है, और तू मेरे साथ चल, खुरपी जरूर ले ले।
0: मगर मेरे पास खुरपी तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास कुल्हाड़ी है।
1: चलेगी चलेगी शिवू, जल्दी कर, समय कम है, सवेरा होने से पहले पहुंच जाना है हमें। अरे देख शिवू वो देख, पलंग पर बैठी नारायणी साहब के पैर दबा रही है, वो देख।
0: अरे हाँ, अरे हाँ, चल चल जल्दी से अंदर चल, चल चल आजा।
1: कौन है?
2: क्या तुम दोनों यहाँ?
3: हम दोनों, पति को घर पर अकेला छोड़कर तू यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है।
1: अभी तुझे मजा चखाता हूँ मैं।
2: मैं जानती थी कि तुम दोनों यहाँ जरूर आओगे, मेरा विवेक ही तुम्हें यहाँ तक खींच कर लाया है। लाओ लाओ कुल्हाड़ी मुझे दे दो।
1: नहीं मैं कुल्हाड़ी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा।
2: दे दो या मुझे जबरदस्ती छीनना पड़ेगा। मुझे दे दो कुल्हाड़ी, दे दो मुझे, कुल्हाड़ी मेरे हाथ में।
1: नारायणी तू ये क्या कर रही है? नहीं नहीं नहीं नारायणी नहीं, देख देख देख, ऐसा मत कर नारायणी,
2: मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू मुझे बदनाम करेगा, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। अब देखती हूँ कि तुम्हें मुझसे कौन बचाता है।

0: यशवंत, यही नाम है ना तेरा?
1: अब जी।
0: देख यशवंत, हड़ताल खत्म हो चुकी है, तुम्हारे सारे के सारे नेता गिरफ्तार हो चुके हैं।
1: हाँ?
0: 60 मजदूरों को वापस काम पर रख लिया गया है, दलित बैरक के सभी मजदूरों को बर्खास्त कर दिया गया है, राम तुझे भी।
1: क्या?
0: ये ले लिफाफा, इसमें तेरा हिसाब है। जाकर शंभू के दल से मिल जा, अभी शंभू का दल बहुत ज्यादा दूर नहीं पहुंचा होगा। जा।
1: अरे, मैं

0: शंभू काका, रुक जाओ शंभू काका, मैं भी आ रहा हूँ।
1: शंभू काका हाँ? वो देखो यशवंत दौड़ा चला रहा है, थोड़ी देर रुक जाते हैं।
2: ठीक है। अरे शंभू काका, शंभू काका, सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया काका। हड़ताल विफल हो गई, यूनियन के सारे बड़े नेता गिरफ्तार हो गए।
0: बड़ा भोला है रे यशवंत तू।
2: हाँ?
0: अरे यूनियन के नेताओं को तो शास्त्री जी की सिफारिश पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ताकि विद्रोही मजदूरों से उनकी जान की रक्षा की जा सके। जब शास्त्री जी का इशारा होगा यूनियन नेता छूट जाएंगे।
2: ये आप क्या कह रहे हो शंभू काका?
1: हाँ, और जानता है यशवंत, तुझे इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि तू हमारा सच्चा हमदर्द है, ईमानदार है। उन लोगों के लिए तेरा मजदूरों के हाथों मर जाना ही अच्छा है।
2: नहीं नहीं भृगु, ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है।
0: यही सच है यशवंत, मगर तेरे जैसा सच्चा इंसान इस कड़वी सच्चाई को कैसे समझ सकता है। एक बात और, शास्त्री भी कंपनी के हाथों बिक चुका है।
2: क्या? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब।
0: चल यशवंत, आ चले।
2: हाँ चल। लेकिन काका, लीचू कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा।
0: उसने साई नदी में कूद कर अपनी जान दे दी।
2: और बसुमती काकी?
1: माँ पुलिस की गोली का शिकार हो गई।
2: और नारायणी और उसका पति?
0: शिबू मर गया।
2: क्या?
0: नारायणी उसकी लाश को छोड़कर आने के लिए तैयार नहीं हुई। तू हमारे साथ चल, अगर मजदूरों को पता लग गया कि तू यहाँ है तो वो तुझे जिंदा गाड़ देंगे।
2: हाँ, नहीं काका, मैं नहीं जाऊँगा।
0: क्या?
2: आज तक आपका ये डिब्बा खाली है ना?
0: ये हमेशा खाली रहेगा यशवंत, कभी नहीं भरेगा ये डिब्बा।
2: ये मेरे हिसाब के रुपए हैं काका, सारे रुपए मैं आपके इस डिब्बे में डाल रहा हूँ। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ फिर हड़ताल होगी, तब ये रुपए बहुत काम आएंगे। तब किसी को भूखा मत मरने देना काका, किसी को भूखा मत मरने देना।
0: एक बात सुन यशवंत।
2: हाँ बोलो काका।
0: उस दिन की घटना से तूने हमेशा नारायणी को चरित्रहीन समझा, लेकिन वो चरित्रहीन नहीं है।
2: ये तुम क्या कह रहे हो काका?
0: मैं ठीक कह रहा हूँ, तू भी हमारे साथ चलता तो कितना अच्छा होता।
1: हाँ चलना यशवंत।
2: नहीं काका नहीं, मुझे वापस जाना होगा, हर हाल में वापस जाना होगा।
0: क्या नारायणी के पास?
2: उसके पास भी जाऊंगा, उसे और उसके बच्चे को मेरी जरूरत है। और काका एक कारण और भी है मेरे वापस जाने का।
0: एक कारण और?
2: हाँ काका एक कारण और।
1: यशवंत, अरे रुक जाओ रुक जाओ, यशवंत रुको।
3: ओ, अरे इतनी रात को कौन आ गया भैया?
4: अरे ठहरो भैया, आ रहा हूँ, दरवाजा तोड़ोगे क्या? आ रहा हूँ।
3: यशवंत तुम?
2: हाँ मैं।
3: इस वक्त?
5: चलो चलो जाओ यहाँ से, जाओ। अरे जाओ यहाँ से, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, समझे? जाओ यहाँ से।
2: शास्त्री जी, मैं वो तलवार हूं जिस पर आज तक जंग लगी हुई थी, लाचारी की जंग, लेकिन हकीकत ने आज इस जंग को उतार दिया है। अब इस तलवार में एक नई चमक पैदा हो गई है, विद्रोह की चमक शास्त्री जी, और आज ये तलवार तेरे अंत का कारण बनेगी शास्त्री।
6: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जंग लगी तलवार की 13वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
7: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 5 दिवसीय प्रदेश प्रवास के पहले दिन आज बैतूल में ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल हुई। इसके बाद भी ओंकारेश्वर के लिए रवाना होंगी। भारत और फ्रांस आर्थिक औद्योगिक सहयोग को प्रगाढ़ करने के प्रयासों के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में प्रमुख फ्रांसीसी व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। उन्होंने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जा रही है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पुलिस में उप निरीक्षक के 10 एवं आरक्षक के 50 पदों पर सीधी नियुक्ति का अवसर मिलेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं। भोपाल के रविंद्र भवन में आज शाम को रानी दाई नाटक का मंचन किया जाएगा। विश्व संगीत दिवस के अवसर पर भोपाल के भारत भवन में 19 जून को शाम 7 बजे फ्रांस के संगीत बैंड की प्रस्तुति होगी। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से इंदौर, उज्जैन, भोपाल और ग्वालियर संभाग के अनेक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है और भारत अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एक दिवसीय क्रिकेट मैच का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

दिन का एक बजा है, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की है।

आकाशवाणी द्वारा प्रसारित महिला सभा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं आपकी सखी पूर्णिमा। आप सभी को हमारा नमस्कार। सखियों, अगले कुछ मिनट्स मैं आपके साथ रहूंगी, तो सोचा क्यों ना प्रकृति से जुड़े विषय पर चर्चा करूं। सखियों, जरा कल्पना कीजिए, एक खूबसूरत सी सुबह जब आंखें मलते हुए खिड़की खोले तो ठंडी हवा का स्पर्श मिले, पेड़ों पर बैठे पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दे, दूर तक फैली हरियाली आंखों को सुकून दे और वातावरण में ताजगी घुली हो। सखियों, इस अनुभूति को शब्दों में कहना शायद मुश्किल होगा। कहते हैं कि यदि धरती मुस्कुराती है तो उसकी मुस्कान पेड़ों की हरियाली में दिखाई देती है। जब हवा पत्तों को छूकर गुजरती है तो लगता है जैसे प्रकृति कोई मधुर गीत गुनगुना रही है। लेकिन आज यही प्रकृति हमसे आग्रह कर रही है, मुझे थोड़ा और हरा भरा बना दीजिए। सखियों, प्रकृति में सुंदरता अपने आप नहीं आती, इसके पीछे होते हैं पेड़ पौधे और उन्हें सहेजने वाले लोग। सखियों, हमें धरती की गोद में हरे भरे पौधे लगाने होंगे जिससे आने वाले कल को ठंडी छांव, शुद्ध हवा और अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित भविष्य बनकर तैयार कर सकें। सखियों, ये पेड़ वर्षा बुलाते हैं, बाढ़ को कम करते हैं, पक्षियों जीव जंतुओं को आश्रय देते हैं। इनकी छांव में ठंडी हवा का एहसास कीजिए, बस आपका मन यही गुनगुनाएगा।

0: सखियो, एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करके उसे बड़ा बनाती है, वैसे ही पौधा लगाकर उसे बड़ा करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। घर के आंगन में लगा एक पौधा पूरे घर की शोभा नहीं बढ़ाता है, बल्कि पूरे परिवार के स्वास्थ्य और खुशहाली का साथी बन जाता है। सखियों, इसी विषय पर और अधिक जानकारी लेने के लिए अब सुनेंगे वार्ता। विषय है पर्यावरण संरक्षण। वार्ताकार हैं सुश्री रश्मि शर्मा। तो सुनते हैं ये वार्ता।
1: पर्यावरण संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। पर्यावरण शब्द परिधन आवरण से मिलकर बना है। पर्यावरण संरक्षण से तात्पर्य है कि हमारे चारों ओर के वातावरण को सुरक्षित रखना। प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी को लगातार प्रयास करना होगा। पेड़ लगाना, पानी बचाना, पुनर्चक्रण करना और प्लास्टिक का उपयोग ना करना जैसे सरल कार्य बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा करके स्वयं को और सभी जीवित प्राणियों को सुरक्षित रख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। प्रदूषण को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकतानुसार ही उपयोग करना चाहिए। वन्य जीवों की सुरक्षा करनी चाहिए। जल, ऊर्जा और प्लास्टिक के सही उपयोग से पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करके भूमि और जल संसाधनों की बचत की जा सकती है। नदियों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जंगलों का संरक्षण करना चाहिए। अगर हम जंगलों का संरक्षण करेंगे तो जीव जंतु सुरक्षित रह सकेंगे। सामूहिक सहयोग और जागरूकता के माध्यम से हम सभी मिलकर पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। आज जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण बहुत ज़रूरी हो गया है। हमारे पर्यावरण में हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी शामिल हैं और इन सभी की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पेड़ों को काटना और नदियों में कचरा फेंकना, अत्यधिक रसायनों का प्रयोग करने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। पर्यावरण के संरक्षण को हमें हमेशा बनाए रखना है। इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। बिजली बचाकर, पानी का सही उपयोग करके, पेड़ लगाकर हम सभी पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर हम हमारे चारों ओर देखें तो ईश्वर की बनाई पर्यावरण की इस अद्भुत सुंदरता को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। पर्यावरण में सुंदर फूल मन को मोह लेते हैं, परंतु आज मानव ने विकास की चाह में पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। पर्यावरण पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। प्रकृति अर्थात पर्यावरण के द्वारा ही मनुष्य को भोजन प्राप्त होता है। पर्यावरण वह प्राकृतिक परिवेश है जिसमें मानव अपना जीवन व्यतीत करता है। नदी, झरने, सागर, पर्वत, जलवायु के सूक्ष्म तत्व भी पर्यावरण को निर्मित करते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी को प्रकाश और ऊर्जा देने वाले सूर्यदेव व संपूर्ण ब्रह्मांड के आकाशीय पिंड भी पर्यावरण में आते हैं। ये सभी तत्व हमारे जीवन के अस्तित्व और विकास के लिए अनिवार्य हैं। हमें पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना है। इसके लिए हमें पर्यावरण के लिए को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। मनुष्य ने अपने विकास के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण को विशेष महत्व दिया गया है। प्राचीन काल से ही विभिन्न वृक्ष जैसे पीपल, तुलसी, बरगद, नीम को महत्व दिया जाता रहा है। पेड़ पर्यावरण का अनिवार्य हिस्सा है, इसलिए हमें अपने जन्मदिन पर और विशेष कार्यक्रमों पर वृक्षारोपण करना चाहिए। मुख्य वृक्षों में हम जामुन, आम, अमरूद, बरगद आदि वृक्षों को लगा सकते हैं। मैंने देखा है कि आम का पेड़ तो गमले में भी लग जाता है। हम सभी को ऑक्सीजन वृक्षों से ही मिलती है। अतः हमें सभी पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए वृक्षों को लगाना चाहिए। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ बनाए रखने का कार्य करते हैं। वृक्षारोपण करने से मृदा का अपरदन नहीं हो पाता, क्योंकि वृक्ष की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं और पेड़ों को उनके चिकित्सा गुणों के लिए भी जाना जाता है। जैसे नीम का प्रयोग फोड़े फुंसी आदि के उपचार के लिए किया जाता है, इसी प्रकार तुलसी का प्रयोग सर्दी खांसी से सुरक्षा के लिए किया जाता है। अर्जुन का पेड़ हृदय से संबंधित समस्याओं और ब्लड प्रेशर के उपचार में बहुत उपयोगी है। जो भूमि बंजर है उस पर भी हम सिंचाई की सहायता से वृक्षारोपण कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में वृक्षों का विशेष महत्व है। वृक्षों से हमें फल, सब्जियां, लकड़ियां, औषधियां आदि प्राप्त होती हैं। लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। पेड़ों से बहुत सारी औषधियां तैयार की जाती हैं जो हमें रोगों के उपचार में मदद करती हैं। पेड़ न केवल शुद्ध हवा प्रदान करते हैं बल्कि पर्यावरण को सुंदर बनाते हैं। पेड़ों पर पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं। पेड़ तपती धूप में हमें छाया प्रदान करते हैं। पेड़ों की कमी होने से मनुष्य का जीवन संकट में आ जाएगा, इसलिए हम सभी का दायित्व है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृक्षारोपण करें ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके और हम सभी एक खुशहाल जीवन जी सकें। मनुष्य ने पर्यावरण को कई प्रकारों से क्षति पहुंचाई है। वाहनों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण हुआ। लकड़ी, कंडे, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, इन्हें जलाने से वायु प्रदूषण हुआ और इन वाहनों में CNG गैस का प्रयोग करके हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। लकड़ी कंडे के स्थान पर हमें प्राकृतिक गैस का उपयोग करना चाहिए जिससे प्रदूषण कम हो। मनुष्य ने जल को भी प्रदूषित किया है। जल में पूजन सामग्री विसर्जित करने से, उद्योगों का कूड़ा कचरा जल में डालने से, जानवरों को जल में नहलाने से, इन सभी से जल प्रदूषित हो जाता है। हमें जानवरों को नदी जल में नहीं नहलाना चाहिए। हमें मुर्दों को नदी जल में नहीं डालना चाहिए। उद्योगों का कूड़ा कचरा जल में नहीं डालना चाहिए। पूजन सामग्री जल में विसर्जित ना करके गमले में विसर्जित कर सकते हैं जिससे जल प्रदूषित ना हो। रेडियोधर्मी प्रदूषण भी होता है, जो बड़े बड़े बमों का परीक्षण होता है, परमाणु बमों का परीक्षण होता है जिसमें वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण होता है। हमें परमाणु बमों का परीक्षण कहीं नगर से दूर एकांत जगह में करना चाहिए जिससे कि यह ध्वनि प्रदूषण ना हो। बड़े बड़े DJ और लाउड स्पीकर तेज ध्वनि में बजते हैं, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। इनकी आवाज़ मध्यम रखनी चाहिए जिससे ध्वनि प्रदूषण ना हो। उद्योगों में पुरानी मशीनें जो बहुत तेज आवाज़ करती हैं, इनसे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। गाड़ी में साइलेंसर ना होने से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। अतः हमें ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक नियंत्रित ध्वनि पर लाउड स्पीकर बजाने चाहिए। उद्योगों में नई आधुनिक मशीनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कम आवाज़ आए, और गाड़ियों में साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हम जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को रोक सकें। इसी प्रकार मृदा अपरदन होता है। अत्यधिक वर्षा होने पर मिट्टी बह जाती है। पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी अपने पैरों से मिट्टी को ढोकर मृदा का अपरदन करते हैं। मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए कतारबद्ध लाइन से पेड़ लगाने चाहिए ताकि मृदा अपरदन को रोका जा सके, क्योंकि वृक्ष जो हैं वो मिट्टी को बांधे रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें जल, मृदा और वायु का संरक्षण करना होगा। यह सब कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। हम सभी को मिलकर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करने होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृक्षारोपण करना होगा ताकि हमारा जीवन सुरक्षित हो। जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं, लेकिन हम चाहें तो हम उपयोगी वृक्ष जैसे बरगद, पीपल, आम, जामुन, अमरूद लगा सकते हैं और उन्हें सिंचित कर सकते हैं ताकि पेड़ पौधे सूखे नहीं। हम सभी हर कार्यक्रम में वृक्षारोपण करें ताकि पर्यावरण असंतुलन को कम किया जा सके।
0: सखियों, अभी आप सुन रही थी वार्ता, विषय था पर्यावरण संरक्षण। वार्ताकार थी सुश्री रश्मि शर्मा। सखियों, वास्तव में पौधारोपण एक अभियान नहीं बल्कि जीवन से जुड़ा एक संस्कार है। जब कोई माँ अपने आंगन में पौधा लगाती है, जब कोई बेटी उसकी देखभाल करती है और जब पूरा परिवार उसे वृक्ष बनते हुए देखता है, तब केवल एक पेड़ नहीं बढ़ता बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी संवेदनशीलता भी बढ़ती है। कहते हैं ना कि पेड़ धरती की मुस्कान है, इनसे ही जीवन की पहचान है। सखियों, आज गांव की चौपाल हो, विद्यालय का मैदान हो, खेत की मेड़ हो या घर का छोटा सा आंगन, हर स्थान एक नए पौधे की प्रतीक्षा में है। बहनों, यदि हम अपने जीवन के खास अवसरों को पौधारोपण से जोड़ दें तो विशाल परिवर्तन संभव है। संतान के जन्म पर एक पौधा, जन्म दिवस पर एक पौधा, विवाह की वर्षगांठ पर एक पौधा, बच्चों की सफलता पर एक पौधा और अपने प्रियजनों की स्मृति में एक पौधा। सखियों, तनिक विचार कीजिए, यदि प्रत्येक परिवार वर्ष में केवल 5 पौधे लगाए और उनकी देखभाल करें तो हमारा पूरा क्षेत्र कुछ ही समय में हरा भरा हो जाएगा। पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते बल्कि हमें जीवन भी देते हैं। इन्हीं भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक और गीत।

सखियो इस हरे भरे रास्ते से भरा हुआ गीत सुना और ये भी सच है सखियो, पेड़ अपनी जुबान से कुछ नहीं कहते हैं बल्कि अपनी छाया, अपने फल और अपनी सांसों से संपूर्ण प्राणियों पर परोपकार करते हैं। सखियो, इनके परोपकार को याद करते हुए अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। अंत में बस यही कहेंगे कि विकास की दौड़ में पर्यावरण और प्रकृति से दूर ना हो, जल जंगल और जमीन को बचाएं, पर्यावरण का संरक्षण करके प्रकृति में संतुलन बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पेड़ लगेंगे तो धरती मुस्कुराएगी, धरती मुस्कुराएगी तो जीवन मुस्कुराएगा। सखियों, हम आशा ही नहीं करते हैं बल्कि हमें विश्वास है कि आप आज से ही पर्यावरण संरक्षण की सहभागी बनेंगी, और इसी विश्वास के साथ अनुमति दीजिए अपनी सखी पूर्णिमा को। नमस्कार।

0: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है एक अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे समर्पण का प्रतिमा।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत के कार्यक्रम में शोभना कश्यप के गाए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की है। आरंभ में ये दादरा

इस गारी गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे शोभना कश्यप के गाए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कोकिला दत्ता के गाए कुछ भजन।

0: कबीर की इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे कोकिला दत्ता के गाए कुछ भजन, प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
5: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
6: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
4: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
5: आकाशवाणी है ना,
7: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
5: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
4: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
4: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
5: सफर में
4: आपके साथ
5: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: न सनसनी, न सनसनी, न सनसनी, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में सूरज का लिखा यह गीत था। लता मंगेशकर, उदित नारायण ने गाया था। फिल्म थी सातवां आसमां। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन इंदौर पहुंचने पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने बैतूल में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित जनजाति सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश का कोई भी व्यक्ति और समुदाय विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहना चाहिए।
2: 2047 विकसित भारत बनाने के लिए हम सोचे हैं। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष का प्रत्येक अंग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अक्षत होना चाहिए, क्षति नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये भारत में रहने वाले जनता, कोई भी समाज पीछे ना रह जाए।
1: राष्ट्रपति आज ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगी और शाम की आरती में भी शामिल होंगी। इस दौरे में 21 जून को जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 22 जून को कूनो नेशनल पार्क का दौरा भी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने के बाद कहा कि उनका प्रदेशागमन प्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति प्रदेश के सफल चीता प्रोजेक्ट का अवलोकन करेंगी और सिकल सेल एनीमिया से निपटने की राज्य सरकार की रणनीति से भी अवगत होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैतूल में ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में राष्ट्रपति की भागीदारी से आध्यात्मिक और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार समझौते, रक्षा सहयोग और पश्चिम एशिया की स्थिति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता होने के बहुत करीब है और यदि भारत पर कोई हमला हुआ तो अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में प्रमुख फ्रांसीसी व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि पिछले साल अगस्त से इस योजना के अंतर्गत 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। पहली सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा। इस कार्यक्रम में 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम श्वास तक शत्रु के समक्ष शीश नहीं झुकाया और मातृभूमि के सम्मान के लिए उनका बलिदान भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। मुख्यमंत्री ने फ्लाइंग सिख और पद्मश्री प्राप्त मिल्खा सिंह को भी उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देशभर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान और विकसित भारत की पहचान है। इस अभियान के तहत जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड में जारी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत की ओर से दीपिका ने 2 और दीपिका सोरेंग ने 1 गोल दागा। इस जीत के साथ भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। प्रदेश का खेल एवं युवा कल्याण विभाग प्रदेश की उभरती खेल प्रतिभाओं को तलाशने के लिए टैलेंट सर्च महाअभियान चला रहा है, जिसके तहत 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के युवा खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किया जाएगा। इस अभियान में एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती, बॉक्सिंग और तीरंदाजी समेत कुल 21 खेल विधाओं के ट्रायल होंगे। ऑनलाइन पंजीयन 17 जून से शुरू हो रहा है और चयन प्रक्रिया 27 जून से आरंभ होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया नगर पालिका परिषद में जनकल्याण शिविर का आयोजन किया गया। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पत्रकारिता के अध्येता एवं इतिहास लेखक विजय दत्त श्रीधर को डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। गुना कलेक्टर ने स्कूल चले हम अभियान के दूसरे चरण के तहत पुरानी छावनी के PM श्री शासकीय माध्यमिक विद्यालय के छात्रों से संवाद किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और PM जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई

0: बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुस जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
1: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं आएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के

0: साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपके पत्रों के माध्यम से भेजी पसंद हम पूरी करेंगे इस कार्यक्रम में। पहला पत्र शामिल कर रहे हैं हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी, मोहम्मद रफी इंदौर से हमें पत्र भेजते हैं। जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास बंडा बेलई जिला सागर से लक्ष्मण रैकवार, श्रीमती विनीता रैकवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनरथ रैकवार, हल्ले लल्लू, ऋषि रैकवार, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय की। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमारी संचित वायाल मैताला से प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख करडा रिसोर्ड से सानवी देशमुख और सर्वद्र देशमुख, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनामिका अनिष्का और तन्मय गजबिये।

इसी गीत को सुनना चाहा है शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजू लता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव ने। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशी लाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव ने। विश्वात्मा फिल्म का गीत साधना सरगम का गाया हुआ। आनंद बख्शी ने बोल लिखे हैं, विजू शाह ने संगीत बनाया।

कार्यक्रम में अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं कालीचरण यादव, दीपक यादव, चांदनी यादव और उर्मिला यादव की ग्राम संदलपुरा से। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार की। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर और डॉक्टर अमनदीप की। कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल की। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुजतबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय की। सुनना पसंद किया है सौदागर फिल्म का गीत, कविता कृष्णमूर्ति, मनहर उदास और सुखविंदर ने इसे गाया है। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं आशा रेडियो श्रोता संघ के मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर राही, सरिता गवहाणकर सिद्धांत, प्रिंस और एकांश गवहाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश वैशाली, श्वेता सुमित ध्वनि गवहाणकर परी की, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले की, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा की, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर की, तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई परू, मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर और तैमूर बारेकर की, मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरसद तड़वी, आरिश असलान, यूनुस तड़वी की, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खान तड़वी, जरीना मुबारक, परवेज बिटिया रोजमीन, तैमूर और तड़वी परिवार के सदस्य। एक लड़का एक लड़की फिल्म का गीत कुमार सानू और साधना सरगम ने गाया है, मजरू ने बोल लिखे हैं, आनंद मिलन की धुन है।

कार्यक्रम में अगली ख्वाहिश शामिल कर रहे हैं आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी और सौरभ शर्मा की। शाइना और निवान भी इनके साथ हैं। ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और सूरज कुमार ढाकसे की। रामचंद्र माखीजा काफिर, श्रीमती सविता, बेबी स्वाति माखीजा, छुटकी, शरद और पूरा माखीजा परिवार छत्तीसगढ़ बनियापारा धमतरी से ये पत्र हमें भेजता है। जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन, अरुण चौरसिया हमें ये पत्र भेजते हैं। और कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली।

और मीनूराज श्रीमाली की। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल और प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा की। दिल है कि मानता नहीं फिल्म का गीत अनुराधा पोडवाल का गाया हुआ, समीर के बोल है, नदीम श्रवण ने धुन बनाई है।

0: अनुराधा पौडवाल के गए फिल्म दिल है के मानता नहीं के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन इंदौर पहुंचने पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने के बाद कहा कि राष्ट्रपति प्रदेश के सफल चीता प्रोजेक्ट का अवलोकन करेंगी और सिकल सेल एनीमिया से निपटने की राज्य सरकार की नीति से भी अवगत होंगी। राष्ट्रपति ने बैतूल में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी द्वारा आयोजित जनजाति सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश का कोई भी समुदाय विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार समझौते, रक्षा सहयोग और पश्चिम एशिया की स्थिति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू

0: ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। प्रदेश में मानसून 22 से 24 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। प्रदेश में मानसून से पहले गर्मी का असर भी बढ़ता दिख रहा है और अगले 3 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं हॉकी में भारतीय महिला टीम ने न्यूजीलैंड में जारी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको सांध्यकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। श्रोताओं, शाम 6:30 पर आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बैतूल प्रवास पर आयोजित कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट। युवाओं का कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की होगी। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। रात्रि 8:00 समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष के अंतर्गत आज सुनिएगा विरासत। आपकी फरमाइश कार्यक्रम रात्रि 10:00 आप सुनेंगे और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा SL कंडारा का वायलिन पर बजाया राग यामिनी। आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी का प्रसारण शाम 7:21 पर होगा। इसके अंतर्गत डॉक्टर अनामिका पंडे से ग्रामीण महिलाओं की विकास में अग्रसर शासकीय योजनाएं विषय पर की गई भेंटवार्ता प्रसारित करेंगे। ये थे मुख्य आकर्षण सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के। मीडियम वेव 188.32 यानी 1593 किलोहर्ट्स DTH के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 3:33 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारा ये प्रसारण समाप्त होता है। शाम 5:00 हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः हाजिर होंगे। इस बीच हमारा प्रसारण DTH पर जारी है।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:02 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे शोभना कश्यप के गाए कुछ लोकगीत। आरंभ कर रहे हैं इस दादरा के साथ।

इस गाड़ी के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे शोभना कश्यप के गाए कुछ लोकगीत, डीटीएच के ऑडियो चैनल पर। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में कोकिला दत्ता के गाए कुछ भजन।

कबीर की इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का एक कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे कोकिला दत्ता के गाए कुछ भजन। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

हम पिक्चर से लिया ये गीत है, मोहम्मद अजीज़ और शोभना जोशी ने गाया है। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

फूल और कांटे फिल्म का गीत आपको सुनाते हैं, कुमार सानू ने इसे गाया है, नदीम श्रवण ने धुन बनाई है और गीत रचना समीर की है।

जॉली मुखर्जी का गाया फिल्म संगीत से यह गीत था। और कार्यक्रम में अब जान तेरे नाम फिल्म का यह गीत आशा भोसले और कुमार सानू का गाया हुआ। सईद राही ने गीत लिखा है और संगीतकार है नदीम श्रवण।

0: अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास के गाए फिल्म सड़क के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत समाप्त हुआ। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे से पहले दिन इंदौर पहुंचने पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगी और शाम की आरती में भाग भी लेंगी। इस दौरे में 21 जून को जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 22 जून को कूनो नेशनल पार्क का राष्ट्रपति का दौरा भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। श्री प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और क्षमता के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने 2026 की हज यात्रा को भारत

के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। प्रदेश में मानसून के पहले गर्मी का असर भी बढ़ता हुआ दिख रहा है और अगले 3 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। और प्रदेश का खेल एवं युवा कल्याण विभाग प्रदेश की उभरती खेल प्रतिभाओं को तलाशने के लिए टैलेंट सर्च महाअभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के युवा खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किया जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: नंदन वंदन अभिनंदन, मैं गीतिका उनियाल संदेश टू सोल्जर्स के आज के संग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। यह हमारे लिए हमेशा ही हर्ष की बात है कि हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हमारे मेहमान हमें कुछ ऐसा दे जाते हैं जो ना केवल एक याद होता है लेकिन हमारे लिए एक पग होता है आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, देश के प्रति अपनी सद्भावना को दिखाने के लिए। और हम हमेशा यही कहते हैं कि संदेश टू सोल्जर्स के अपने इन एपिसोड्स के माध्यम से हम घर घर तक पहुंचते हैं, हर उस घर तक जहां से एक वीर निकलता है, जहां से एक सिपाही निकलता है, जहां से माँ ये कहती है कि जा बेटा निकल, तुझे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, तेरी माँ वहीं तेरे लिए खड़ी है तेरी आस में, लेकिन तुझे सर्वप्रथम भारत माता के लिए, चाहे फिर तेरे अपने प्राणों का निछावर क्यों ना करना हो, तुझे हमेशा हमेशा देश की गौरव के लिए, समृद्धि के लिए काम करना है, कर्तव्यों का निर्वाह करना है। और आज इसी कड़ी में हम आप सभी से साझा करना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आमंत्रित हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, थल सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी कर्नल वरुण सिंह तरवर, जिन्हें 2023 में माननीय राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। तो आइए सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: थैंक यू सो मच गीतिका, एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स लिसनर्स हु हैव कम इन।
0: जी, जैसा कि मैंने कहा कि हम घर घर तक पहुंच रहे हैं, हर घर से एक वीर निकलता है, एक सिपाही निकलता है, अधिकारी बनता है, देश के लिए समर्पण की भावना लिए वो यही सोचता है कुछ भी हो जाए, लेकिन देश की आन बान और शान के लिए हमेशा हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता रहूँगा। लेकिन वो फैसला लेना कि मैं देश के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ, मैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले ये भावना अपने मन में उत्पन्न करना कि देश के लिए अपने आप को समर्पित करना है, आपके मन में ये भावना कैसे उत्पन्न हुई कि मुझे भी देश के लिए काम करना है? क्योंकि जिस वक्त ये फैसला लिया होगा निश्चित रूप से बहुत छोटी उम्र के रहे होंगे आप।
1: बिल्कुल गीतिका जी, मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। मेरे नाना जी मेजर नाथन सिंह, वो फर्स्ट राजपूत जो कि अभी फोर गार्ड्स है उसमें थे, सेकंड थर्ड जीआर में भी थे। मेरे फादर खुद कर्नल गजराज सिंह आर्मी सर्विस कोर में थे।

0: और मैं वैसे हरियाणा का रहने वाला हूँ, हमारा मेरा गांव है जाटू लोहारी भिवानी में,
1: जी
0: वहाँ से भी एक एक एक वो है ट्रेडिशन है कि सारे बच्चे फौज में जाएं, और इन्हीं को देखते हुए मेरा हमेशा मन रहा है कि मैं फौज में जाऊंगा। और मैंने सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था, वो भी राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी का, अपने फादर की यूनिफॉर्म, अपने ग्रैंडफादर की यूनिफॉर्म को देख के उसी से मैं मोटिवेट हुआ और मैंने अपना जीवन सेना को समर्पित कर दिया।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो जब पिताजी को आपने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, और जब उस वक्त फॉर्म भरा होगा, जब सिर्फ एप्लीकेशन दायर की गई होगी, तो उस वक्त घर में माहौल कैसा था?
0: देखिए, हालांकि हम फौजी परिवार से हैं, लेकिन कोई माँ, किसी माँ को ऐसा नहीं लगता कि मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चले जाए, तो ये बातचीत तो हुई थी। लेकिन अपने मन पे शायद पत्थर रख के मेरी माँ ने खुशी खुशी मेरे को एनडीए भेजा। मेरे को याद है मेरे सिलेक्शन के बाद हम तीन लड़के थे जो कि साथ में एनडीए की तरफ गए, और रेलवे स्टेशन पे सभी की माएँ हमको बाय बाय करने आई। शायद दो माएँ रो रही थी, लेकिन मेरी माँ हंसते हंसते उन्होंने मेरे को अलविदा किया एनडीए की तरफ।
1: वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। एक माँ की पुकार एक माँ ही सुन सकती है। जब भारत माता की बात होती है, तो उसकी आवाज़ ना सिर्फ एक माँ के दिल तक ही पहुँच सकती है। इसीलिए वो अपने बच्चे को तैयार करती है, बोलती है जाओ, अब पीछे मुड़कर मत देखना।
0: वाह,
1: अच्छा, ये बताइए कि जब आप स्कूल में थे और आपने उस वक्त निर्णय लिया कि अब आर्म फोर्सेस जाना है, साथ में बहुत सारे दोस्त होंगे, क्या उनमें भी यही भावना थी? और जब आपका सिलेक्शन हुआ, तो किस तरह से आपको उन्होंने, कहते हैं ना, अपना प्यार कैसे बरसाया?
0: मैं आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं, टैप्स बोलते हैं उसको, धौलाकुआं का पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ पे अधिकतर सेना के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो काफ़ी जोश था उस टाइम पे, 92-93 की बात कह रहा हूँ मैं, बच्चों को एनडीए ज्वाइन करने का। और हम तीन चार लड़के सिलेक्ट हुए थे एनडीए में, मैं उनमें से एक था, तो पूरे स्कूल में नाम हुआ। इसके अलावा मैं थोड़ा गोलू मोलू था अपने 12th क्लास में, और जब उन्होंने मेरे को देखा एनडीए जाते हुए, उस टाइम पर मेरे को वजन घटाना पड़ा, तो काफ़ी अचंभित हो गए मेरा मोटिवेशन देख के कि कैसे मैंने इतना वजन घटाया। और जब मैं उसके बाद अपने दोस्तों से मिलता हूँ, तो वो देखते हैं कि कैसे ये एक मामूली सा बच्चा एक ऑफिसर बन गया।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है। जब आप ऑफिसर बने, तब अलग तरीके से आपको लिया गया होगा, कि उनका हीरो उनके बीच में था, तो उस वक्त वो उन्होंने आपको बहुत प्रेज किया होगा, पूछा होगा कि क्या हम भी जा सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस, ऐसा कुछ हुआ?
0: देखो, जाना तो काफ़ी लोग जाते थे, ये मेरे को हर बच्चा जो कि एपीएस से होता है तकरीबन कोशिश तो करता है, बट हो नहीं पाता। तो काफ़ी प्रेज़ होती है उन बच्चों की स्कूल में, अपने क्लास में, हमारे स्कूल का जो न्यूज़लेटर निकलता है उसमें हमारा नाम आता है। तो और जो मेरे क्लासमेट्स थे जो एनडीए नहीं जा पाए, वो हमेशा मेरे को एक अलग ही नज़र से देखते हैं, एक अलग ही इज्जत से देखते हैं। वो इज्जत तभी मिलती है जब आप मेहनत करके देश के लिए एनडीए या जो भी एंट्री आप चाहते हो, फौज ज्वाइन करो।
1: क्या बात है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप अपने दोस्तों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे, और इसी वजह से आपको बहुत प्यार भी मिला, दुलार भी मिला। ये बताइए, स्कूल में काफ़ी शैतानियां क्या करते थे?
0: हाँ, यस, मेरा एक बड़ा भाई है, तो मैं छोटा, घर में भी छोटा हूँ, और स्कूल में भी मेरे अच्छे दोस्त थे। मैं काफ़ी शरारी था, मेरे मेरे 12th ए की बात कर रहा हूँ, अगर कोई मेरे 12th ए वाला सुन रहा है, तो काफ़ी शरारती था मैं, लड़कों लड़कियों को दोनों को तंग करता था छोटी मोटी बातों के लिए, कभी कभी उनका टिफिन खा जाता था, गोलू मोलू तो था ही मैं, पर मैं काफ़ी लोकप्रिय था। मेरे अच्छे दोस्त हैं, और कुछ हैं जो अभी भी मेरे ख्याल में 30-35 साल बाद मेरे टच में हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, हम उनसे बात करते रहते हैं। जो जो रिश्ते स्कूल में बने, वो अभी तक बरकरार है।
1: बरकरार है। अच्छा, ये बताइए, शैतानियों का ये दौर क्या एनडीए तक जारी रहा, या वहां पर आप एनडीए खड़कवासला वहां एंटर करते साथ ही डिसिप्लिन बॉय बन गए, क्योंकि आर्मी का तो काम ही है आर्म फोर्सेस का कि आपसे, आप में से एक ऑफिसर बनाना है। लेकिन एक यंग बच्चा जब आर्म फोर्सेस ज्वाइन करता है, या पहले एनडीए एंटर करता है, तो उस वक्त उसके सोचने का तरीका सब कुछ अलग होता है, आचार व्यवहार। तो शैतानियों का वो दौर वहां चला, या फिर वहीं जाकर एंटर करते साथ ही सुधर गए?
0: निश्चितानियों का दौर तो एनडीए में भी चला। शुरू शुरू में जब एनडीए पहुंचे, तो एनडीए की जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, बहुत कठिन होता है, बहुत डिसिप्लिन होता है। हालांकि मैं फौजी बैकग्राउंड से था, लेकिन मैं तैयार नहीं था कि एनडीए में कितना आपको रगड़ा लगता है, कितना डिसिप्लिन, तो उसके चलते थोड़ा शरारत करने का मन तो करता है। और मेरे को लगता है इसीलिए ये जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ऑफिसर हों चाहे ड्रिल उस्ताद हों, वो खड़े रहते हैं हमको ये शरारत करने में रोकने के लिए। एनडीए में मन चंचल होता है, आप सिलेक्ट हो गए होते हो, एनडीए में पहुंच जाते हो, आपको लगता है आप यहाँ के आप ही राजा हो, लेकिन फौज के लिए एक अलग किस्म का डिसिप्लिन चाहिए। टाइम पे उठना, टाइम पे काम करना, टाइम पे हर चीज़ करना, वो डिसिप्लिन ये हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, हमारे कोस्टमेट्स होते हैं, कुछ कुछ हमारे स्क्वाड्रन सीनियर्स होते हैं, वो हम में लाते हैं।
1: वाह क्या बात है, तभी कहते हैं कि हम आपसे अधिकारी बनाएंगे, आप में से ही उस अधिकारी को निकालेंगे, उस ऑफिसर को बनाएंगे जो कल चलकर देश के लिए अपनी सेवाओं को देगा। तो निश्चित रूप से एनडीए ने आपका फॉर्मेशन किया, आपके व्यक्तित्व का निर्माण किया। एनडीए के उपरांत, एनडीए के बाद फिर आगे कहाँ, किस ओर रुख किया आपने, कब कमीशन हुए और एनडीए की सीधे बाद पोस्टिंग मिली या फिर आगे ट्रेनिंग का दौर चला?
0: एनडीए के 3 साल के बाद 1 साल के लिए मैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी गया, देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री अकेडमी, जो कि बहुत ही पुरानी 1930s की अकेडमी है। वहाँ से मैंने कमीशन पाया रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में, मेरी रेजिमेंट है 93 फील्ड रेजिमेंट, जिसको मैंने कमांड भी किया। और कमीशन होते ही मेरी रेजिमेंट उस समय कश्मीर में तैनात थी। और इमेजिन मेरी किस्मत कितनी अच्छी, मैं पैदा भी कश्मीर का हुआ हूँ और मेरी पहली पोस्टिंग भी कश्मीर में थी, तो मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही कश्मीर बन गए। मेरी रेजिमेंट ने बहुत अच्छा काम किया उस टाइम पे, 93 फील्ड रेजिमेंट को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला, क्योंकि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में हमने बहुत अच्छा काम किया। और उसी में मैं अपनी रेजिमेंट के रंग में रंग गया और आगे मेरा सफ़र 93 फील्ड रेजिमेंट और तोपखाना आर्टिलरी जिसको कहते हैं उसमें शुरू हुआ।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो जब एक पूर्ण रूप से अधिकारी बन के पीछे मुड़कर देखा, तो क्या कभी सोचा था कि जो आज सब कुछ महसूस कर रहा हूँ शायद वो महसूस ना कर पाता अगर यहाँ ना होता?
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ तो मेरा निर्णय, मेरा बैकग्राउंड जिसकी वजह से मैं एनडीए गया, एनडीए में मेरा स्क्वाड्रन हंटर स्क्वाड्रन, मेरे कोस्टमेट्स हंटर स्क्वाड्रन के या अलग और कोस्टमेट्स हैं, IMA में मेरा जोजिला कंपनी, मेरा जोजिला कंपनी के जो मित्र हैं, और मेरी रेजिमेंट 93 फील्ड रेजिमेंट, इनका बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है जो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मेरा वेल्थ ऑफ नॉलेज मैंने इकट्ठा किया है, वो सब इनकी वजह से है। अगर मैं ये शायद नहीं करता तो शायद मेरी ज़िंदगी इतनी फुलफिलिंग नहीं हुई होती।
1: वाह क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, और माँ से दूर हुए कुछ दिन तो बड़ा ख़राब लगता होगा, रोना भी आता होगा, माँ से बात भी नहीं हो पाती होगी, तो ऐसे में क्या करते थे?
0: आप दुखती रख पे मेरे हाथ रख दिया। मैं
1: आज बच्चे के लिए माँ बहुत महत्वपूर्ण है।
0: 2-3 दिन पहले ही मैं इसके बारे में सोच रहा था कि कैसे एनडीए में रात को, अच्छा तो मैंने एक फोटो एल्बम लेके गया था मैं,
1: अच्छा,
0: जिसमें मेरे भाई के, मेरी मदर के, फादर के पुराने फोटोज थे, उस टाइम पे तो मतलब नए फोटो थे। तो रात को जब मेरे को याद आती तो मैं फोटो देखता था, एंड शायद 1-2 बार शायद रोने को भी हो गया हूँ, रोया नहीं हूँ, बट देख के ऐसा लग रहा था कि भाई मेरी माँ किसी तरह मेरे को उठा के वापस ले आओ,
1: ले जा ले, ग्रिल लगा।
0: 5 महीने का टर्म होता है June to November, बस फिर वो वेट करते करते कि कैसे दिसंबर होगा और कैसे मैं घर जाऊंगा, उसी में समय निकल जाता है।
1: वाह क्या बात है। तो माँ का जो प्यार है वो तो हमेशा
0: हमेशा
1: हमेशा आपके साथ रहता है, कहीं ना कहीं वो जितनी बार आप गिरते हैं ना आपको उठने भी मदद करता है,
0: मदद करती है।
1: आप
0: मेरी माता जी बहुत ही स्ट्रांग, अभी 75 की हैं, शी इज़ वेरी स्ट्रांग, और मेरे को लगता है मेरे में जो भी मनोबल आत्मविश्वास आया है, अ लॉट हैज़ गॉट टू डू विद माई मदर, क्योंकि वो हमेशा मैंने उनको हंसते हुए कोई भी प्रॉब्लम से आराम से उभरते हुए देखा है, उनको कभी मैंने रोते हुए नहीं देखा। एक बार जब उनकी मदर पास अवे हुई थी उसी टाइम पे मैंने उनको रोते हुए देखा, वरना मैं उनको कभी रोते हुए नहीं देखा। ऐसी बहुत कम माएँ होंगी जिन्होंने, तो शी गिव्स मी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन।
1: जी कहीं ना कहीं अगर आपके व्यक्तित्व की बात की जाए तो आर्म्ड फोर्सेस के अलावा माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और कहा जाता है कि बच्चे का भाग्य उसकी माँ द्वारा निर्मित होता है। तो निश्चित रूप से आप और आप जैसे सभी ऑफिसर्स अधिकारी जो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, अपने प्राणों तक का त्याग देते हैं, उन सभी माओं को सलाम है जो कहीं ना कहीं हर बार ये कहती हैं कि जाओ जीतो जंग, कोई एक ऐसा नगमा जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब हो, यहाँ मैं प्ले करना चाहूंगी।
0: तो माँ के, माँ माँ जब माँ के बारे में बात आती है तो एक वो गाना है लुक्का छुपी बहुत हुई,
1: जी जी जी,
0: वो बहुत ही बेहतरीन गाना है। एंड हाँ। वो पिक्चर भी ऐसी है कि एकदम आमिर खान की पिक्चर है, जो आपको याद होगा मेरे ख्याल में।
1: जी जी, जिस तरह से जो मुद्दे उसमें उठाए
0: बहुत ही अच्छे मुद्दे थे। एंड आई थिंक वहीदा रहमान जी अपने, जब उनका कफन वापस आता है उसको देख के वो गाना गाती हैं, जो फाइटर पायलट बचे थे उनके
1: जी।
0: एंड मेरे जितने भी एयरफोर्स कोस्टमेट्स हैं जिन्होंने देश के नाम अपने जान निछावर कर दी है, उनके लिए ये गाना और देश की सारी माओं के लिए गाना।
1: वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने यहाँ पे कर दी है। और ये गाना भी उतना ही प्यारा है जो एक माँ के दिल के जज्बात और उसके जज्बात देश प्रेम से जुड़े हुए हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, उसके पास रहोगे तब भी याद करेगी, दूर हो जाओगे तब भी याद करेगी। तो उन सभी माओं को यहाँ पर कर्नल तनवर ने यहाँ पर एक तरीके से सलामी दी है। माँ को सलाम करना निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपनी निजी ज़िंदगी में करना चाहिए। सो वी आर प्रिविलेज टू हैव कर्नल तनवर ओवर हियर हु हैज़ सच काइंड ऑफ, ये कहूँगी मैं, सोच है जिसके पास, जो अपनी माँ के लिए सोच सकता है वो देश की सभी माओं के लिए सोच सकता है।

0: आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और उनकी से बात करने के बाद ना जाने कहते हैं कि स्मृति के पन्नों को जब पलटा जाता है ना तो लगता है कि कुछ कहानियाँ हम जैसी हैं। और कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर से बात करते हुए ना जाने कितने फौजी जिस वक्त हमें सुन रहे होंगे वो यही कह रहे होंगे कि जब हम अपनी किताब की स्मृति पन्नों को पलट रहे हैं तो कर्नल तनवर को सुनने के बाद वो सारी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि आपने जीवन के उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर कर दिया। ख़ासतौर पर जब एक बच्चा इंडिया जाता है और उसके बाद फिर आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से वो देश के लिए अपनी सेवाएं देता है, लेकिन कहते हैं कि कुछ कारवां बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं और आपके लिए आपके घर में ही वो माहौल बन चुका था। एक बात बताइए कर्नल तनवर, मुझे पिताजी की यूनिफॉर्म कितना फैसिनेट करती थी आपको, क्योंकि आप रोज़ पिताजी को देखते होंगे उस यूनिफॉर्म में, तो उस यूनिफॉर्म ने कहीं ना कहीं आपके दिल में क्या वो जगह बना दी थी?
1: बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे को बहुत ही डिस्टिंक्ट मेमोरी है। मैं थर्ड क्लास में था, थर्ड स्टैंडर्ड में, फिरोजपुर में मेरे फादर पोस्टेड थे, और एक दिन वो स्कूटर था उस टाइम पे हमारे पास, स्कूटर में आम लेके आए थे, आम छोड़ के वापस ऑफिस जा रहे थे। तो मैंने उस टाइम पे मेरे को ध्यान आया, जिस जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखी थी, मेरे को लगा हाँ मैं भी यही यूनिफॉर्म पहनूंगा। और तब से ही मेरा ये जज्बा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, एक ही एग्ज़ाम दिया मैंने एनडीए का, और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ही मैंने सब क्लियर करके बैठा हुआ था। सो दैट मोटिवेशन मेरे पिताजी से ही, और वो फैसिनेशन यूनिफॉर्म का मेरे नाना और मेरे पिताजी से ही आया।
0: वाह क्या बात है। अगर अब आपके कार्यकाल की बात की जाए तो 26 सालों का जो सफ़र है, सफ़र नहीं हम कहेंगे इसको, हम कहेंगे ये तो कहीं ना कहीं आपके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे हम किसी भी संस्था से जुड़ते हैं तो वो संस्था कहीं ना कहीं हमारा विकास करती है। हम अपनी सेवाएं देते हैं, निश्चित रूप से हम भी कुछ अर्जित करते हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद भी आपको महसूस हो रहा होगा, जैसा कि कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, तो आज भी वो फीलिंग, वो अनुभूति विद्यमान है, आई एम स्टिल एन ऑफिसर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके बात करने के तरीके, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका जो बैठने का पोस्चर है, आई कैन वेल प्रेडिक्ट यस आई एम टॉकिंग टू एन ऑफिसर। और कहीं ना कहीं आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम भी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं फीलिंग अभी भी साथ होगी।
1: बिल्कुल गीतिका, मेरे को हालांकि मैंने यूनिफॉर्म पहनना छोड़ दिया है, लेकिन मेरा सोच विचार, मेरे मोटिवेशंस, मेरे बिलीफ्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए। फौज में जो सिखाया गया है वो बहुत अच्छी चीज़ सिखाते हैं, वो एक इंसान को हमेशा ठीक चीज़ ही करने को बुलाते हैं। आर्मी में बोलते हैं चूज़ द हार्डर राइट देन द ईजियर रॉन्ग, और उसी वही ट्रेनिंग को मैंने अपनी रिटायरमेंट के बाद मान रखा है। और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कभी फौज मेरे को छोड़ सकेगी, हालांकि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, मेरे यार दोस्त, मेरा सोच विचार

0: दिल में एक घर बना रखा है, खुद भी याद करते होंगे, अकेले बैठते होंगे, इंट्रोस्पेक्शन करते होंगे, तो स्मृति पल आपको याद आते होंगे जहाँ जिंदगी के टफेस्ट डिसीजंस लिए गए। कौन से मिशंस थे जो दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं?
1: तो आई थिंक एक सबसे पहला जो मेरा मोटिवेटिंग इंस्टेंस रहा है वो मेरी स्क्वाड्रन में रहा है, हंटर स्क्वाड्रन में, मतलब कमीशन के बारे से पहले ही बात कर रहा हूँ मैं, और ये शायद फोर्थ टर्म था। और हंटर स्क्वाड्रन एक स्क्वाड्रन होती है जिसमें जो बोलते हैं बहुत मुश्किल स्क्वाड्रन है, वहाँ पे फिजिकल कार्रवाई बहुत ज़्यादा करते हैं। उस टाइम पे 12 स्क्वाड्रन होती थी, तो 12 में से सबसे टफ स्क्वाड्रन बोलते थे हंटर स्क्वाड्रन। और हंटर स्क्वाड्रन में 1.5 साल हो गए थे हमको, और हमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी, मतलब कोई चैंपियनशिप हमने नहीं जीती। खूब मेहनत करते थे हम भी, सुबह शाम दिन रात, सुबह 4 बजे भी, रात को 12 बजे भी, फिर हम, लेकिन हमारे पास ट्रॉफी नहीं आती थी। फिर किसी तरह मेहनत करके सब चीज़ें इकट्ठा हुई, हमको रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ अंधाधुन भाग दौड़ करने से हम जीत नहीं पाएंगे, हमने कुछ दिमाग लगाया, और फिर हमने एक ड्रिल कॉम की ट्रॉफी जीती। और उस ड्रिल कॉम ट्रॉफी जीतने के बाद हमने एक गाना, तब बहुत मशहूर होता था यहाँ के हम सिकंदर, उस गाने पे तकरीबन 2-3 दिन हमने बस उसी गाने पे डांस किया, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि हमारा जो 1.5 साल का परिश्रम है, तपस्या है, वो फाइनली पूरी हुई। तो उससे मेरे को ज़िंदगी में बहुत सीख मिली कि कैसे अपनी मेहनत को एक तरफ चैनलाइज करके, जीत की तरफ चैनलाइज करके जीत हासिल करना।
0: वाह क्या बात है, अगर आपने उस नगमे की बात यहाँ पे की है तो क्यों ना उसी नगमे को हमारे लिसनर्स तक ज़रूर पहुँचाया जाए, और आगे का कारवां आप ही की ज़ुबानी हम सुनेंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ है कर्नल तनवर से सुनने के लिए। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और आज हमारे साथ स्टूडियो में है कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और कर्नल तनवर को सुनने के बाद ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ना जाने मैं कितनी ही लोगों की कहानियाँ एक साथ पढ़ रही हूँ, एक साथ सुन रही हूँ, क्योंकि जो ताना बाना कर्नल तनवर ने यहाँ पिरोया है ना, आपके बहुत सारे बैचमेट्स कोर्समेट्स कहीं ना कहीं अगर वो सुन रहे होंगे या आगे चलकर हमें YouTube के माध्यम से सुनेंगे तो वो यही कहेंगे कि जैसे आपने उनके दिल की व्यथा कह दी। कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, लेकिन यहाँ गंतव्य डेस्टिनेशन एक है और वो है देश प्रेम, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। सेवाओं में रहते हुए यानी कि भारतीय सेना में आपका जो योगदान है वो अतुलनीय है, लेकिन वो एक मिशन जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्या उसको आप यहाँ पे साझा करना चाहेंगे? कोई ऐसा मिशन जिसके बारे में बार बार जब आप सोचते हैं तो कभी शायद आंखों में आंसू भी आते हों, दिल भर भी जाता हो, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है।
1: 97 जून में मैं कमीशन हुआ और 1999 जून दो साल बाद कारगिल की लड़ाई छिड़ चुकी थी। उस टाइम पे हम सब दो साल के यंग ऑफिसर्स थे और कारगिल की लड़ाई बहुत ही कठिन लड़ाई थी। पहाड़ चढ़ने पड़ते थे, लीड फ्रॉम द फ्रंट जो हमको बचपन से सिखाया गया एनडीए में कि आप आगे आगे चलेंगे। तो उस समय मेरे काफ़ी कोर्समेट्स ने अपने जान देश के लिए निछावर कर दी। उसमें मेरे क्लासमेट भी थे जो मेरे साथ स्कूल में थे, यहीं पे एपीएस धौलाकुआ में, अनुज नैयर, मेजर अनुज नैयर, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, परमवीर चक्र भी हैं मेरे कोर्समेट मनोज पांडे। तो कई कोर्समेट्स थे जिन्होंने अपनी जान देश के लिए निछावर कर दी और आप उनके साथ कॉलेज में थे। आप अगर इंडिया को कॉलेज माने तो जब आप उनका नाम पढ़ते हैं तो आपको उस टाइम पे तो बहुत ही, कोई भी चीज़ आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकती कि जब आपका एक चहिता हालांकि देश के लिए देश के काम में चला गया लेकिन आप कभी इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। तो कारगिल की का जो युद्ध था वो शायद हम सब कोर्समेट्स के लिए एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था जिसने हमको असली ज़िंदगी के बहुत पास ला के खड़ा कर दिया, लड़ाई के पास ला के खड़ा कर दिया और हमने उस युद्ध में विजय पाई। उस विजय दिवस हम मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं। तो हमारे कोर्स ने जो उसमें सैक्रिफाइसेस दी वो रंग लाई, हमने जो पाकिस्तान के घुसपैठी थे उनको मार गिराया, खदेड़ दिया, हिंदुस्तान से वापस भिजवा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसमें मेरे कोर्स 90th NDA 100 रेगुलर का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो शायद एक ऐसा मिशन था जो हमेशा मेरे दिल के पास रहेगा।
0: जी, आपके लिए गौरवपूर्ण पल था कि आप वहाँ साक्षात कारगिल युद्ध में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि सिर्फ निर्णय तो होते हैं, आउटपुट रिजल्ट्स तो बाद में पता लगते हैं जब निर्णय सामने आते हैं, लेकिन उस क्षण जब एक ऑफिसर एक निर्णय ले रहा होता है उस वक्त उसके मन में क्या होता है, क्या सोचता है?
1: सारे जो निर्णय इन परिस्थितियों में अवसर रहता है उसमें सबसे पहले वो अपने देश के बारे में सोचता है, मिशन, कि मेरा मिशन क्या है, ये करने से क्या मेरा मिशन अकम्प्लिश होगा और क्या मेरे देश को विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर उसमें उस में खड़ा हुआ वो डिसीजन, तो उसके बाद कि भाई मेरे जो जवान है, मैं एक लीडर हूँ, मेरे नीचे जितने भी जवान हैं, जो मेरा कमांड है, चाहे वो एक सेक्शन हो, चाहे एक प्लटून हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एक बटालियन हो, उनके हित में ये है कि नहीं, और फिर आगे आगे ऐसे से करके उस तरीके से डिसीजन देते हैं। ये बहुत ही फेमस कहावत है, चेटवुड क्रेडो बोलते हैं उसको, कि द सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम एंड देन द ट्रूप्स यू कमांड एंड लाइक। तो मेरे को लगता है आपको वो इनग्रेन कर दिया, आपके अंतर आत्मा में उसको इनग्रेन कर दिया कि आप जो भी डिसीजन लेते हो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन, चाहे वो मिशन हो कोई गेम जीतना या युद्ध जीतना या कोई एक्सरसाइज में कार्रवाई करना, तो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन जीत, उसके बाद वेलफेयर ऑफ ट्रूप्स। मेरे ख्याल में दिस इज हाउ यू आर मेड टू टेक डिसीजंस।
0: अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इमोशंस, भावनाएं, ये एक व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति में विराजमान है। हालांकि फोर्सेस आपको इस तरह से तैयार करती है कि आप हर भावनाओं के परे उससे ऊपर उठकर काम करते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि उस वक्त कारगिल वॉर में खास तौर पर जब आपके साथी जा रहे थे, अलविदा कह रहे थे, उस पल निर्णय लेना और उस वक्त अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपने सभी साथियों को एक छतरी के नीचे संभाल के रखना कितना महत्वपूर्ण और कितना जटिल होता है।
1: बहुत बहुत महत्वपूर्ण, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है गीतिका जी। चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, जब मौका आता है वो डिसीजन लेने का, जो कि डिसीजन का आउटकम या तो जीत हार में नहीं बोलूँगा, इंडिविजुअल लेवल पे वो जीना या मरना के डिसीजन पे, तो वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे को लगता है कि वो सिर्फ एक एस्प्री डी कोर होती है, जैसे मैं 93 फील्ड रेजिमेंट में था, तो वो 93 फील्ड रेजिमेंट को जीत प्राप्त करनी है, करनी ही करनी है। तो जो ये मेरे ख्याल में जो आप पूछना चाहते हैं वो क्या वो डर होता है, चाहे वो खौफ होता है, चाहे वो भय होता है, क्या वो आपके अंदर आता है कि नहीं आता। पर मैं ये एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूँ कि जब उस समय आप एक एज एन ऑफिसर कोई डिसीजन लेते हैं तो ये भय डर खौफ काफ़ी पीछे रह जाता है। सबसे पहले आपको अपनी रेजिमेंट की इज्जत सामने आती है कि भाई मेरी रेजिमेंट, मेरे कमांड, चाहे मैं एक बैटरी कमांडर हूँ चाहे जो भी हूँ, उस कमांड को सक्सेस करना है मैं। और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो जिस प्रकार से मेरा देश मेरे को देखेगा, मैं उसके लिए उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो चाहे मेरी जान जाए लेकिन मैं ये कार्रवाई करके ही रहूँगा। और ये ऑफकोर्स जैसे हमारी 3-4 साल की ट्रेनिंग है, जो रेजिमेंट में कार्रवाई होती है, यूनिट्स में कार्रवाई होती है, वो आपको ताकत देता है कि आप उस समय ये डिसीजन ले सके।
0: जी, तो कहीं ना कहीं सेना आपकी मानसिक और शारीरिक भी आपका मनोबल बढ़ाती है, आपकी इंजीनियरिंग कुछ इस तरह से कर देता है कि आप हर निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं, थैंक्स टू द टफेस्ट ट्रेनिंग्स आई वुड से।
1: बिल्कुल गीतिका, आपने बिल्कुल ये शब्द मेरे मुंह से ही निकाल लिए कि यस, ये हमारी भारतीय सेना का के ट्रेडिशंस हैं, एस्प्री डी कोर है भारतीय सेना का, जो सालों पुराना ट्रेडिशन है जीत हासिल करना, वही है जो आपको ये डिसीजंस लेने में मदद करता है।
0: जी जी, निश्चित रूप से। आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सेना ने आपको तैयार किया है, आज भी आपको लगता है कि आप अपनी निजी जिंदगी में भी निर्णय ले पाते हैं आसानी से, क्योंकि आपके साथ जो मेहनत की गई वो अपने आप में ही सबसे अलग है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी कुछ जो जिस कार्य में मैं लगा हुआ हूँ उसमें कई सिविलियंस के साथ मैं डील करता हूँ, और मेरे को रियलाइज़ होता है कि जो जिस भाव से वो अपने काम को अप्रोच करते हैं और हम जैसे अप्रोच करते थे, उसमें काफ़ी फ़र्क है। जैसे फौज में अगर आपको एक काम मिल गया है तो आप कुछ भी करोगे वो काम को सक्सेस करने के लिए, उस एम अचीवमेंट के लिए। लेकिन जब अभी मैं कॉरपोरेट में हूँ, कॉरपोरेट में जैसी कार्रवाई होती है वो थोड़ी अलग होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक स्वार्थ खुद का आ जाता है। लेकिन जब आप देश के लिए कार्रवाई करते हो ना गीतिका, तो खुद का स्वार्थ बिल्कुल पीछे रह जाता है, आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हो और सिर्फ देश और एम और मिशन के बारे में सोचते हो।
0: वाह क्या बात है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि सेनाएं तो हमें सशक्त करती ही करती हैं, हमें तैयार करती हैं कि कैसे हम मैदानी जंग में अपना दमखम साबित कर देंगे, लेकिन जब एक अधिकारी, एक सिपाही या जिस भी दर्जे पर एक व्यक्ति सेनाओं में रहकर अपनी भूमिका निभा रहा है, अपना योगदान दे रहा है, आप एज एन ऑफिसर कैसे सेनाओं को सशक्त करते हैं, ये अलग बात है। कितना महत्वपूर्ण होता है कि आप सेनाओं में हैं, आप सेना में हैं, आपको भी सेना को सशक्त करना है।
1: बिल्कुल गीतिका, जैसे मैं जो जिस कारगिल के बारे में जब हमने बात करी, जो मैंने नाम लिए, चाहे वो परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे, महावीर चक्र विजेता अनुज नैयर, उनका नाम हमेशा गौरवशाली रहेगा हमेशा, लेकिन इनके पीछे भी कई लोग हैं जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये मेरे को पता चला जब मैं सेना भवन में, इन माय लास्ट 10

0: और पोस्टेड था कि कैसे आर्मी हेडक्वार्टर में लोग निरंतर काम कर रहे हैं हमारी सेनाओं को कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करना, कि जो उनको हथियार, जो उनको असला, जो उनको इक्विपमेंट चाहिए, चाहे वो ड्रोन्स हों, चाहे वो टैंक्स हों, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ये आसान नहीं है इन चीज़ों को खरीदना। जब हमारी लड़ाई होगी, जब भी होगी, जिससे भी होगी, उनसे अच्छा सामान होना चाहिए हमारे, तभी हमारा सैनिक जीत पाएगा। इन सब को अरेंज करना, इन सब को सेना के लास्ट फौजी तक पहुंचाना आसान नहीं है। एंड हैट्स ऑफ टू दोज पीपल ऑल्सो जो कि अपने अपने हेडक्वार्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे 416 इंजीनियर ब्रिगेड है, वहाँ पे ब्रिगेडियर राणा है उदाहरण बॉर्स, वो काम कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि उनका कमांड लास्ट तक पहुंचे। इस प्रकार कई उदाहरण हैं कि जो लोग अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं ताकि सेना भी सशस्त्र हो।
1: जी, तभी हम हर बार आकाशवाणी के माध्यम से ये कहते हैं कि जब आप चैन की नींद सो रहे हैं तो कोई है जो आपके लिए निरंतर मुस्तैद है, जो निरंतर आपके लिए काम कर रहा है। और भी होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन कर्नल तनवर, यहाँ पर आपने कुछ दोस्तों के नाम लिए, नैयर साहब का आपने नाम लिया यहाँ पर, वो तमाम दोस्तों का जिक्र किया जिन्हें आपने कहीं ना कहीं निजी रूप से खोया है। पर हम यही कहेंगे कि आज जो हम देश का परचम लहरा रहे हैं सिर्फ उन्हीं काबिल वीर ऑफिसर्स की वजह से और उन्हीं के नाम, ये अगला नगमा हमारी ओर से आकाशवाणी की तरफ से।

0: निजी रूप से मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि कहते हैं कि हम जीवन में जब जो प्राप्त नहीं कर पाते तो हमें उस मंजिल की तरफ हमेशा आकर्षण होता है। वो लोग जिन्हें वो मंजिल मिली है वो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं, और आकाशवाणी के माध्यम से जब हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं तो हम अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं कि ऐसे दिग्गज हमारे बीच हैं जो अपनी बात हम तक साझा कर रहे हैं, आप तक साझा कर रहे हैं, तमाम फौजियों की बातें साझा कर रहे हैं, उनकी कहानियाँ सुना रहे हैं अपनी कहानी के माध्यम से। कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर हमारे साथ हैं आज हमारे स्टूडियो में, और बहुत सी बातें हमने की, आपके मिशन्स के बारे में बात की, आपके अपने जो कोर्स किया एनडीए के, आपके कार्यकाल यानी कि एनडीए के दिनों की बात की। अब एक सबसे महत्वपूर्ण और निजी सवाल, वो पल जब आप अपनी अर्धांगिनी से मिले, सर्वप्रथम सबसे पहले तो ये बताइए कर्नल तनवर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गुस्ताखी माफ, आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज?
1: जी बिल्कुल अरेंज मैरिज थी। मेरी शादी, इनफैक्ट मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, मेरी वाइफ का परिवार भी भिवानी में है, एंड सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को मैंने देखा 2002 में, 2002 तकरीबन अप्रैल मई का महीना था, और मैं उस टाइम पे एक चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड था तवांग में, एंड वापस जा रहा था छुट्टी सी, तो मेरी माँ ने बोला आ जाओ एक घर के पास, एक घर में चलते हैं। मैं कहा किस लिए, बोलते नहीं नहीं चलो चलो चलो, और वहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी वाइफ से मिला। माय वाइफ वाज इन सेकंड थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग,
2: सो स्वीट,
1: एंड तो पहली बार मेरे को काफ़ी डर गई वो मेरे को देख के, मैं तो अफसर था, वो शी वाज अ यंग गर्ल, आई थिंक शी ऑलमोस्ट क्राइड, रोई थी वो एक्चुअल में।
2: अच्छा।
1: एंड तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, एक साल बाद हमारी एंगेजमेंट हुई, और एक साल बाद 2004 25 फरवरी को हमारी शादी हुई, और ज़िंदगी उसके बाद बदल सी गई। जैसे मेरी वाइफ मेरे को हमेशा बोलती है कि अफसर तो मेरे को फौज ने बना दिया था, लेकिन मेरे को इंसान उसी ने बनाया।
0: क्या बात है। अच्छा, जब आपने उनसे कहा होगा कि देखो मैं फौज में हूँ और बहुत मुश्किलात आएंगी, बहुत बार ऐसा होगा जब मैं तुमसे बहुत दूर जाऊँगा और हो सकता है कि हमारे और तुम्हारे बीच वार्तालाप ना हो पाए, कन्वर्सेशन ना हो जाए, पर तुम धैर्य रखना, ऐसा कई बार कंसोल करना पड़ा?
1: बिल्कुल। माई वाइफ, इनफैक्ट नीति, आई एम श्योर शी इज लिसनिंग टू मी, तो कई बार हुआ ऐसे जब फौज में शादी करना वैसे ग्लैमरस लगता है बट आसान नहीं है, तो हैट्स ऑफ टू ऑल आर्मी वाइफ्स आल्सो, उनके हस्बैंड्स उनको छोड़ के देश के लिए दूर दराज इलाके में पोस्टेड होते हैं, पीछे से वाइफ बच्चों के साथ, कहीं अपने सास ससुर के साथ, कहीं पे भी कुछ घर संभालती हैं, आसान नहीं होता। ये तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहा हूँ, हस्बैंड वापस आए, कैसे आए, चोट खा के आए या ना आए, ये अनसर्टेनिटी सहन करना आसान नहीं होता। तो हैट्स ऑफ टू देम। मेरे को याद है मैं एक कोर्स कर रहा था, उसके बाद मेरी पोस्टिंग राष्ट्र राइफल्स में हो गई थी कश्मीर में, पहली बार पोस्टिंग फील्ड जा रहा था मैं शादी के बाद, तो काफ़ी हताश हुई मेरी वाइफ कि तुमने जानबूझ के जाना चाहते हो उधर, बट हाँ किसी तरह हमने उनको मनाया, एंड टच वुड थिंग्स आर नाइस।
0: यही मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो दास्तान है, कहानी है, एक सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं, उन तमाम ऑफिसर्स की है जो अपनी फैमिली और साथ ही साथ देश के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है उसको कहते हैं ना बैलेंस करके चलते हैं, और इसमें आर्मी का एक बहुत बड़ा योगदान है, आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन काफ़ी कारगर साबित होती हैं,
1: बिल्कुल
0: नित्य प्रति कार्य करती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं हम सल्यूट करते हैं हमारी सेनाओं को जो ना केवल हमारे इस तरह के सैनिक अधिकारी कहते हैं उनको जन्म देती है, पर साथ ही साथ उनके परिवारों का भी खासा ख्याल रखती है, और हैट्स ऑफ टू द वाइव्स ऑफ द आर्मी पर्सनल्स जो अपने कहते हैं कि अपने वीर पति, अपने वीर सोलमेट के दूर होने के बाद भी सुचारू रूप से घर को चलाती है विदाउट एनी कंप्लेंट्स।
1: इसमें जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, फौज का बहुत बड़ा हाथ रहता है, बहुत इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा, जैसे मैं बता रहा था आर्मी स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं, सब कुछ अंदर होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बहुत ही इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है जिससे हमारी कार्रवाई आगे घर गृहस्थी चलती रहती है।
0: कोई ऐसी बात जो बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही इमोशनल हो आपकी वाइफ के संबंधित, जिसको आप बार बार जिक्र करते हैं, खासतौर पर तब जब उनसे दूर थे या सेवाओं में थे, तो उनकी बातें, कोई ऐसा गाना या उनका अपने इमोशंस दिखाने का तरीका जो आपको बहुत याद आता है अभी भी?
1: बहुत याद आता है, ऑफकोर्स माई वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन इन द वर्ल्ड, बट शी इज ऑल्सो प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन द वर्ल्ड।
0: क्या बात है।
1: तो हमारी जो लेडीज संगीत होता है उसमें मेरी वाइफ

0: वाइफ ने एक सॉन्ग पे डांस किया था, मैं तेरी हो गई यार सजना वे सजना, और जिस तरीके से उन्होंने डांस किया था, अभी मेरे ख्याल में कितने 22 साल हो गए, मेरे को अभी तक मेरी मेरी आंखों के सामने वो नजराना
1: वाह
0: आ
1: क्या
0: जाता
1: बात है,
0: है,
1: यानी कि वो पल जिस
0: वो
1: वक्त
0: पल
1: आंकड़े
0: जिसमें
1: सूत्र
0: उन्होंने
1: में
0: डांस
1: बंधे
0: किया है,
1: और उनका नृत्य कहीं ना
0: उनका
1: कहीं
0: बहुत
1: आपको
0: असर।
1: लुभा गया। वाह क्या बात है, कहते हैं कि जीवन की छोटी बड़ी बातों में वो प्रेम छुपा होता है, तकरार होती है, और कहते हैं कि इमोशंस तो सब जगह एक जैसे हैं और वो भावनाएं ही हैं जिनकी वजह से हमारा जो इंडियन मैरिटल सिस्टम है वो आज भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो उस नगमे का जिक्र आपने यहाँ पर कर दिया है, तो क्यों ना नाम के लिए ये नगमा हम यहाँ से प्ले करें।

0: और हम भी हरदम हर पल बस आपके हैं, और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। और करल तलवर, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ निजी रूप से कि अगर मुझे मौका मिले ना इसी जिंदगी में रहकर कि मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकूँ, मैं कभी मना नहीं करूँगी। आप बताइए, डू यू वॉन्ट टू रीलिव दोस 26 ईयर्स अगेन?
1: गीतिका, ऑफ कोर्स, अगर मैं अपने पिछले 26 साल फौज में जो मैंने बिताए हैं उनके बारे में सोचूं तो इतना फुलफिलिंग लाइफ रहा है। इंडिया में आपको क्या क्या नहीं कराते, सेलिंग, राइडिंग, प्लेन में चलाते हैं, मैंने पूरा देश देख लिया है। ऐसा कोई प्रांत नहीं रहा है जहां पे मैंने कुछ दिन नहीं बिताए हैं। विदेश दिखाया है, देश ने मेरे को रशिया भेजा, देश ने मेरे को फ्रांस में भेजा, मैंने लड़ाई लड़ी है दूसरे देश के साथ, टेररिस्ट के साथ, मैंने कई हजार करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट एक जगह से साइन किए हैं, मैंने जिंदगी के सबसे हसीन पल, चाहे वो ज्योग्राफिकली हो, जैसे कि इतनी सुंदर जगह जैसे तवांग, कश्मीर, कोयम्बतूर, इतनी सुंदर जगह पे जाके मैंने बिताए हैं जो कि कभी हो ही नहीं सकता किसी और उसमें। और एक एक बहुत ही डाइवर्स लाइफ मैंने देखी है। ये सिर्फ लाइफ ही डाइवर्स नहीं, जितनी इज्जत हमारे देश में हमारा देशवासी फौजियों की करता है वो इज्जत मिलना और कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है। और मैं यही बात हर देश के युवा को कहना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे को भी कहता हूँ। मेरा बेटा अभी अरिमर्दन सिंह तंवर सेकेंड ईयर लॉ में है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, उसको भी मैं बोलता हूँ कि बेटा फौज में आप आके देखिए, देखिए वो कैसी जिंदगी आपको देता है, आपका कायाकल्प कर देता है, जितनी इज्जत, जितनी शोहरत, जितना सेटिस्फैक्शन आपको फौज में सर्व करके मिल सकता है और कहीं ना कहीं भी नहीं मिल सकता।
0: जी बिल्कुल नहीं मिल सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं है। विशिष्ट सेवा मेडल 2023 में आपको सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा, वो पल, वो अविस्मरणीय पल आपके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गया, एक ऐसी बात, एक ऐसा सम्मान जिसे आप दोहराते रहेंगे, बताते रहेंगे सबको, कहीं ना कहीं वो प्रेरणा स्रोत है उन तमाम बच्चों के लिए जो आर्म फोर्सेस जाना चाहते हैं। वो पल कैसा था जीवन में?
1: आई थिंक मेरी जिंदगी का एक बहुत ही इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग मोमेंट वॉज वेन जब मेरे को प्रेसिडेंट ने विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। इससे क्या होता है, अवार्ड तो है ही, ये हमेशा मेरे नाम के साथ जुड़ जाता है। मैं अपने नाम को कर्नल KVS तंवर VSM लिख सकता हूँ, और जो एक ऐसी उपलब्धि है बहुत कम लोगों को वो मिलती है। इसकी मेरे को किस लिए मिला, मैं सेना भवन में जब आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था तो मैंने कुछ काम किया देश के लिए कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल मिला। और हमेशा मैं आभारी रहूँगा हमारे सीनियर्स का, मेरे जो सीनियर्स थे उस टाइम पे, ब्रिगेडियर होती थे जनरल राजू थे, ब्रिगेडियर मोंगा थे, जनरल मोहंती थे, जिन्होंने मेरे को गाइड किया और ये मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान हुआ।
0: वाह क्या बात है। वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम छात्र छात्राएं, आज तो हम देखते हैं किस तरह से युवतियां भी आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन मिल रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
1: आज की युवा को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सेना जैसा माहौल, सेना जैसा लाइफ, सेना जैसा करियर आपको नहीं मिल सकता। ये एक ऐसा करियर है जो सिर्फ ना सिर्फ आपकी किंतु आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा
0: जी।
1: आपको एक ऐसे राह में ले जाएगा जहाँ पे हर चीज़ आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। तो सारी युवाओं और युवतियों से मैं ये बताता हूँ कि आर्मी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आसान नहीं है आर्मी में आना, बिल्कुल आसान नहीं है। आप मेहनत करें तो आप आर्मी में आएं और देश सेवा कैसी होती है आप सीखें।
0: जी हम दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज संदेश टू सोल्जर्स इस प्रोग्राम के माध्यम से आप उन सभी तक पहुँचे हैं जो कहीं ना कहीं या तो अपनी कहानी दोहरा रहे हैं आपको सुनने के बाद, बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स सेवानिवृत्त हैं या अभी सर्विसेज में हैं, या वो लोग जो चाहते हैं कि हम सेना में रहकर सेवाएं दें, देश के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को साबित करें, उनके लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत सारे अनछुए पहलुओं को अपनी ज़िंदगी के यहाँ उजागर कर हमें कहीं ना कहीं सेनाओं से जोड़ दिया, देश प्रेम से जोड़ दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे संदेश हम पहुँचे हैं और सभी ने आपको सलाम कहा है, आपके जज्बे को सलाम कहा है। सभी दोस्तों से हम माफ़ी मांगना चाहेंगे कि आप सभी के नाम हम ज़रूर नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कर्नल तनवर को मैं आपके संदेश इस प्रोग्राम के बाद ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और एक बार हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए और हम तक इन प्यारी प्यारी बातों को साझा करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति ने बैतूल में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित जनजाति सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश का कोई भी समुदाय विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि AI एक परिवर्तनकारी शक्ति है, लेकिन इसका उद्देश्य लोगों को सशक्त बनाना भी होना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। श्री प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और क्षमता के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान है। प्रदेश में मानसून के पहले गर्मी का असर भी बढ़ता दिख रहा है और अगले 3 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। और हॉकी में भारतीय महिला टीम ने न्यूजीलैंड में जारी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत की ओर से दीपिका ने 2 गोल और दीपिका सोरेंग ने 1 गोल दागा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:02 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी। आज की युवाणी आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

0: नमस्कार दोस्तों, आज के युवाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सनाया नायक।
1: और मैं हूं मेघा राय।
0: दोस्तों, कहते हैं ना, जब इरादे मजबूत होते हैं तो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो जिंदगी में कभी उदास ना होना और कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना।
1: तो दोस्तों, आज की शुरुआत करेंगे हम दो प्रश्नों के साथ, जिनके उत्तर हम बताएंगे आपको कार्यक्रम के अंत में। तो हमारा पहला प्रश्न है, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया गया है।
0: और हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, किसके द्वारा हाल ही में ध्रुव पहल लॉन्च की गई है। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम का पहला गीत सुनने का, जो है फिल्म बॉर्डर 2 से, जिसे गाया है दिलजीत दोसांझ, सचित टंडन और परंपरा टंडन ने।

0: सनाया, क्या तुम भी मानती हो कि युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है? उनमें एक अलग एनर्जी होती है, उनके नए विचार होते हैं और बदलाव लाने का जुनून भी अलग ही होता है।
1: बिल्कुल सही कहा मेघा तुमने, पर मेरा मानना यह भी है कि हर युवा का व्यक्तित्व विकास अत्यंत आवश्यक है। आज भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, ऐसे में युवाओं का होलिस्टिक डेवलपमेंट देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है।
0: दोस्तों, कुछ खास बातें इस बारे में ध्यान रखना, मानना, जानना भी जरूरी है, जैसे अपना आत्मविश्वास बढ़ाना, अच्छी संचार कला विकसित करना, नियमित पुस्तक पढ़ना, समय प्रबंध सीखना, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना और पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करना है।
1: जब युवा अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं तो वे न केवल अपने करियर में सफल होते हैं बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनका ज्ञान, उनका थॉट प्रोसेस, उनका नजरिया, उनकी सोच और ऑफ कोर्स उनका पावर सभी मायने रखता है।
0: दोस्तों, हम सबके भीतर असीम संभावनाएं छिपी होती हैं। आवश्यकता केवल उन्हें पहचानने, सही दिशा देने और निरंतर निखारने की है।
1: तो विश्व के सबसे बड़े युवा देश के शक्तिशाली युवाओं को अपनी शक्तियों को जागृत करने और देश के विकास में सीधे जुड़ने की प्रेरणा खुद को खुद से लेनी होगी। और चलिए, इस प्रेरणा के लिए यह गीत बड़ा ही अप्रोप्रिएट बन पड़ता है। तुमेघा सुने और सुनाए ये गीत, जो लिया गया है फिल्म सूरमा से, जिसे आवाज दी है शंकर महादेवन ने।

0: कहते हैं कि कुछ कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं बनाती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय की सीमाओं को पार कर अमर हो जाते हैं।
1: बिल्कुल मेघा, और जब बात साहस, आत्मसम्मान और देशभक्ति की हो, तो एक नाम पूरे गर्व के साथ हमारे सामने आता है। एक ऐसी वीरांगना जिसने न केवल किसी राज्य की रक्षा के लिए, बल्कि पूरे देश को स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा दी।
0: आज के हमारे विषय प्रेरक व्यक्तित्व में हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था और एक युवा रानी ने अपने साहस से इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ दी थी।
1: वह रानी जिसने दुनिया को बता दिया कि हिम्मत का कोई लिंग नहीं होता और देश प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।
0: जी हाँ, आज की हमारी प्रेरणा है झांसी की शान, वीरता की पहचान और भारत की अमर नायिका रानी लक्ष्मीबाई।
1: तो आइए सुनते हैं उनके जीवन की प्रेरणादायक कहानी।
0: 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें प्यार से मनु कहा जाता था, बचपन से ही बेहद साहसी और निडर थी। जहां उस समय लड़कियों को घर में काम सिखाए जाते थे, वहीं मनु घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में रुचि रखती थी।
1: बचपन से ही उनमें नेतृत्व करने की क्षमता दिखाई देती थी। उनकी यही विशेषताएं आगे चलकर उन्हें इतिहास की सबसे महान वीरांगनाओं में शामिल करने वाली थी।
0: समय के साथ उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ और वे रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुईं।

0: झांसी की रानी बनने के बाद उन्होंने अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखा और जल्द ही लोगों के दिलों में विशेष स्थान बना लिया।
1: लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ समय बाद उनके पुत्र का निधन हो गया और फिर महाराजा गंगाधर राव भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यह रानी लक्ष्मीबाई के लिए बेहद कठिन समय था।
0: रानी ने एक बालक को गोद लेकर उसका नाम दामोदर राव रखा, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उसे उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेज झांसी को अपने अधिकार में लेना चाहते थे।
1: यहीं से शुरू हुआ वह संघर्ष जिसने रानी लक्ष्मीबाई को अमर बना दिया। अंग्रेजों के सामने झुकने के बजाय उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी।
0: 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। झांसी भी इस क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया।
1: रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना को संगठित किया। उन्होंने महिलाओं को भी युद्ध प्रशिक्षण दिया और स्वयं सेवा का नेतृत्व किया। उनकी बहादुरी देखकर सैनिकों का उत्साह और कई गुना बढ़ गया।
0: जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, तब रानी ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। वे युद्ध भूमि में स्वयं उतर गईं और अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी।
1: कहा जाता है कि अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर वे घोड़े पर सवार हुई और युद्ध करती रहीं। यह दृश्य आज भी वीरता की सबसे बड़ी मिसालों में गिना जाता है।
0: हालांकि परिस्थितियां कठिन थी, लेकिन रानी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने ग्वालियर तक संघर्ष जारी रखा और अंतिम समय तक मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ती रहीं।
1: 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। उनका साहस, उनका आत्मसम्मान और उनका देश प्रेम के लिए जो जज्बा था, आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है।

0: अभी आप सुन रहे थे यह गीत जो था फिल्म मणिकर्णिका से, जिसे गाया शंकर महादेवन ने।
1: दोस्तों, अक्सर हम बचपन से सुनते हैं कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन क्या यह सफलता का रास्ता सिर्फ नौकरी तक ही सीमित है?
0: बिल्कुल नहीं मेघा, आज का दौर अवसरों का दौर है। अब शिक्षा सिर्फ डिग्री पाने का माध्यम नहीं, बल्कि अपने सपनों को साकार करना और खुद के लिए रोजगार पैदा करने की ताकत भी बन चुकी है। एक ऐसा विषय जो युवाओं को सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाने की प्रेरणा देता है।
1: दोस्तों, शिक्षा का असली उद्देश्य केवल किताबों का ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का उपयोग जीवन में करना भी है।
0: यदि किसी छात्र ने कंप्यूटर की पढ़ाई की है तो वह फ्रीलांसिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और कई काम भी शुरू कर सकता है। और अगर किसी ने फैशन डिजाइनिंग पढ़ा है तो वह अपना बुटीक भी ओपन कर सकता है।
1: यानी शिक्षा हमें केवल नौकरी के लिए तैयार नहीं करती, बल्कि हमें आत्मनिर्भर बनने की क्षमता भी देती है।
0: आज हम ऐसे कई युवाओं को देखते हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई को अपना व्यवसाय का आधार बनाया। किसी ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, किसी ने अपना स्टार्टअप बनाया, तो किसी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने हुनर को पहचान दी।
1: स्वरोजगार का सबसे बड़ा फायदा यह है कि व्यक्ति अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार काम कर सकता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और नई संभावनाओं के द्वार भी खुलते हैं।
0: हालांकि शुरुआत में चुनौतियां भी आती हैं। पूंजी की कमी, अनुभव की कमी या असफलता का डर कई लोगों को रोकता है।
1: लेकिन याद रखिए, हर बड़ा व्यवसाय कभी न कभी एक छोटे से विचार से शुरू हुआ था। सफलता उन्हीं को मिलती है जो पहला कदम उठाने का साहस रखते हैं।
0: अगर हम अपनी शिक्षा के साथ कौशल विकास को जोड़ दें तो स्वरोजगार के अवसर और भी बढ़ जाते हैं। आज सरकार भी कई योजनाओं के माध्यम से युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
1: आज का युवा अगर अपनी शिक्षा, तकनीक और रचनात्मकता को एक साथ जोड़ ले तो वो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है।
0: और यही एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की पहचान है।
1: तो दोस्तों, आज के विषय से हमें यही सीख मिलती है कि शिक्षा को केवल नौकरी प्राप्त करने का साधन ना समझें।
0: और इसी नई शुरुआत, नए सपनों और आत्मनिर्भरता के जज्बे को सलाम करते हैं। आइए सुनते हैं एक प्रेरकदायक गीत फिल्म केदारनाथ से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने।

0: कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे सवाल पूछे थे और उनका जवाब जानने का समय हो चला है। पहला सवाल था, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया है? सही जवाब है राजस्थान।
1: और हमारा दूसरा प्रश्न था, किसके द्वारा हाल ही में ध्रुव पहल लॉन्च की गई है? इसका उत्तर है भारतीय डाक विभाग। इन्हीं विचारों के साथ आज के युवाणी कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त सनाया नायक
0: और मैं हूँ मेघा राय।
2: स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युववाणी। आज की युववाणी आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:30 हुए हैं। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।

0: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में एक बहुत ही खूबसूरत गाना जिसको हमने लिया है आज और कल से। साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा है और रवि का संगीत है। फिल्म का नाम आज और कल।

0: ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।
1: अगला गाना लिया है हमने फिल्म आज आपकी कसम से, आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, आर डिपार्टमेंट का संगीत है। सुनिए ये गीत।

0: अब हम आपको सुनवा रहे हैं आखिरी खत फिल्म में मोहम्मद रफी को। कैफी आजमी ने इस गाने को लिखा है, खय्याम का संगीत है।
1: और कुछ देर ठहर

अब हम आपको सुनवा रहे हैं आखिर में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक गीत, जिसको हमने लिया है फिल्म आप आए बहार आए से। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनिए ये गीत, यह है कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति।

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा

0: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
0: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
0: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
0: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
0: सफर में
2: आपके साथ
0: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: न सनसनी, न सनसनी, न सनसनी, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

0: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 हुए हैं और ये समय होता है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस के कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस मुलाकात में विनिर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और समुद्री अवसंरचना जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति ने बैतूल में प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित जनजातीय सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश का कोई भी समुदाय विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहना चाहिए। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। श्री प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और क्षमता के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। और हॉकी में भारतीय महिला टीम ने न्यूजीलैंड में जारी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
3: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलौदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
3: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
3: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओं, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है, यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून हैं, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, तो आपको बता देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियां भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओं, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओ, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओ, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्यौहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओ, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओ हमारी आज की जानकारी विश्वविख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
2: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
4: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं।

आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मस्न

के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी, वो खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना, जाओ नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम

0: क्यों ना रहो?
1: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
0: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
2: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
1: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
0: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
1: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती।
0: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
1: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है। तब मुझे जाने दीजिए।
0: चिड़िया तो मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
1: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होंगी?

0: नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं। क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
1: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है। तू सोना नहीं जानती? सोना, उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
0: वो सोना क्या चीज होती है?
1: तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया? तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
0: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं। पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
1: ठहर ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह।
0: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती। इतना जानती हूं कि माँ मेरी माँ है और मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
1: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे।

अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर

0: एक भाई है, है? बड़ी अच्छी बात है।
1: सेठ, मुझे देर हो रही है।
0: देर? अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
1: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
2: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
3: जी मालिक।
4: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
0: हाथ से निकल गई।
4: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
1: माँ
4: ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा,
5: क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा।
4: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही।
5: बड़ी
4: देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और लीजिए अब प्रस्तुत है माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बैतूल प्रवास पर आयोजित कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी बैतूल का योगदान है और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित किया जा रहा है।

श्रोताओं, आज बैतूल नगर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जिला प्रशासन और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त प्रयासों से आध्यात्मिक जागृति से आदिवासी समाज का सशक्तिकरण इस विषय पर महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके, जिले के प्रभारी मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल तथा विधायक बैतूल श्री हेमंत खंडेलवाल प्रमुख रूप से उपस्थित थे। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की हेलीपैड पर अगवानी की। तत्पश्चात कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति का काफिला समारोह स्थल पर पहुंचा। आयोजन स्थल पर श्वेत भव्य वर्षारोधी मजबूत पंडाल लगाया गया था, जिसमें लगभग 4,000 लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई थी। सभी के प्रवेश हेतु अलग

0: अलग प्रवेश द्वार निर्धारित किए गए थे। सुरक्षा कर्मी सघन जांच और एंट्री पास देखकर ही लोगों का प्रवेश सुनिश्चित कर रहे थे। मंच पर विशेष अतिथियों के बैठने की सुरुचिपूर्ण व्यवस्था की गई थी। यहां पहुंचकर महामहिम द्वारा कार्यक्रम स्थल पर वृक्षारोपण एवं ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ सदस्यों के साथ फोटो सत्र भी पूरा किया गया। कार्यक्रम में आध्यात्मिक जागृति के साथ साथ स्थानीय संस्कृति और विकास की झलक भी देखने को मिली। यहाँ बैतूल की अनूठी स्थानीय कला, हस्तशिल्प और जनजातीय विरासत को प्रदर्शित करती हुई विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। साथ ही वन विभाग द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण, वनोपज और जनजातीय समाज के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े कार्यों को जीवंत रूप से दिखाया गया था। कार्यक्रम का आरंभ राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान के गायन से हुआ। फिर मंच पर विधिवत दीप प्रज्वलन किया गया तथा मंच पर उपस्थित सदस्यों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी का शॉल और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। इसके बाद पीके मंजू दीदी संचालक बैतूल मध्य प्रदेश द्वारा स्वागत उद्बोधन दिया गया।
1: आज हम सभी के लिए विशेष बैतूल वासियों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, बहुत खुशियों का दिन है। मैं बताना चाहती हूँ, आज से 2 साल पहले मैंने एक छोटा सा सपना देखा था। सपना तो बहुत बड़ा था, दिल और दिमाग की जंग शुरू हो गई थी। दिमाग ने कहा था असंभव, लेकिन दिल ने कहा था संभव। और इतनी इन खुली आँखों से मैंने जो सपना देखा था, आज वो सपना हम सब के सामने साकार हो रहा है।
0: इसके बाद प्रस्तुत स्वागत नृत्य ने सभी का मन मोह लिया।

0: इस अवसर पर जोनल संचालक मध्य प्रदेश बी के शैलजा दीदी ने कहा,
1: आज हम सभी बहुत सुंदर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण। आदिवासी समाज सदैव से ही प्रकृति का रक्षक रहा है। आप में एकता और सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। आपकी जड़ी बूटियाँ जीवन दान देने वाली हैं। जड़ी में दवा और श्रद्धा में दुआ, ये कहावत भारतीय संस्कृति की आस्था और ईश्वर में विश्वास का परिचायक है। हमारे आदिवासी भाई बहनों की ये परंपरा कि हर शुभ अवसर पर नीम, महुआ, पीपल, बरगद जैसे वृक्षों को रोपने की, इन्होंने ही जंगलों को जीवित रखा हुआ है। जलाशयों को प्रदूषण से मुक्त रखना और उनके गहरीकरण के प्रति जागरूक रहना, ये आपका दिव्य कर्तव्य रहा है। ऐसे आदिवासी समाज के जागृति क्या केवल भौतिक विकास द्वारा संभव है, या इसके लिए आध्यात्मिक जागृति आवश्यक है? आध्यात्मिकता हमें स्वयं के अर्थात इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा के मूल गुणों से परिचित कराती है। मूल गुणों में शक्ति है।
0: कार्यक्रम में उपस्थित माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री दुर्गादास विके ने अपने उद्बोधन में जनजातीय समुदाय हेतु सरकार द्वारा लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की।
2: आज बैतूल की पुण्य धरा पर हम सभी एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण के साक्षी बन रहे हैं। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं भाइयों बहनों, बल्कि आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक जागरण और जनजातीय अस्मिता के सम्मान का एक विराट महोत्सव है। सबसे पहले मैं अपने संसदीय क्षेत्र बैतूल की ओर से भारत की प्रथम जनजातीय महिला महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ओडिशा के एक छोटे से जनजाति गांव में जन्मी एक साधारण बालिका का भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुँचना केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की शक्ति, संविधान की महानता और सामाजिक समरसता की अद्भुत मिसाल है। महामहिम राष्ट्रपति जी, आपका जीवन संघर्ष, समर्पण और सेवा की अद्वितीय मिसाल है। आपने अपनी कर्मठता, धैर्य और सामाजिक उत्थान के प्रति अटूट संकल्प के बल पर न केवल उच्चतम संवैधानिक पद को सुशोभित किया है, बल्कि देश की हर बेटी, हर वंचित वर्ग और समाज के हर नागरिक के लिए आप प्रेरणा स्रोत है, आदर्श है। आपका जीवन यह दर्शाता है कि सच्ची लगन, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आज जब आप बैतूल की इस जनजाति बहुल भूमि पर पधारी हैं, तब यहाँ का प्रत्येक जनजाति परिवार स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। महोदया, आपकी अंतर्वेदना और देश की जनजातियों के प्रति अथाह संवेदनाओं के फलस्वरूप धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनमन आदि कर्मयोगी, संसदीय संकुल विकास परियोजना, सिकल सेल एनीमिया, टीबी जैसी अनुवांशिक बीमारियों के प्रति ठोस कार्य योजनाएं बन सकी हैं।
0: मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने अपने संबोधन में कहा,
3: राजयोग और मेडिटेशन से जो शांति मिलती है वो अब मैंने खुद ने अनुभव किया है। मैं समझता हूँ यहाँ नीचे में सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी बहनें देखी, यहाँ भी बहुत से आदिवासी समाज के भाई बहन बैठे हैं। मैं सभी को आग्रह करूंगा कि जीवन में हमको शांति चाहिए। पहले पैसा की बात करो, मगर मन को शांति मिलेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। मन को शांति मिलेगी, धार्मिक भावना होगी तो हम नीति से चलेंगे और भगवान को भी वो पसंद है। इसलिए मैं समझता हूँ आदिवासी सशक्तिकरण में आध्यात्मिकता भी ध्यान होना चाहिए और ऐसी संस्था से जुड़कर हमको जो हमारे जीवन में प्रगति करना है वो अच्छी तरह कर सकेंगे।
0: राष्ट्रपति जी द्वारा कलश एवं ध्वज स्थापना द्वारा महासम्मेलन के शुभारंभ की घोषणा की गई।

0: आध्यात्मिक जागृति आदिवासी समाज के सशक्तिकरण का मूल आधार है। अपनी समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक जीवन शैली इन्हें अपनी अलग पहचान बनाने का एक अवसर देती है। इस बात को रेखांकित करते हुए महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा,
1: उपभोग की संस्कृति और संस्कृति पर आधारित आज की तेज भागती दुनिया में समाज के हर वर्ग की आध्यात्मिक सुचिता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के बल पर दीर्घकालीन रूप से समतापरक आचरण पद्धति और प्राकृतिक संपदाओं के प्रति संवेदनशीलता जीवन शैली विकसित की जा रही है। आज के तनाव और युद्धों से त्रस्त विश्व में इसकी आवश्यकता अतीत के किसी भी कालखंड की तुलना में और अधिक हो गई है। इसीलिए इस सम्मेलन तथा ऐसे प्रयासों का महत्व और भी बढ़ जाती है।
0: आध्यात्मिकता आदिवासियों की जीवन शैली में नैसर्गिक रूप से बसी है। इस बात पर बल देते हुए राष्ट्रपति महोदया ने कहा,
1: जनजातीय समुदाय की जीवन शैली सहज रूप से ही अध्यात्म की मूलभूत प्रेरणाओं के निकट होती है। हम जनजाति को आदिवासी कहते हैं, कोई कोई उनको वनवासी कहते हैं। ये आदिवासी है, आदिम आदिवासी, जो सृष्टि के आरंभ से ही ये धरा पे रहते हैं और उनके जीवन शैली ये केवल कोई वो आध्यात्मिकता ही भरा हुआ है और सुख शांति आनंद प्रेम में जीना जानते हैं, हिंसा से दूर रहते हैं। हम जानते हैं ये आदिम काल में जैसे थे आज भी ऐसे ही है, जैसे कि गीली मिट्टी उसको जैसे बनाओ ऐसे बनते हैं और प्रकृति के पूजा करते हैं, लेकिन केवल प्रकृति नहीं पंचतत्व को पूजा करते हैं। ये धरती, ये आकाश, वायु, जल, सूर्य, चंद्र, इसको पूजा करते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन बनाने के, कोई मंदिर, कोई पूजाशाला बनाते नहीं।
0: राष्ट्रपति जी आगे कहते हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन प्रकृति को कोई क्षति नहीं पहुंचाते, यह उनकी सकारात्मक सोच को दर्शाता है।
1: धरती को क्षति पहुंचाते नहीं, जल कभी दूषित नहीं करते, तालाबों में नहाते, नदियों में नहाते, नदी में कोई कूड़ा फेंकता नहीं, तालाबों को कोई अपरिष्कार नहीं करते। धरती को जरूरत के मुताबिक कभी चोट पहुंचाते तो उसके पहले उसको नमन करते हैं, पेड़ पौधा पूजा करते हैं, वो सही है। आज तो गैस आ गया है, लेकिन एक दिन था पेड़ से ही हम खाना बनाते थे, लेकिन सूखे पेड़ को चुनते हैं। किसी भी कारण कोई पेड़ को चोट पहुंचाते कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो उसके पहले उनको नमन करते हैं, सूर्य को पूजा करते हैं। आप सोचिए, सूर्य नहीं होता तो क्या होता, पेड़ पौधा नहीं होता तो ये जितने हवा परमपिता परमात्मा ने धरती पे दिए हैं वो खत्म हो जाता। आज पेड़ पौधा है इसीलिए वो रोटेट होता है। आज समुन्द्र नदी है इसीलिए बारिश हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए इसी दृष्टि से ये आध्यात्मिकता से आदिवासी समाज भरपूर है, फुट फुट का उनके मन में आध्यात्मिकता भरे हुए है। पेड़ पौधा में वो रहते हैं क्योंकि कभी कभी किसी आदिवासी उनको उनके वंशज, पेड़ पौधों के वंशज कहते हैं।
0: अपने उद्बोधन के अंत में बैतूल जिले और उनके निवासियों के स्वभावगत विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा,
1: मध्य प्रदेश का ये बैतूल जिला अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक विरासत के लिए पूरे देश में जाना जाता है। मुझे बताया गया है कि यहाँ के जनजातीय समुदाय ने अपने विशिष्ट परंपराओं, लोक ज्ञान और सांस्कृतिक मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रखे हैं। बैतूल की जनजातीय संस्कृति में सामूहिकता, सहयोग, सरलता, ईमानदारी और आध्यात्मिकता जैसे उच्च जीवन मूल्य सहज रूप से विद्यमान है। जब आध्यात्मिक और सेवा का संगम होता है तब समाज में स्थायी परिवर्तन आता है। मुझे विश्वास है कि ये महासम्मेलन सेवा और अध्यात्मों के इस संगम की ओर लोगों को आकृष्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आइए हम सब मिलकर 2047 तक एक ऐसे विकसित भारत का निर्माण करें और अधिक से अधिक प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें, जहां अध्यात्म, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण हमारी समावेश की विकास की आधारशिला बने। मैं एक बार फिर इस आयोजन के लिए अपनी हार्दिक बधाई देती हूँ तथा सभी प्रतिभागियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
0: आज के कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगायन के सामूहिक गायन से संपन्न हुआ। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को हेलीपैड पर गरिमामयी विदाई दी गई। अन्य अतिथिगण भी अपने अपने गंतव्य स्थलों की ओर चल पड़े। श्रोताओं, ये थी महामहिम राष्ट्रपति के एक दिवसीय बैतूल प्रवास की रेडियो रिपोर्ट। वाचक योगेश्वर, संकलन प्रवीण चौरे, तकनीकी सहयोग कांता प्रसाद टिकारे और अशोक सोनारे, और प्रस्तुतकर्ता सचिन भागवत।

अभी आप सुन रहे थे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बैतूल प्रवास पर आयोजित कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी बैतूल का योगदान था और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित किया गया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आया सावन झूम के फिल्म का एक गीत। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म डॉन से, आवाज़ें हैं किशोर कुमार और साथियों की, अनजान ने इस गाने को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

डॉन फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है और हम आप याद दिला दें कि 8:35 पर भी आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने को हैं। 7 बजे आप सुनते हैं हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। तो कृपया हिंदी में समाचार के लिए प्रतीक्षा करें, बस चंद सेकंड।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां पारंपरिक तरीके सीमित साबित होते हैं, वहां नवाचार प्रभावी समाधान प्रदान कर सकता है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारत में डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्रों में तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उपलब्धियों के माध्यम से मानव क्षमता की नई सीमाओं का विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। श्री मोदी ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
2: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी कंक्लूडेड द हिस्टोरिक इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट विल एक्सपेंड अवर ट्रेड and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
3: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। सरकार ने कहा कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मीट्रिक टन LNG से लदा माल वाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मीनाक्षी हुडा विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज अपने मुकाबले खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर चुकी हैं। मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। आज और कल के आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:21 पर ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम होगा ग्राम लक्ष्मी। रात 8 हम आपको सुनवाएंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 विरासत। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं 8:35 पर, 9:15 पर और रात 10 आप सुनेंगे आपकी फरमाइश। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे एस एल कंडारा का वायलिन पर बजाया राग यामिनी। ये थे आज के शेष मुख्य कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले। अब कल यानी शुक्रवार को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर एक नजर डालते हैं जो आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होंगे। 11 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। आपकी फरमाइश ये कार्यक्रम कल आप सुनेंगे दिन में 12, 2:30 पर और रात 10:30 पर। 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत आप सुनेंगे भुवन मोहिनी की पहली कड़ी। एक बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम और युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युववाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा और ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होंगे। हम आपको एक बार फिर याद दिला दें 1 महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम और युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा और ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होंगे। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं कल दोपहर 2 5:33 पर, 6:30 पर, रात 8:35 पर और 9:45 पर। कल शाम 6 आप सुन सकते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। रात 8 हम आपको सुनवाएंगे सेवा प्रभाग समाचार सेवा प्रभाग विशेष कार्यक्रम श्रृंखला सरकार के 12। कल रात 9:30 पर आप सुन सकते हैं खेल जगत, जिसमें आप सुनेंगे वार्ता फीफा वर्ल्ड कप में टीमों का प्रदर्शन। वार्ताकार हैं आलोक कुमार चतुर्वेदी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनेंगे सारंग फगरे का ख्याल गायन, राग होगा बागीश्री। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। और अब नजर डालते हैं कल सुबह प्रसारित होने वाले आकाशवाणी भोपाल के मुख्य कार्यक्रम। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरमई सवेरा 8:30 पर। सुबह 9:15 पर हम आपको सुनवाएंगे गांधी चर्चा और 9:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। 10 जिले की चिट्ठी और 10:05 पर फिर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। 10:15 पर कल आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर ओंकारेश्वर जिला खंडवा में आयोजित कार्यक्रम में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। और कल शाम 7:21 पर आप सुन सकते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा। ये थे आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
5: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
8: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
9: PLI है ना?
10: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
11: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैतूल में आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस दौरे में AI, रेलवे और निर्माण क्षेत्र की शीर्ष कंपनियों के CEO से की मुलाकात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में शासकीय कन्या विद्यालय की खगोलीय प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। IT Park 3 का भी लिया जायजा। और 20 जून को PM किसान उत्सव दिवस। 9.5 करोड़ किसानों को मिलेगी सम्मान निधि की 23वीं किस्त। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन इंदौर पहुंचने पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने बैतूल में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी द्वारा आयोजित आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश का कोई भी समुदाय विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहना चाहिए।
1: 2047 विकसित भारत बनाने के लिए हम सोचे हैं। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष का प्रत्येक अंग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अक्षत होना चाहिए, क्षति नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये भारत में रहने वाले जनता, कोई भी समाज पीछे ना रह जाए।
0: राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए ओंकारेश्वर क्षेत्र को 19 जून तक नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है और विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस दौरे के दौरान आज कई शीर्ष वैश्विक कंपनियों के CEO से मुलाकात की। उन्होंने मिस्ट्रल AI के CEO आर्थर मेंट्स से भारत के बढ़ते AI इकोसिस्टम पर, एलस्टॉम के CEO मार्टिन सीएन से रेलवे आधुनिकीकरण पर और सेंट गोबेन के चेयरमैन बेनोइट बाजिन से निर्माण सामग्री क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। तीनों कंपनियों ने भारत में और अधिक निवेश तथा विस्तार की इच्छा जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत पाटिल के एक लेख को साझा करते हुए कहा कि सरकार ने पेयजल, स्वच्छता, नदी संरक्षण, सिंचाई, भूजल पुनर्भरण और अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग जैसी चुनौतियों का समाधान समग्र दृष्टिकोण से किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया के एक लेख को साझा करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की परिवर्तन गाथा देश के युवाओं की भी गाथा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर प्रवास के दौरान स्कूल चले हम अभियान के तहत बड़ा गणपति स्थित शासकीय शारदा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया। उन्होंने विद्यालय में स्थापित अत्याधुनिक खगोलीय प्रयोगशाला का निरीक्षण किया, जहां छात्राओं ने दूरबीन, रॉकेट मॉडल और नक्षत्र ट्रैकिंग प्रणाली के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इंदौर में निर्माणाधीन IT Park 3 का निरीक्षण करते हुए कहा कि प्रदेश को देश का अग्रणी IT और सेवा क्षेत्र का केंद्र बनाना उनकी सरकार का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में आयोजित एक प्रेसवार्ता में बताया कि 20 जून को देशभर में PM किसान उत्सव दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे।
2: 20 जून PM किसान उत्सव दिवस, इस दिन 3:45 पर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से 4,28,000 करोड़ रुपए, लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खाते में अंतरित किए गए हैं और अभी 20 तारीख को फिर 18,800 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ हमारे देश भर के किसानों के खाते में ये निधि अंतरित करके दिया जाएगा।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR News भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश के सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,47,00,000 LPG सिलेंडर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में नक्सलवाद उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों पर एक रिपोर्ट।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। नक्सलियों की फंडिंग रोकने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।
0: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF पर 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से EPFO के 7 करोड़ से अधिक अंशधारकों को लाभ मिलेगा और इस महीने के अंत तक खातों में ब्याज राशि जमा होने की संभावना है। प्रदेश का खेल एवं युवा कल्याण विभाग प्रदेश की उभरती खेल प्रतिभाओं को तलाशने के लिए टैलेंट सर्च महाअभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत 8 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के युवा खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीयन 17 जून से शुरू हो चुका है और चयन प्रक्रिया 27 जून से आरंभ होगी। इस अभियान में एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती, बॉक्सिंग और तीरंदाजी समेत कुल 21 खेल विधाओं के ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान है। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान में जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। ICC महिला T20 विश्व कप में आज इंग्लैंड में वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला होगा, जो भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल ग्रुप ए के मैच में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रनों से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 209 रन बनाए, जिसके जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 114 रन ही बना पाई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी ITI में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी विभाग के DSD पोर्टल पर 30 जून तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। सीहोर के बिल्किसगंज सांदीपनी विद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत पर विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें वितरित की गईं। अशोकनगर जनपद पंचायत ईसागढ़ में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। गुना में पॉली हाउस एवं गुलाब की उन्नत खेती पर विशेष प्रशिक्षण कल आयोजित किया जाएगा। शाहजहाँपुर जिले के राजीव गांधी महाविद्यालय काला पीपल के सभागृह में आज सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक की कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। जबलपुर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के द्वारा आज राज्य स्तरीय पूर्व सैनिक रैली का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को नूतन खेल परिसर स्टेडियम मंदसौर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। धार जिले के बदनावर में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर का समापन हुआ और नीमच डाक संभाग के द्वारा 20 जून को डाकघरों में आधार एनरोलमेंट और अपडेशन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैतूल में आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस दौरे में AI, रेलवे और निर्माण क्षेत्र की शीर्ष कंपनियों के CEO से की मुलाकात। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में शासकीय कन्या विद्यालय की खगोलीय प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। IT Park 3 का भी लिया जायजा और 20 जून को PM किसान उत्सव दिवस, 9.5 करोड़ किसानों को मिलेगी सम्मान निधि की 23वीं किस्त। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुनन वाले सभी किसान भैया बहनन को विजयलता बहन की दोई हाथ जोड़ के नेवरी राम राम। और भैया हरो, आज ऐसी ही बहन की बेटी की आज पुण्यतिथि है, जाको नाम देश विदेशों में और हर भारतवासी की जवान पर बालक बूढ़े जवान सभी के हृदय में जो है समाया है। और आज भी ऐसा लगता है कि भैया ऐसी वीरांगना, जाने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे तो उन्हें लोहे के चने चबा दिए थे, तो भैया हरो जाको नाम है महारानी लक्ष्मीबाई। ऐसी मर्दांगनी को आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आप सभी की ओर से जो भी ई कार्यक्रम को चौपाल को सुन रहे हैं देश विदेशन से, उन सभी की तरफ से नमन करती हैं, वंदन करती हैं, उन्हें कोट कोट प्रणाम करती हैं। और भैया हरो इनको जो है बचपन को नाम इन्हें प्यार से मनु कहते, तो मणि कर्णिका के नाम से बुलाते थे। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और भैया हरो इनकी माता भागीरथी बाई, पिता मोरोपंत तांबे और पति राजा गंगाधर राव नेवाल का और पुत्र दामोदर राव। और भैया जाति की ब्राह्मण हिंदू थी और इनके गुरु तात्या टोपे थे। उनकी जो है शिक्षा मार्शल आर्ट में शिक्षा प्राप्त की। और भैया हरो इनकी एक ही जो है प्रतिज्ञा थी, एक ही इच्छा थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और भैया हरो इनके घोड़े को नाम हतो सारंगी बादल पवन, इनकी तलवार को भैया वजन हतो 3.308 किलोग्राम। और इन्होंने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई हती। और इनको प्रसिद्ध नारा हतो जो हमारी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने रचित नारा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। और भैया इनकी अंतिम जो इच्छा थी कि मैं अपना मरा हुआ शरीर अब जो है अंग्रेजों को छूने नहीं दूंगी। और भारतीय इतिहास की एक महान वीरांगना और स्वतंत्रता संग्राम की महान नायिका थी। और इनको जो है जीवन साहस वीरता और त्याग का प्रतीक बना हुआ था। और वे झांसी के रूप में प्रसिद्ध हैं जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से डट करके मुकाबला किया। उनकी वीरता आज भी हर भारतवासी के दिलों में जीवित है। और भैया हरो भारत की महान वीरांगना लक्ष्मीबाई देशभक्ति साहस और सम्मान की प्रतीक मानी जाती हैं। इन्होंने अपने राज्य और देश की रक्षा के लिए 18 जून 1858 को युद्ध करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुई। यानी कि आज के ही दिना जो है उनको जीवन जो है हम सभी के लिए प्रेरणा देता है कि उनकी बताए गए पद चिन्हों पर चलना चाहिए, सबके जो है बड़ो योगदान तभी मानो जागो भैया जाते कि हर देश के नागरिक को उनसे सीख जो है प्रेरणा प्राप्त करना चाहिए। हर मुश्किल में चाहे कैसी भी कठिन से कठिन भैया परिस्थिति में अपने देश की अपने राष्ट्र की रक्षा में तत्पर रहना चाहिए, हमेशा सहायता करना चाहिए। तो भैया हरो जो तो थी चर्चा महारानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि पर और कार्यक्रम को आगाऊ बढ़ात हुए। अब अपने भैया जैसे देखो आप समझ ही रहे हैं कि काय की चर्चा के बाद जो है मनोरंजन की बारी आते है। ऐसी चर्चाएं सोई होते हैं जिन्हें हम गीत के द्वारा मन को जो है खुश और प्रसन्न करते हैं। और भैया हरो देखो एक बात को ध्यान भी दो हुई है कि कई गीतों में ऐसा निचोड़ रस भरा रहता है, कभी कवित्री अपनी बुद्धि से अपनी मति के अनुसार उसी की जो है साज सज्जा प्रेरणादायक रचना के द्वारा कई बार पारंपरिक धुन से जो है सजाते हैं। और हर गीत का जो है एक एक शब्द, एक एक लाइन, एक एक
शब्द अलग अलग जो है प्रेरणा सो दर्शाते हैं। हर गीत को ध्यान से सुनने को एक अंदाज आनंद भरा होता है। गीत भी कई तरह के भैया होते हैं, जो भी आप जानते हैं पारंपरिक धुन में जो है गाए जाते हैं, और बारह महीना के अलग अलग जो है लोक गीत होते हैं। जैसे कि भैया देखो, कार्तिक गीत है, फागुन गीत है, चैत गीत है, सावन गीत है, बरसात गीत है, और भैया देखो देशभक्ति गीत है। तो जैसे आदि यात्रा के लोक गीत

0: काहे कि देखो भैया, छोटी छोटी जैसे बचत हमारे आड़े समय में काम आते हैं कि नहीं। और बचत कोनो सी काय नहीं होवे भैया, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें हैं, घर गृहस्थी की हैं, या राशन पानी की हैं, धन की हैं, रुपया पैसा की है, समय की है, या जीवन में कई बार का होते कि हम हारते हैं, गिरते हैं और सोचते हैं कि अब कैसे का हुई है। और आवश्यकता की वस्तुओं को भी देखो लेना पड़ते कि नहीं, तो जाके लें, धन की जरूरत सो पड़त है। बिना धन की तो भैया कछु काम ही नहीं चलत है। तो हम तो अपने सवई भैया हरन से जो ही कहें कि जो के, तो आज हम और आज आपको जई प्रकार की जो है अधिक जानकारी के लिए आज ऐसी ही वार्ता जो है सुनवा रहे हैं कि जीवन में मितव्ययता जरूरी। तो वार्ता है हमारी, जीवन में मितव्ययता जरूरी, तो जानकारी दे रही हैं श्रीमती कुसुम जाटव। और भैया आप और आओ तो सुनते हैं जो वार्ता।
1: मितव्ययता का अर्थ है आवश्यकताओं के अनुसार धन, समय और संसाधनों की उचित और सोच समझकर उपयोग करना। यह कंजूसी नहीं बल्कि फिजूल खर्ची से बचते हुए संतुलित जीवन जीने की कला है। मितव्ययी व्यक्ति अपने वर्तमान और भविष्य दोनों का ध्यान रखता है। मितव्ययता मनुष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति अपनी आय के अनुसार खर्च करता है वह कठिन परिस्थितियों में भी आत्मनिर्भर बना रहता है। बचत की आदत भविष्य की आवश्यकताओं, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आकस्मिक संकटों में बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। मितव्ययता से व्यक्ति में अनुशासन, दूरदर्शिता और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। मितव्ययता केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि समाज, राष्ट्र के लिए भी लाभदायक है। जब लोग संसाधनों का उचित उपयोग करते हैं तब प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी कम होती है। जैसे बिजली, पानी, भोजन और अन्य वस्तुओं का संयमित उपयोग पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक होता है। इससे देश की आर्थिक प्रगति में योगदान मिलता है। मितव्ययता का अर्थ आवश्यक कार्यों पर उचित खर्च करना है, जबकि कंजूसी में व्यक्ति आवश्यक जरूरतों पर भी खर्च करने से बचता है। इसलिए मितव्ययता एक सद्गुण है। मितव्ययता जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण है। यह हमें आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और संतुलित जीवन प्रदान करती है। प्रत्येक व्यक्ति को मितव्ययता अपनाकर अपनी आय और संसाधनों का सदुपयोग करना चाहिए। यही आदत सुखी, सुरक्षित और सफल जीवन की आधारशिला है। इसे अपनाने के लिए अपनी आय और व्यय का स्पष्ट बजट बनाएं, इच्छा और जरूरत के बीच का अंतर समझें, अनावश्यक खर्च से बचें। मितव्ययी जीवन शैली को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए इन व्यवहारिक तरीकों को अपना सकते हैं। जैसे बजट बनाएं, अपनी मासिक आय और खर्चों का एक स्पष्ट खाका तैयार करें, यह जानने के लिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। आप क्लियर टैक्स जैसे वित्तीय प्लेटफॉर्मों की मदद से अपनी व्यक्तिगत वित्त का प्रबंधन कर सकते हैं। गुणवत्ता पर ध्यान दें, सस्ते के पीछे ना भागें। हमेशा कम कीमत वाली खराब चीज़ें खरीदने के बजाय ऐसी चीज़ों पर निवेश करें जो टिकाऊ हों और लंबे समय तक उपयोगी बनी रहें। छोटी छोटी बचतें करें, एक साथ बड़े बदलाव करने के बजाय छोटी छोटी आदतों में सुधार कर सकते हैं। इसी संदर्भ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम एशियाई संकट और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दबाव को देखते हुए देशवासियों से मितव्ययता मतलब सादा जीवन और बचत के उपाय अपनाने की अपील की है। उन्होंने अपने भाषणों में आर्थिक देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए 7 प्रमुख मंत्र साझा किए हैं, जैसे घर से काम। लोगों से अपील की गई है कि वे ऑनलाइन बैठकों और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें जिससे यात्रा खर्च बचे। सोने की खरीद में कमी करें, जैसे विदेश मुद्रा भंडार बचाने के लिए नागरिकों से कम एक वर्ष तक अत्यधिक सोना न खरीदने का आग्रह किया गया है। ईंधन की बचत और वैकल्पिक परिवहन को अपनाएं। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक वाहनों, मेट्रो, बस और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का इस्तेमाल करने को कहा गया है। और माल ढुलाई के लिए रेलवे का अधिक उपयोग करने की सलाह दी गई है। जैसे विदेशी मुद्रा फॉरेक्स के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए कुछ समय के लिए विदेशी यात्राओं और भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग से बचने की सलाह दी गई है। घरेलू उत्पादों को प्राथमिकता, विदेशी ब्रांडों की जगह स्वदेशी जो मेड इन इंडिया हैं और स्थानीय उत्पादों को अपनाने पर

हाँ भैया रो, तो देखो हम गीत और संदेश के बाद फिर से हाजिर हैं अपने चौपाल कार्यक्रम में। एक बार फिर से करते हैं अपने सभी श्रोता भैया किसान भैया को स्वागत। और भैया देखो, जीवन में मितव्ययता का होना बहुत ही जरूरी

0: जोर दिया गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, किसानों से रासायनिक खादों फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल में कटौती करके प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की गई है। खान पान में संयम, देश की आयात निर्यात कम करने के लिए लोगों से विदेशी कुकिंग ऑयल और अन्य गैर जरूरी आयातित चीज़ों की खपत कम करने का आग्रह किया गया है। इस मितवयता अभियान के तहत पीएम मोदी जी आम जनता के साथ साथ नेताओं और सरकारी तंत्र से भी सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की व सादगी बनाए रखने की बात कही है। जीवन में मितवयता का अर्थ कंजूस होना नहीं बल्कि सोच समझ कर और बुद्धिमानी से धन का प्रबंधन करना है ताकि भविष्य सुरक्षित रह सके। इसे अपनाने के लिए आय और व्यय का बजट बनाएं, फिजूल खर्ची जैसे बाहर का खाना या अन्य आवश्यक सब्सक्रिप्शन को हटाएं। खरीदारी करने से पहले स्वयं से प्रश्न करें कि क्या यह वास्तव में ज़रूरी है या केवल एक शौक। गैर जरूरी खरीदारी को कुछ दिनों के लिए टालने की आदत डालें। अपने जीवन से फालतू की अनावश्यक फिजूल खर्ची चीज़ों को हटाकर केवल उपयोगी और आनंददायक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें। संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करें। छोटी दूरी के लिए पैदल जाएं या साइकिल का उपयोग करने से ईंधन और धन दोनों की बचत होती है। अपने वेतन का एक हिस्सा जैसे 10-20% पहले ही अलग कर दें और बचे हुए पैसों से ही अपना महीने का खर्च चलाएं। जीवन में कोई भी बड़ी आदत रातों रात नहीं बनती। एक समय में एक ही आदत में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करें। मितवयता का दृष्टिकोण रखते हुए मनोदशा में आवश्यक सुधार हुए बिना न तो शारीरिक स्थिति सुधरती है और न पारिवारिक व्यवस्था बनती है। आर्थिक प्रश्न भी बहुत कुछ इसी के आधार पर निर्भर है। मन एक प्रकार का प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष है। उसके नीचे बैठकर हम जैसी भी कल्पनाएं करते हैं, भावनाएं रखते हैं, वैसे ही परिस्थितियां सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। बिगड़ा हुआ मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और सुधरा हुआ मन ही अपना सबसे बड़ा मित्र है। इसलिए अपना सुधार करें। अपना सुधार मनुष्य स्वयं ही कर सकता है। यह आत्म सुधार का जागरण है। हर मनुष्य का भाग्य उसकी अपनी मेहनत में ही है। अपनी आदतों के कारण ही उसकी दुर्गति हो जाती है। जब मनुष्य अपनी त्रुटियों को सुधारने, दृष्टिकोण को बदलने और अपनी आदतों को उत्पन्न करने के लिए कटिबद्ध हो जाता है तो इस परिवर्तन के साथ साथ उसका भाग्य बदलने लगता है। आर्थिक कठिनाइयों के दो कारण हैं, एक उपार्जन की कमी, दूसरी खर्च की अधिकता। उपार्जन में कुछ कमी रहे तो काम चल सकता है। यदि उपार्जित धन का सदुपयोग करना हमें आता है, अपने जीवन उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करने और मनोरंजन के साथ साधन जुटाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। साधारण जीवन यापन भी अब बहुत महंगा हो गया है। ऐसी दशा में अधिक धन की आवश्यकता हर किसी को अनुभव होती है। जिसके पास प्रचुर है उसे अधिक सुरक्षा रहती है और जिसके पास कम है वह अभाव और कठिनाई का अनुभव करता है। इसीलिए अपने जीवन में मितवयता के गुणों को अपनाएं और अपने जीवन को सरल बनाएं।
1: हाँ भैया, और देखो अभी अपन सुन रहे थे वार्ता। वार्ता थी जीवन में मितवयता जरूरी। तो भैया आज हमारे बीच जानकारी दे रही थी श्रीमती कुसुम जाटव। और भैया हरो, हम भी जो है, हमें भी पूरा विश्वास है कि आज की वार्ता से आप सभी खां जरूर लाभ और बचत करने दोनों ही प्राप्त हुई है। बहन श्रीमती कुसुम जाटव ने कितेक नौनी जो है जानकारी अपन को सुनवाई। और हम भी जो ही चाहते हैं कि कहते हैं सुनते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरते कि नहीं, तो जब ही तो बुद्धिमान व्यक्ति वो ही है जो अपनी आय से कम खर्चा करे और हमेशा दो पैसा बचाए, हर तरह की जीवन में मितवयता करे। जो हमने वार्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई और सोच समझ के देखो बचत करे, जो नहीं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया ऐसो भैया बिल्कुल नहीं करना, अपनी जेब देख के ही खर्चा करे और सब चीज़ों की बचत करे। तो भैया अब लेते हैं अल्प विराम और सुनवाते हैं जो संदेश।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ भैया, तो विराम के बाद हम फिर से हाजिर हैं चौपाल कार्यक्रम में। आप सभी किसान भैया श्रोता भैयन को करते हैं स्वागत, और भैया दी को चर्चा अपन आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि भैया दी को जल प्रदूषण की जो है समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है कि नहीं। और भैया हरो ई बात का अपन और सभी जानते हैं कि जल हम सभी के लिए कितेक आवश्यक और मूल्यवान है। जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए, खेती बाड़ी के लिए, मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता जल ही तो है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जब ही तो कहते हैं कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है, और जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और भैया हरो, जल हमें जो है प्रकृति से मिला है, एक अनमोल उपहार है। हमें जल को सदैव बचाने का प्रयास करना चाहिए। जल को हमें बर्बाद नहीं करने हैं। जल हमें वर्षा, नदी, तालाब, कुएं और झीलों आदि से जो है प्राप्त होते हैं। जल की उपयोगिता को देश के हर नागरिक को या को समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक आदमी को अपना जो है कर्तव्य समझ के जल स्रोतों को दूषित तो होने से रोकना चाहिए, बचाना चाहिए। हर आदमी को एक दूसरे को जो है समझाना चाहिए और पालन करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी भी है। जासों का है कि आने वाले जो है समय में, भविष्य में नई पीढ़ी को जो है जल संकट को सामना ना करना पड़े। और ये एक आदमी को भी यह काम नहीं है, ये तो देश की सभी जनता को जिम्मेदारी है। और शासन भी देखो भरपूर प्रयास कर रही है कि नहीं, हर जो है तरह की सहायता में जुटी हुई है। पर केवल शासन को ही काम नहीं है भैया, जामे तो जनता को भी पूरा साथ देना जरूरी है। और जनता साथ देगी तो भैया सभी काम नीके चलेंगे, नौने चलेंगे। अपने मन कई बातों को जो है मन में उतारें, संकल्प करें। जैसे कि देखो भैया, नदियाँ और तालाबों में कचरा बिल्कुल ना फेंकें, जैसे अधिक प्लास्टिक को उपयोग ना करें। जल प्रदूषण जो है एक गंभीर समस्या है। और भैया जे भी जानते हैं कि शरीर में जैसे कई प्रकार के रोग राय बीमारियाँ पनपते हैं, तो भैया हरो इसी तरह हम तो जो ही कहें कि ये बातन पे जरूर अपने जो है दृढ़ संकल्प करके गठिया लेना है, मन में उतारना है। केवल भैया ई बात को क्या वैसे काम थोड़ी चले ई बात पर। जैसे तो भैया अब सुनवाते हैं जो लोक गीत राम सिंह राय के स्वर में, काय के गीत के माध्यम से वो का कह रहे हैं।

हाँ भैया रो तो देखो, हम गीत के बाद फिर से हाजिर हैं अपने चौपाल कार्यक्रम में और सभी भैया हरण को करते हैं स्वागत। और भैया देखो, अब अपन भैया रो चर्चा करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव पर। तो भैया रो प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव भारत सरकार के जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू करो गो है। तो एक विशेष जो है कार्यक्रम है जाको शुभ आरंभ भैया 10 अक्टूबर 2019 को करो गो है। तो और ई योजना को जो है उद्देश्य भैया हरो देश के जो है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और ई योजना का भैया जो है उनकी पहचान करके उनकी प्रतिभा को जो है विकसित करना और उन्हें भविष्य के वैज्ञानिक कलाकार नव प्रवर्तक बनाना। और भैया हरो ई कार्यक्रम का नाम ध्रुव तारा से प्रेरित है जो कि स्थिरता और शिक्षा का प्रतीक माना जाता है। और जाको मुख्य भैया उद्देश्य है प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करना और भैया छात्रों में जो है रचनात्मक

आध्यात्मिकता, नवाचार, पहचान और वैज्ञानिक सोच को जो है बढ़ावा देना है। जैसे भैया छात्रों को, विशेषज्ञों को और शिक्षकों से जो है मार्गदर्शन प्रदान करना, और नेतृत्व क्षमता और समस्या समाधान कौशल का विकास करना, और छात्रों को जैसे राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करना। और भैया हर यह कार्यक्रम मुख्य रूप से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए हैं। और भैया हर छात्रों का चयन उनकी जो है प्रतिभा और उपलब्धियों के आधार पर जो है किया जाता है, और चयनित छात्रों को जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। और कार्यक्रम में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति और खेल जैसे क्षेत्रों को जो है शामिल सो करो जाता है। और लाभ छात्रों को जैसे उनके कई प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे कि प्रतिभा और कौशल का विकास, नई तकनीकों और आधुनिक ज्ञान, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करता है। और भैया हरो भविष्य में उच्च शिक्षा और कैरियर के लिए जो है बेहतर मार्गदर्शन सोई करता है। तो भैया हरो जो तो थी अपनी चर्चा प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग पर, और अब अपने कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं अपने भैयन को जो विनोद पुरोहित के स्वर में जो लोकगीत।

यारो देखो कितने एक नौनो गीत आप और उनको सुनवाओ, जरूर पसंद आ वही है काहे कि देखो अपने देश की जो है माटी के लें, अपनी जन्मभूमि के लें, कहते हैं कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू वै पावन। तो जन्म हमेशा ही अपनी जन्मभूमि से प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए और भैया अपने जन्मभूमि की हमेशा तत्पर रक्षा करना चाहिए। और अब देखो हो गई है चलवे की बेरा, काय के जो है संजा ब्यारू को समय हैगा, वह तो भौजी को इंतजार कर रही होंगी। तो अब जो है सभी भैयान को राम राम और जय जवान जय किसान।

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ये हो पाया है?
2: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़, एसएआरडीपी नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए, साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहां तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं, साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं, उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
1: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में, पीएम डिवाइन। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
2: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पस से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें।
1: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत ने पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था, थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
2: कई राज्यों में, इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। बालेडूंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जो बात कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहाँ मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो ना केवल जो स्काईवॉक वहाँ पे तैयार हो रहा है पर जो ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहाँ पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काईवॉक जा रहा है, मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-2-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहाँ पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है, जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5-स्टार हो या 3-स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहाँ जो उसका इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पर सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
1: आपने जैसा कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
2: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, ना केवल भारत के लिए, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो USP डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वेराइटीज़ हैं, चाहे वो लेकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
1: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बने, इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में, और सरकार इसे कैसे देख रही है?
2: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी MSMEs भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, MOUs और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएँ और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
1: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर

0: के विकास में वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
1: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है। और उस शांति का जो बेसिस है वो है एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खास तौर पे लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं। और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहां पर शांति को बरकरार रखने के लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
0: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
1: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। And it means that by strengthening the physical connectivity, promoting cross-border trade, people-to-people links, and integrating the region into a regional value chain with the Southeast Asia. And I think all the state-specific initiatives actually take us to that particular paradigm. And it's also essential that this approach recognizes Northeast as both a national asset as well as a gateway to external markets. And it also helps us balance the strategic and development priorities.
0: So, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं?
1: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में। माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में शामिल हुए थे। और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2047 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर, स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है। हर स्टेट डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हासिल कर रहा है, हर स्टेट 5-5, 6-6 साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में। तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल नेशनल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में और आगे जा सके, इस सब का इसमें प्रयत्न पूरा शामिल है। तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा फोकस जो है इट विल रिमेन ऑन कॉन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट सो दैट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर इंटीग्रेटेड इनटू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी एंड व्हेन दे डू दैट they also retain their unique identity.
0: Thank you so much, sir.
1: Bahut bahut dhanyawad.
2: बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन दिस स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के

अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष विरासत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
2: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
1: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
2: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
3: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में

0: उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

इस्तेमाल को उजागर किया। वजीर आजम ने फ्रांस के बड़े कारोबारी लीडरों के साथ भारत में सरमायाकारी के मौके और तौसी के मंसूबों पर तबादला ख्याल भी किया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के इतवार को होने वाले दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की। ईरान के सदर मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमरीका के दरमियान 9 दस्तखत शुदा मफाहमत नामों को एक तारीखी दस्तावेज करार दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाना जिसको हमने लिया है फिल्म नसीब से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म एक दूजे के लिए, इस फिल्म से आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, एसपी बाल सुब्रमण्यम और साथियों की, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म शान से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है, सुनिए ये गीत।

अमर अकबर एंथोनी, ये फिल्म का नाम है। आवाज़ें इस गाने में हैं किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, शैलेंद्र सिंह, आनंद बख्शी का गीत है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म श्री 420 से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। शैलेंद्र ने इस गाने को लिखा है और शंकर जयकिशन का संगीत है। सुनिए ये गीत।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजने को हैं और आज 10 बजे आप सुनेंगे, जी हाँ, आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का सबसे पहले गीत हम लेकर हाजिर हैं, जिसको हमने लिया है, कौन सी फिल्म से लिया है। सबसे पहले तो हम उस फिल्म का नाम आपको बता दें। फिल्म का नाम है आशा और आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में जो फरमाइश आई है वो है घंटा घर चौक खंडवा से लिखने वाले हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, मुनमुन, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया ने इस गाने को पसंद किया है। और इसी गाने के लिए हमारे पास में ख़त आया है, लिखने वाले हैं गौरी नगर इंदौर से। और ख़त जिन्होंने भेजा है उनके नाम है आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं कोटा राजस्थान से नवेद खान, जावेद खान, आशीष, हैप्पी और उनके बहुत सारे दोस्त। सुनते हैं ये गाना।

जब जब फूल खिले, ये फिल्म का नाम है। आवाज़ इसमें जिस गाने के लिए हमने ली है वो आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से। लिखने वाले हैं द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा और उनके साथी। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है गौतम नगर ज़िला नांदेड़ से, प्रभाकर जौंदले, आरती जौंदले और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। और ये खत आया है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से। लिखने वाले हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, शालिया शोएब, मुश्तबा खान, रऊफ भाई शाहिद। और गांधी बाग अकोला से लिखने वाले हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर।

शमा का परवाना, मरना जीना खाना पीना हंसना रोना नहाना धोना सोना उड़ना चलना पिन्ना आना जाना, हम दीवाने ने मोहब्बत में बुलाया हमको।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म सरगम से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। कोटवा नारायण बावापट्टी बलिया से लिखने वाले हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रेश रोशनी राय, प्रांजल राय और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है आदर्श नगर मालोट पंजाब से लिखने वाले हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरभ शर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है ताज मोहम्मद अंसारी, साबिर राही और मेरा जहां, इन्होंने ये ख़त लिखा है आज़ाद नगर लश्कर हरिद्वार से। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है मोहम्मद रफ़ी के, माफ़ कीजिए, मोहम्मद अज़ीज़ और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में हमने अगला गाना लिया है, और इस फिल्म का नाम है दूध का कर्ज़। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, और इस वाले गाने में जो हम आपको सुनवा रहे हैं ये इसमें अनु मलिक का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं आरिफ खान, अदीब खान, द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, इन्होंने ये पत्र लिखा है भाटापारा दतरंगी से, और महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर, इन्होंने ये गाने को पसंद किया है। और इसी गाने के लिए फरमाइश आई है सपना संगीता रोड इंदौर से, लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी और मनन तानिया ने इस गाने के लिए फरमाइश भेजी है, सुनिए ये गीत।

मुगले आजम इस फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और साथियों की हैं। शकील बदायूनी ने इस गाने को लिखा है, नौशाद का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है आदर्श नगर मलोट पंजाब से, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मनिकपुरी, दतरंगी से भागवत वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। और ये ख़त आया है सागर से, लिखने वाले हैं अमित कुमार जैन, निशा जैन, और ये पत्र साफ नहीं लिखा गया है और मेरा ख्याल है अदिति जैन, इन्होंने ये पत्र भेजा है। और सुनते हैं ये गाना।

और आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में एक गाना जिसको हमने लिया है पेंगेस्ट से। मजरू का लिखा हुआ गाना है और एस डी बर्मन का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

इसी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी के अंतर्गत SL कंडारा का वायलिन पर बजाया राग यामिनी।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत एस एल कंडारा का गाया वायलिन वादन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिर

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल-पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलीहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुँच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर इसी मीटर बैंड पर हम फिर हाजिर होंगे। तो आप इजाजत दीजिए जावेद खान को। जय हिंद।